श्रोताओं, सुप्रभात। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:48 और 54 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम चिंतन। आलेख एवं वाचन स्वर कुसुमाकर दुबे का है।
1: आजकल मौसम का मिजाज तेजी से बदलता जा रहा है। शीतकाल अभूतपूर्व हिमपात के लिए चर्चित रहा करता है, तो ग्रीष्मकाल में हम गर्मी की अतिशयता से पीड़ित रहते हैं। आधुनिकता की अंधी दौड़ कहें या फिर उपभोग करने की बढ़ती भूख, हम सामान्य जीवन व्यवहार से दूर होकर प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। इसी का परिणाम तरह तरह से हमारे सामने आ रहा है। आज से 3 शताब्दी पहले यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। उसका स्वरूप धीरे धीरे बिगड़ता ही गया है। हम स्वार्थी बने हैं, इसीलिए हम अपने आचरण के दूरगामी परिणामों से अनजान हैं, उदासीन भी हैं। कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर हमें चेतावनी दी है कि हम प्रकृति का शोषण छोड़ें, लेकिन हमारे आचरण में उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आबादी के दबाव में जंगल कट रहे हैं, अतिवृष्टि या फिर सूखे के फलस्वरूप आपदाएं आ रही हैं, हम निरंतर त्रासदी झेल रहे हैं। इसके बावजूद इनसे मुक्ति मिलने के उपायों की उपेक्षा करते हैं। विश्व भर में समय समय पर सम्मेलन आयोजित होते हैं, लेकिन आचरण का संयम न हो तो इन सम्मेलनों का हर्ष क्या होगा, हम सब समझ सकते हैं। रियो सम्मेलन में विचारवान लोगों ने यह कहा था कि अगर पृथ्वी को विनाश से बचाना है तो हमें भारतीय जीवन पद्धति का अनुसरण करना होगा। ये भारतीय जीवन पद्धति है क्या? क्या हम भारत में रहकर भी इसे ठीक से समझते हैं?

0: ये वो है कि प्रकृति से तादात में स्थापित करें, उपभोग में संयम स्थापित करें। ईशोपनिषद के पहले श्लोक में ईश्वर के द्वारा प्रदत्त साधनों के त्याग पूर्वक भोग की बात कही गई है, वही भारतीय जीवन पद्धति है। प्रकृति का दोहन तो किया जा सकता है, शोषण नहीं। एक गाय के चार स्तनों में से दो या तीन से दूध दुहा जाता है और शेष उसके बछड़े के लिए छोड़ दिया जाता है। बस वही अंतर दोहन और शोषण में है, और हम भारतीय अपनी पुरानी पद्धति को भूल गए हैं। हम शोषण के प्रति आग्रही होते जा रहे हैं, इसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। गर्मी इतनी पड़ती है कि हम प्यास बुझाने के लिए इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, पानी की कमी से जूझते रहते हैं। भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल थी, उससे विमुख करने के उपायों को ही आज विकास मान लिया गया है। हम आज स्वयं आचरण करना नहीं चाहते। हम जिसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, प्रकोप कहते हैं, वो हमारे अपने आचरण की देन है, ये हमें समझना होगा। और इसका समाधान भी हमारे आचरण में ही नहीं थे। इसके लिए आवश्यक है कि उपभोग के अधिकार के बजाय कर्तव्य पालन के बोध का संज्ञान हम बढ़ाएं। भोगवाद की पाश्चात्य सोच है, इसके अतिरेक के दुष्परिणामों को देखते हुए प्रकृति के साथ तादात में स्थापित करना आज की जरूरत है। आज हम शहर बढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं, जबकि जरूरत है गांव बढ़ाने की। आज पिछले 10 वर्ष का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि शहरों के आसपास मकानों के जंगल तेजी से बढ़े हैं। दूर दूर तक जिस जमीन को पहले कोई पूछता नहीं था, कल्पना नहीं कर सकते थे कि वहां भी कोई मकान खड़ा होगा, आज मोहल्ले नजर आते हैं। वहां सीवर की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, कई तरह की समस्याएं हैं, फिर भी शहर के करीब रहना है तो लोग मकान पर मकान, मोहल्ले पर मोहल्ले बसाते जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा, हमें ये जरूर सोचना होगा। वही जो हमारे सामने आता है उस पर मनन करना होगा। भारतीय जीवन पद्धति को अपनाकर प्रकृति के साथ दोस्ती बढ़ानी होगी, तभी इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। आइए इस दिशा में सोचें, विचार करें।
1: ये था कार्यक्रम चिंतन, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा।
2: आजुक कृषि चर्चा का संग हम आशुतोष कुमार झा। किसान भाई लोकन, आजुक दिन अपना सब चर्चा करब पानक उन्नत खेती के संबंध में। किसान भाई लोकन, पान बिहारक नगदी फसल में से एकटा है। वो एकटा बहुवर्षीय सदाबहार लत्तरदार एक लिंगाश्रयी बेल है, जकरा उत्तर बिहार में एक बेर लगाकर 10 से 12 बरख तक आ दक्षिण बिहार में 2 बरख तक नीक उपजा प्राप्त कैल जा सकित है। किसान भाई लोकन, अगर पानक खेती के लेल जलवायु के बात करी तो पानक खेती उष्ण जलवायु में छायादार और नम स्थान पर होइत अछि। बिहार में एकर खेती 2.5 मीटर ऊंचगर बांस बल्ला घास फूस के बनल बरेजा में कैल जाइत अछि। किसान भाई लोकन, पानक खेती ओहि सब प्रकारक भूमि में कैल जा सकैत अछि जाहि में पानिक निकासी के नीक प्रबंध होय, मुदा दोमट माटि जे जैविक पदार्थ से परिपूर्ण हो उपयुक्त होइत अछि। किसान भाई लोकनि, जाहि भूमि में पान लगेबाक हो ओकरा अप्रैल महीना के अंतिम सप्ताह में साफ कऽ कऽ गहीर जोताई या फिर माटि पलटवला हरक माध्यम से कऽ मध्य जून तक खुलल धूप में छोड़ि देल जाइत अछि। एकरा से सूत कृमि और माटि में पलवला आन रोगजनक परजीवी के संख्या में कमी आबि जाइत अछि। बरेजा बनाकर ओहि पर पतरका खौर वा फिर पुआर से यदि कतौ कोनो बेल मरि गेल होय तो ओकर प्रतिरोपण शीघ्र ही कऽ देबाक चाही। किसान भाई लोकनि, पोषक तत्व सबके बात करी तो पान एकटा बहुवर्षीय फसिल अछि और एकर पात उपयोगी अछि, ताहि कारणे साल भरि नीक पैदावारक लेल 200 किलोग्राम नेत्रजन, 100 किलोग्राम स्फोर और 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करबाक चाही। पोषक तत्व का मात्रा के एक चौथाई भाग

0: महीना का अंतर पर देबाक चाही। यदि पोषक तत्व का संपूर्ण मात्रा जैविक खाद का रूप में यानी कि सरसों करंज अंडी या नीमक खली प्रयोग करी त अति उत्तम है। यदि एना संभव नहीं हो तखन पोषक तत्व कम से कम आधा मात्रा कार्बनिक और आधा अकार्बनिक खादक रूप में व्यवहार करी। एकरे संग आजुक कृषि चर्चा एत संपन्न भेल। आशुतोष कुमार झा का विदा देल जाओ। नमस्कार।
1: कृषि चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पान की आधुनिक खेती के बारे में। आलेख एवं वाचन स्वर आशुतोष कुमार झा का था। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर, कभी भी कहीं भी। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की

0: तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
2: स्वास्थ्य चर्चा के इस अंक में हम हाजिर हैं डॉक्टर रमन कुमार वर्मा जी के साथ, जो प्रख्यात नेत्र रोग चिकित्सक हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उसका उपचार वो कैसे करे। डॉक्टर साहब,
3: देखा जाए मोतियाबिंद का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दवा से संभव नहीं हो पाया है। हालांकि दावे किए जाते हैं, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। मोतियाबिंद जब मरीज को होने लगे या हो गया है और मरीज को अपना काम करने में कठिनाई हो और चश्मे से आँखों की रोशनी दृष्टि उतनी न बढ़े जिससे कि वो देख पाए, तो उसे नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में ऑपरेशन ही उपचार रह जाता है, चाहे मोतियाबिंद कच्चा हो या पका हो। ये पुराना कंसेप्ट है कि जब मोतियाबिंद पूरी तरह पक जाए तभी उसका ऑपरेशन कराना चाहिए।
2: यानी कि चश्मा आपके काम लायक नहीं रह गया, कितना भी पावर बढ़ा लो आपकी दृष्टि अगर नहीं आ रही है, आप चीजों को सही ढंग से नहीं देख रहे हो, तो आप तय मानो कि आपका ऑपरेशन कराना ही एकमात्र विकल्प आपके पास बचता है मोतियाबिंद का।
3: जी हाँ, पकने तक इंतजार नहीं करना चाहिए। और अब तो यह ऑपरेशन बहुत ही सुरक्षित हो गया है।
2: क्या इसमें मौसम का भी कुछ असर होता है? कुछ लोग कहते हैं जाड़े में ऑपरेशन कराना चाहिए या गर्मी में नहीं कराना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
3: नहीं, वैसी बात नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 12 महीने हो सकता है, लेकिन हाँ, चूंकि मरीजों को हिदायत दी जाती है सभी मरीजों को, मोतियाबिंद के मरीजों को, कि ऑपरेशन के बाद 10-15 दिन सर से न नहाएं। इसलिए कुछ मरीज कठिनाई अनुभव करते हैं और उनकी मंशा होती है कि जाड़े में ही ऑपरेशन कराएं, लेकिन ये कोई मोतियाबिंद के ऑपरेशन को टालने का कारण नहीं है कि सिर्फ जाड़े में ही इसे इसका ऑपरेशन कराया जा सके।
2: आजकल लेंस वगैरह प्रत्यारोपित किया जाता है, उससे क्या आंखों को नई दृष्टि मिल जाती है?
3: हाँ बिल्कुल, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है विगत 2-3 दशकों से, और अब लेंस प्रत्यारोपण के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन होता है और इसके साथ ही एक नए विजुअल वर्ल्ड की शुरुआत हो जाती है मरीज के लिए। पहले जो ऑपरेशन होता था उसमें मरीज को मोटा चश्मा लगाना पड़ता था, बाएं दाएं देखने के लिए उसे सर घुमाना पड़ता था, हर चीजें बड़ी नजर आती थी। लेकिन अब जो ऑपरेशन हो रहा है लेंस प्रत्यारोपण के साथ, उसमें ऐसी बात नहीं रह गई है। लेंस प्रत्यारोपण में हमारे देश में, हमारे राज्य में लगभग सभी जिला और अनुमंडल स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा यह ऑपरेशन बहुत ही कुशलता से और सफलता के साथ हो रहा है। और उसमें भी एक नई पद्धति आ गई है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो है फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति। ये नवीनतम पद्धति है लेंस प्रत्यारोपण का।
2: इसमें क्या होता है?
3: इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन में चीरा जो लगाते हैं इंसिजन, वो बहुत छोटा लगाने की जरूरत होती है, 2 या 3 मिलीमीटर, और ऑपरेशन के बाद टांके की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत ही पतला 1 मिलीमीटर का

0: टिटेनियम निडल होता है जिसमें प्रति सेकंड 40,000 कंपन पैदा होते हैं। इसके द्वारा ही यह ऑपरेशन संपन्न किया जाता है। अंदर से कॉर्टिकल मैटर न्यूक्लियस निकाल देने के बाद फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं। मरीज को 2 घंटे के बाद घर भेज दिया जाता है। मरीज को कोई कठिनाई नहीं होती है। इसमें समय भी पहले के मुकाबले कम लगता है और रोगी का पहला रिहैबिलिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है।
1: और कुछ क्या ऑपरेशन के पहले या बाद में कोई सावधानी बरतनी पड़ती है क्या?
0: जी हाँ, ऑपरेशन के बाद हम लोग आमतौर पे रोगियों को हिदायत देते हैं कि उन्हें काला चश्मा पहनना है और जो दवाई विशेषज्ञ उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें आंख में अवश्य डालना चाहिए। आंखों को कभी नहीं मलना चाहिए। सावधानी बरतनी चाहिए कि आंखों में चोट न लगे। ऑपरेशन किए गए आंख की तरफ करवट लेकर 2 या 3 सप्ताह तक सोने से हम लोग मना करते हैं और भारी वजन उठाने से भी हम लोग मरीज को रोकते हैं।
1: तो अभी आपने डॉक्टर आर के वर्मा से सुना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर आप कराते हैं तो क्या क्या सावधानी रखें, और इस ऑपरेशन की जो नवीनतम तकनीक है वो भी हमारे पास अब उपलब्ध है। सबसे अच्छी बात यह है कि अनुमंडल स्तर तक इसके विशेषज्ञ जो कृत्रिम लेंस है उसका प्रत्यारोपण करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा, ये था हमारा दैनिक कार्यक्रम। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना की शुरुआत कर रहे हैं इस देश वंदना से।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। ये है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। स्वर जुबिन नौटियाल और जया किशोरी के हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न हुआ। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान, मुख्य स्वर कविता कृष्णमूर्ति के हैं।

काक भुशुंड के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम के चरणों में उनका अनन्य प्रेम देखकर पक्षीराज गरुड़ कृतकृत्य हुए, बोले, हे नाथ, आपने श्री राम की कथा और ज्ञान तथा भक्ति की महिमा सुनाकर मुझे परम सुख और शांति प्रदान की है। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा सर्वदा आपका ऋणी रहूंगा। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम के अनुरागी हैं। इस जगत में आप जैसा बड़भागी और कौन होगा? संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब का अस्तित्व परोपकार के लिए होता है। कवियों ने कहा है कि संत हृदय नवनीत के समान होता है, किंतु मैं कहता हूं कि उन्होंने कदाचित पूर्ण सत्य नहीं कहा, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, जबकि संतों का हृदय तो दूसरों का दुख देखकर पिघलता है। पार्वती को काकभुशुंडी गरुड़ संवाद का ये प्रसंग सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, गरुड़ ने बार बार अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर काकभुशुंडी के चरणों में सिर नवाकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। संत समागम जैसा कोई पुण्य कार्य नहीं होता, किंतु ऐसा अवसर प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। मैंने वो इतिहास सुनाया जिसे अपने कानों से सुनने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। धन्य है वो देश जहां गंगा प्रवाहमान है। धन्य है वो स्त्री जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य है वो राजा जो न्यायप्रिय होता है। और धन्य है वो द्विज जो अपने धर्म पर अडिग रहता है।

रामचरितमानस गान अभी आपने सुना आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विवरण में। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। प्रातः 7:05 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। समाचार प्रभात का प्रसारण समय होता है प्रातः 8:00। प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं 8:48 पर। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन 9:10 पर। दस बजे आनंद ले सकेंगे आप फिल्म संगीत का और 10:30 पर भक्ति संगीत का। शास्त्रीय संगीत आप सुनते हैं प्रातः 11:00। 11:30 से 12:30 पर आनंद ले सकेंगे आप पुनः फिल्म संगीत का। श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार का प्रसारण समय होता है 12:30 पर। आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद होगा 1:15 पर। दोपहर 2:00 प्रादेशिक समाचार, 2:05 पर इलाकाई खबरें और 2:10 पर आप सुना करते हैं रोजगार सूचना। दोपहर समाचार आप सुनते हैं 2:15 पर और 2:30 पर फिल्म संगीत। प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत कुछ गुजराती गीत आप सुनेंगे सुरेश रावल के स्वर में आज 2:03। ये थे हमारे इस सभा के मुख्य कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा की शुरुआत 5:00 युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के साथ की जाती है। शाम 5:40 पर आनंद ले सकेंगे आप फिल्म संगीत का। विद्यापति गीत आप सुनते हैं 6:10 पर। मैथिली संवाद का प्रसारण समय होता है 6:25 पर और कार्यक्रम झरोखा आप सुनेंगे काम घर के अंतर्गत 6:30 पर। किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम होता है खेती गृहस्थी 7:00। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7:30 पर जिले की हलचल के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आज आप सुनेंगे रात्रि 8:00।

0: तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृंखलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफ्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर

0: 6.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार पांचवें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में हम छी मणिकांत झा
1: और साथी मैं हूं मनोज। आप तमाम श्रोता को मनोज का प्यार वाला नमस्कार। साथी मणिकांत जी आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार मनोज जी, कार्यक्रमक शुभारंभ हम सब सुविचार से करी छी।
1: जरूर, हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है, ये विचार हैं गौतम बुद्ध के।
0: और सुविचार के बाद उन पविची इतिहासक पन्ना, इतिहासक पन्ना में अजगाते थे अर्थात 13 जून क्या विशेष रूप से जानल जाइए ते पर एक नज़र।
1: 1420 में जलाउद्दीन फिरोज शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे। 1940 में जलियावाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या कर उसे हत्याकांड का बदला लेने वाले भारतीय उद्धम सिंह को लंदन में फांसी दी गई थी। 1993 में किम कैपबेल कनाडा की पहली महिलाएं प्रधानमंत्री बनी थी। 2001 में नेपाल शाही परिवार हत्याकांड में दीपेंद्र की प्रेमिका दिव्यानी का जांच आयोग के समक्ष गवाही से इनकार की थी। 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा घर में आग लगने से 59 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 100 से अधिक घायल हो गए थे। 1994 में दीपिका कुमारी भारतीय महिला तीरंदाज हैं का जन्म हुआ था। 1923 में प्रेम धवन हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार का जन्म हुआ था।
0: इछल आजुक इतिहास, आय के इतिहास के दिन की विशेष घटनाक्रम भेले तकर हमरा लोकन खन अवलोकन केलो। और इतिहास के बाद अभी वर्तमान में, वर्तमान एखन जेठ चल रहा है, दोसर जेठ अर्थात मलमास अधिमास या पुरुषोत्तम मास जे कही से एखन चल रहा है और दोसर जेठ के कृष्ण पक्ष एखन चल रहा है। जेठक दोपहरिया ओहना सब दिन से नामी छे, लेकिन एक बीच में रह कर जे हल्लुक वर्षा भ जा रहा है तैसे किछु आफियत छे, ओना मानसून के आगमन सेहो भ चुकल है अपना क्षेत्र में, तकर किछु प्रभाव एकाध दूटा जिला, दू चारिटा जिला में जे छै से देखबा में एबो कैल है। और एखन मेघौन जका रह रहा है तो तैयो एहन स्थिति में जे छै से अपना सबके स्वास्थ्य के प्रति अगर कड़गर रौद भ जाय छै तो ओहिमे ध्यान राख के जे रौद से बची और कोनो कारण बस रौदक चपेट में नहीं पड़ी। रौद घर से जखन निकली तो माथ पर गमछा या हाथ में छाता लकर निकली, जैसे प्रत्यक्ष प्रभाव रौद के नहीं पड़े। ओना कोशिश ई रहबाक चाही जे अगर जरूरत नहीं है तो रौद में निकलबे नहीं करी। रौद उगवा से पूर्व मने कड़गर हेबा से पूर्व जे छै से कार्य संपादित कऽ ली, और बहुत बेसी अगर जरूरत है तहन सुरक्षा के जे उपाय छै से कऽ कऽ निकली भरि पेट पानि

0: अवश्य पीबी तखने अहाँ बाहर निकली कि नहीं। गप सप तो अपना सब करते रहब ये नमस्कार मिथिला कार्यक्रम में रंग बिरंगी सामग्री लक हम सब उपस्थित हो अपना श्रोता के लिए तो आरम्भ करे सब परसव और सबसे पहले सुने मैथिली सुगम संगीत
1: आइए सुनते हैं।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: महाराज महेश ठाकुर रचित ए भगवती गीत के स्वरदार हलचली है डॉक्टर ममता ठाकुर।
4: ऐसे ऐसा चलते हम लोग जहाँ हम सबों को इंतजार रहता है, जी हाँ, अपने आस पड़ोस की गतिविधियाँ संस्कृति पर डालते हैं नज़र, यानी कि हाल चाल लेकर के उपस्थित हैं मणिकांत जी।
3: नमस्कार। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार सब गैस एजेंसी के स्पष्ट निर्देश देलन है जे LPG गैस बुकिंग प्राप्त हुआ के बाद संबंधित गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ता के घरे घर गैस निर्धारित दर पर शीघ्र पहुँचेनाई सुनिश्चित करें। ओ जिलावासी से अपील कलन जे अपन क्रम एवाक इंतजार करी, अफवाह पर ध्यान नहीं दी, नियमानुसार सब ग्राहक के सौ समय गैस सिलेंडर उपलब्ध कराल जा रहा है। दरभंगा जिला में कलियो 75 गैस एजेंसी के माध्यम से 9,776 LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ता के बीच वितरित कैल गेल। जिला में एक नियंत्रण कक्ष के स्थापना कैल गेल जाहि में गैस के समस्या से संबंधित विवरण अहाँ द सके छी। नियंत्रण कक्ष के नंबर है 06272245055। एहि पर अपन समस्या अहाँ दर्ज करवा सकै छी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2026 के अवसर पर पटना स्थित दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास के क्षेत्र में कैल गेल उत्कृष्ट कार्य के लेल राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के आयोजन कैल गेल। कार्यक्रमक उद्घाटन श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार, उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, विशेष सचिव उपेंद्र प्रसाद, विशेष सचिव सह सचिव बोर्ड सुनील कुमार यादव आ श्रम आयुक्त बिहार राजेश भारती द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित होकर कैल गेल। कार्यक्रम के मध्य वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में बाल श्रमिक के विमुक्ति एवं पुनर्वास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करय वाला प्रमंडल जिला

0: एवं प्रखंड के सम्मानित कयल गेल। एहि अवसर पर दरभंगा प्रमंडल के उप श्रम आयुक्त राकेश रंजन के प्रमंडल स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लेल प्रथम स्थान प्राप्त हेबा पर सम्मानित कयल गेलैन। राज्य स्तर पर आयोजित मूल्यांकन में दरभंगा जिला सेहो उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करैत जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कयलक। ओतहि प्रखंड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लेल दरभंगा जिलाक 3 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के सेहो पुरस्कृत कयल गेलैन। एहिमे बहादुरपुर प्रखंड के नीतीश कुमार, बहेरी प्रखंड के विजेता भारती आ बेनीपुर प्रखंड के नवचंद्र प्रकाश शामिल छथि। विशेष उपलब्धि ई रहल जे राज्य स्तर पर चयनित शीर्ष 10 प्रखंड में सँ दरभंगा प्रमंडल के 7 प्रखंड स्थान बनाकर पूरा राज्य में अपन परचम लहरौलक। जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति दरभंगा के बैसार काल्हि जिला समाहरणालय परिसर में भेल। बिहार सरकार के आ भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम के उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ायब आ वृक्षारोपण के जन आंदोलन के स्वरूप प्रदान करब छल। एहि अवसर पर बिहार सरकारक पथ निर्माण विभाग सह मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र, बिहार विधान परिषद के सदस्य हरि सहनी, विधायक जाले जीवेश कुमार, बेनीपुरक विधायक विनय कुमार चौधरी, दरभंगा ग्रामीण के विधायक राजेश कुमार मंडल, जिलाधिकारी कौशल कुमार आ नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति वृक्षारोपण कऽ पर्यावरण संरक्षण के संदेश देलैन। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हालचाल में पुनः अपने स्वागत है। दरभंगा जिला के विश्व सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के बैसार काल्हि जिला के प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र के अध्यक्षता में आयोजित कयल गेल। बैसार के संबोधित करैत मंत्री शैलेंद्र कहलनि जे 20 सूत्री के बैसार जिला के विकास एवं योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लेल अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओ कहलनि जे सब पदाधिकारी अपन दायित्वक गंभीरतापूर्वक निर्वहन करैत आ दरभंगा के राज्य में प्रथम जिला बनेबाक दिशा में कार्य करैत। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के विभिन्न विभाग के जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित करबाक निर्देश देलनि। संगे सड़क निर्माण एवं ओकरा से संबंधित बाधा अविलंब दूर कऽ कऽ निर्माण कार्य के गति में तेजी अनबाक निर्देश अभियंता के देलनि। वरीय पुलिस अधीक्षक आ SDPO के थाना स्तर पर औचक निरीक्षण करबाक निर्देश सेहो देल गेलनि। जिलाधिकारी कौशल कुमार के दरभंगा के सुसज्जित करबा के लेल समग्र विकास हेतु मानचित्र तैयार करबाक निर्देश मंत्री द्वारा देल गेल। उम्हर जिला के अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति जिला के प्रभारी मंत्री के अध्यक्षता में कार्यान्वयन समिति के बैसार सेहो आयोजित कयल गेल। एहि अवसर पर मंत्री द्वारा संभावित बाढ़ वर्ष 2026 के कार्य योजना के लेल पुस्तकाकार निर्देशिका विमोचन सेहो कयल गेल। बैसार में निर्देशित कयल गेल जे प्रत्येक अंचल में 500 पॉलीथीन सीट्स के अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित कयल जाए। पश्चिम कोसी नहर प्रमंडल दरभंगा के कार्यपालक अभियंता के निर्देश देल गेल जे नहर के पानि खेत तक पहुँचा ई सुनिश्चित कयल जाए। मंत्री जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के निर्देशित कयलन के चिन्हित 175 संवेदनशील स्थल के सूची विधानसभावार बनाकर उपलब्ध करा देल जाए। इमे और कैटा विषय पर जे छै से चर्चा कयल गेल। किरतपुर अंचल के झगरुआ गांव में भेल नाव दुर्घटना में 7 व्यक्ति के बचाव वाला आपदा मित्र

0: रविंद्र कुमार के सम्मानित सेहो कैल गेलैन। दरभंगा में काल्हि सवेरा कैंसर हॉस्पिटल कंकरबाग पटना एवं आरएस मेमोरियल कैंसर सोसाइटी कंकरबाग पटना के संयुक्त तत्वावधान में एक व्यापक कैंसर जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल। कार्यक्रमक उद्देश्य आमजन के कैंसर के शुरुआती लक्षण, समय पर जांच एवं उपचार आ ऐसे बचाव के उपाय के प्रति जागरूक करब छल। सहरसा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय सभागार में विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर अमित कुमार RDDE कोसी प्रमंडल सहरसा सह आयुक्त के सचिव के नेतृत्व में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल। एहि अवसर पर उपस्थित पदाधिकारी कर्मी द्वारा कोनो रूप में बाल श्रम के समर्थन नहि करबाक आ बढ़ावा नहि देबाक संबंध में शपथ लेल गेल। एहि संग आजुक हालचाल सम्पन्न भेल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: मौसम के जानकारी के संग उपस्थित छह मनोज कुमार।
4: पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 13 से 17 जून तक के बीच में मेघ गर्जन, वज्रपात एवं तेज झोंकेदार हवाओं के साथ उत्तर बिहार के जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। 13-15 जून के बीच मेघ गर्जन और कहीं कहीं पर हल्के वर्षा होने की भी संभावना है। 1-2 स्थान पर मध्य वर्षा हो सकती है। इस क्षेत्र में अच्छी वर्षा की संभावनाएं नहीं है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 32 सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि बेगूसराय एवं सारण जिलों में यह 34 से 36 तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 22 से 26 सेल्सियस के बीच रहने की संभावनाएं हैं। सुबह में सापेक्षिक आर्द्रता 75 से 80% तथा दोपहर में के सापेक्षिक आर्द्रता 30 से 35% रहने का अनुमान है। हवा मुख्य पूर्व दिशा से 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावनाएं हैं।
0: देखल मौसम संबंधी जानकारी, अब लोकल अपडेट सुन लीजिए।
4: अगर बात करें रेलवे की तो 8:26 पर होंगे नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट। दोपहर 12:33 पर होंगे पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस। आज शाम 7 बजे होंगे नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। शहर में बिजली की समस्या होने पर आप कॉल कर सकते हैं, जिसका मोबाइल नंबर है 77-63-81-87-77। दूसरी नंबर है 92-64-45-64-13 पे। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट या मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर के अगर आप नगर निगम कक्ष में फ़ोन करना चाहते हैं, उसका नंबर है 62-02-77-77-40 पर शिकायत कर सकते हैं। अगर विमान की बात करें तो 9:30 पर है मुंबई के लिए, 11:30 पर दिल्ली के लिए, 12:25 पर कोलकाता के लिए, 12:50 पर दिल्ली, 1:35 पर मुंबई, 3 बजे हैदराबाद, 4:35 पर हैं दिल्ली के लिए।
0: तो इच्छा लोकल अपडेट। घर से अगर अहाँ यात्रा पर निकले छी ट्रेन पकड़वा के लेल आकि हवाई जहाज पकड़वा के लेल, तो चलवा से पूर्व समय सारणी से एक बेर अवगत भ जाओ। तात्कालिक स्थिति की ये ट्रेन के आ हवाई जहाज के सेहो बुझ लिय, किया तो उसे अहाँ के समय के अपव्यय नहीं हैत। संगे किछ समय हाथ में लक जरूर निकलू, जैसे रास्ता में कतौ अगर जाम छै, कोनो कारणवश विलम्ब भ रहल है, तो अहाँ के ट्रेन आ कि हवाई जहाज छूटे नहीं, अहु बात पर ध्यान देवाक चाही। और सुरक्षित यात्रा करवा के लेल गति सीमा जे छै से निर्धारित कैल गेल छै, ओकर पालन करी। यातायात के जे नियम छै तकर पालन करी, तो अपनो सुरक्षित रहब, सामने वाला के सेहो अहाँ सुरक्षित राखि सकै छी। खास कर जे बाइक चलेनहार छी, हुनका लोकनिसँ आग्रह जे हेलमेट के जे छै से प्रयोग निश्चित रूप से करी। कार चलाबै वाला के लेल

सीट बेल्ट लगेनाइ अनिवार्य छै, तऽ ओहो बातके ध्यान सब गोटाके देबाक चाही, किया तऽ ई सबटा चीज जे छै से अहाँके जीवनक सुरक्षाके लेल निर्धारित कयल गेलै, नहि कि नियम कानून सरकारक कागजमे बान्हल छै से बात नहि छै। सबहक प्रति जिम्मेदारी जे छै से अपना स्वास्थ्यके या अपना शरीरके बचेबाक लेल छै, तऽ एहि सब चीजपर नजरि दैत तखन यात्रा करी आओर सुरक्षित यात्रा करी, इएह हमर सभक आह्वान रहत, इएह हमर सभक निवेदन रहत। गप सप होइत रहतै लेकिन हमरा लगैए जे आब गीतनादके इच्छा अपनो लोकनिके मोनमे जागृत होइत हैत आ हमरा सभके तऽ भए रहल है, तऽ सुनल जाए सुन्दर सनक एकटा फिल्म सङ्गीत।

0: गीत बनाएंगे। बहुत सुंदर ये संगीत एखन हमरा लोकन सुन रहल छलहुँ हैं। हमरा उम्मीद है जे अपने लोकन के नीक लागल हैत। और एखन जे एरा चल रहल है, जे समय बीत रहल है, ओ ऑनलाइन के युग है और सब चीज ऑनलाइन में परिणत भ रहल है। वो चाहे खरीदारी हुए, चाहे पढ़नाइ हुए, चाहे नौकरी हुए, सब चीज में ऑनलाइन जे छे से आब अपन जबरदस्त प्रवेश देखा रहल है। और ओहि पर में लोग धीरे धीरे आश्रित भेल जा रहल छथि। खास कर पढ़ाई के क्षेत्र के अगर बात करी तो ऑनलाइन पढ़ाई तेजी से आगा बढ़ रहल है और ऑफलाइन पढ़ाई के जे छे से बात धीरे धीरे कम भ रहल है। लेकिन दुनू पढ़ाई के जे छे से अंतर अलग है। अगर अहाँ ऑफलाइन पढ़े छी तखन आ ऑनलाइन पढ़े छी तखन, दुनू में किछ बात के ध्यान रखबाक चाही।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन में, ऑफलाइन में होता क्या है कि हमें वहाँ जा कर के समय देना पड़ता है, शिक्षक के समक्ष बैठना पड़ता है तब पढ़ते हैं। ऑनलाइन में होता क्या है कि हम अपने हिसाब से अपना समय निकाल करके हम पढ़ाई करते हैं। वहाँ सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि सबसे बड़ा कि आप जो आते जाते हैं, जो समय बर्बाद होता है वो बचत होता है ऑनलाइन में। और अपना सारा काम करके निश्चिंत होकर के ही आप अपना समय दे करते हैं पढ़ाई में। सिर्फ इसमें समस्या ये होता है कि ऑनलाइन में कि वहाँ आपको कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य डिजिटल उपकरण की सहायता से आप घर में बैठकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में होता क्या है कि आप जब कॉलेज जाते हैं वहाँ आपको समय लगता है, समय के साथ साथ भाड़ा किराया वगैरह जो है सो आपको साथ में खर्चा करना पड़ता है, फिर वहाँ उतना घंटा समय देना पड़ता है तो फिर वापस आना पड़ता है। तो इस दोनों में यही फ़र्क

0: है कि उसमें ऑनलाइन में आपका समय का बचत होता है, खर्चा कम पड़ता है, ऑफलाइन में समय ज़्यादा लगता है, खर्चा भी ज़्यादा पड़ता है।
1: सहजता जे छै से ऑनलाइन में बढ़ल जा रहल छै। कोनो वर्ग करवा के लेल, क्लास करवा के लेल अहाँ के अपना घर में बैसल मोबाइल आ कि कंप्यूटर पर में बैस के अहाँ सब विषय के अध्ययन प्राप्त कर सकै छी। और ओकरे अगर अहाँ कॉलेज में क्लास करक लेल जाएब, स्कूल में क्लास करक लेल जाएब, तो अहाँ के अलग अलग वर्ग में अलग अलग शिक्षक से पढ़ पड़त। लेकिन एहि में ऑनलाइन वाला में

0: जीत आ तकर बाद अहाँ अध्ययन सेहो कऽ सकैत छी। जेनाकि मनोज जी कहलनि जे जय आबयके जे समय ओकर बचत हैत, खर्च ओकरो बचत हैत, लेकिन हमरा लगैए जे ऑनलाइन आओर ऑफलाइन एहि दुनूमे किछु गुण आ किछु दोष तऽ अवश्य सभ चीजमे होइत छै, तैँ ओहूमे छै। ऑनलाइनमे छै जे अहाँ पढ़ि रहल छी, अहाँके मनक जिज्ञासा जे अइ से अहाँके कम्प्यूटरे समाधान कऽ रहल हइ, लेकिन ऑफलाइनमे अहाँके मनक जिज्ञासाके समाधान अहाँके शिक्षक, अहाँके गुरु जे छथि से कऽ रहला हइ। तऽ ओ किछु किछु अन्तर तऽ होइ छै, लेकिन जे एखन आब आजुक जे युग छै ओहि युगमे ऑनलाइनके चलाचलती जे छै से बहुत बेसी बढ़ि गेलैए आओर बहुत सहजतासँ लोक जे छै से अध्ययन कऽ रहला है आओर पढ़ि रहला है। तऽ कहबे कयलहुँ जे खाली ऑनलाइन पढ़ाइएमे नहि छै, पढ़ाइमे तऽ छैहे, एकरा अतिरिक्त आब जीवनके हर क्षेत्रमे ऑनलाइनके जे छै से चलाचलती भऽ गेलैए आओर सभ चीज लोक आब मोबाइलके हाथमे राखि कऽ आओर ओहीके द्वारा जे छै से प्रयोग कऽ रहल छथि। आब अहाँ कोनो दोकानमे खरीदारीके लेल जायब आ कहबै जे 15 रुपैआके हमरा कोनो सामान दिअ, तऽ ओहि दोकानदारके भऽ सकैए जे 50 टकीके अहाँ नोट देबै तऽ 35 रुपैआ वापस करयके स्थितिमे नहि रहै छथि, किया तऽ खुदराके समस्या रहै छै। ऑनलाइनके कारण लोक आब सभटा लेनदेन जे छै से मोबाइलसँ कऽ रहल हइ आओर UPI पेमेंट कऽ रहल हइ, ताहि दुआरे जे छै से खुदराके अभाव रहै छै। तऽ ओहि कालमे बुझाइ छै जे नहि ऑनलाइन जे छै से बहुत फायदाकारी छै आओर बिना कोनो हर हर खटखटके अहाँ भुगतान अहाँ कऽ लै छी आओर सामान खरीद लै छी। तहिना सभ चीजमे पढ़ाइयो लिखाइमे जे छै से छात्रके मोबाइल अगर हाथमे छनि तऽ सभ चीज दुनिआँके कोनो लाइब्रेरीमे ओ ओतयसँ हुलकी मारि सकैत छथि, कोनो लाइब्रेरीमे कतहु जे चीज छै ओकरा पढ़ाइके लेल हुनका उपलब्ध भऽ जाइत छनि। तऽ ई बड़का एगो अचीवमेंट छै ऑनलाइनके, जे किताब अहाँ सौँसे तकैत रहब या पाइ खर्चा कऽ कऽ कीनब आ तहन अहाँ ओकरा पढ़ब, से सहजतासँ अहाँके मोबाइलके माध्यमसँ आ कि कम्प्यूटरके माध्यमसँ ऑनलाइन उपलब्ध भऽ जाइए। तऽ ई बड़का बात छै, ई एकटा प्लस पॉइंट अगर एकरा देखियौ तऽ ई छै जे ऑनलाइनके माध्यमसँ अगर अहाँ पढ़ाइ करय चाहैत छी तऽ कतहु अहाँके कोनो बाधा कहिके जे छै से ठाढ़ नहि हैत, अहाँ जे इच्छा अहाँके हैत से सहजतासँ अहाँके प्राप्त भऽ जायत। जे अध्ययन सामग्री अहाँ चाहैत छी ओ अध्ययन सामग्री अहाँके सहजतासँ जे छै से भेट जायत। विश्वके कोनो लाइब्रेरीमे, कोनो पुस्तकालयमे अहाँ कोनो किताबके सर्च करय चाहैत छी जे ऑनलाइन उपलब्ध छै तऽ ओ अहाँके भेट जायत आओर ओकरामे कोनो माथापच्ची नहि करय पड़त। तऽ ईसभ ऑनलाइनके जे छै से एकटा बड़का अचीवमेंट बुझियौ जे छै, आओर ऑनलाइन पढ़ाइके माध्यमसँ अहाँ जे छै से आगाँ बढ़ि सकैत छी। आब किताब कहिके पहिले की होइत छलै ने, बहुत गोटेके किताबे नहि भेट पबैत छलै,
1: समस्या हो जाता था, लाइब्रेरी जहाँ तहाँ खोजवाना पड़ रहा था।
0: हाँ, आर्थिक स्थिति सेहो बहुत गोटाके गड़बड़ी रहलाके कारणे जे छै से एकटा किताब गाँवमे होइत छलै तऽ ओहिसँ 2-4 विद्यार्थी 5 विद्यार्थी पढ़ैत छलाह, लेकिन आबके युगमे ओ बात नहि छै। ऑनलाइनपर अहाँ कोनो साइटपर जाउ आओर हर किताब, हर पुस्तक अहाँके उपलब्ध छै, जे सामग्री अहाँ ताकऽ चाहब अपन पढ़ाइ लिखाइके लेल से अहाँके सहजतासँ प्राप्त भऽ जायत। बहुत रास ओकरा लेल एप्लीकेशन छै, बहुत रास जे छै से साइट बनल छै जतय अहाँ जा कऽ अपन पढ़ाइ लिखाइके आगाँ बढ़ा सकैत छी। तऽ आजुक युगमे अगर कही तऽ ऑनलाइन बनाम ऑफलाइनमे जे छै से ऑनलाइन आगा बढ़ रहा है, ऑफलाइन के धीरे धीरे जे छै से पाछा छोड़ने जा रहा है कि नहीं।
1: हाँ, वो तो देखने के लिए मिल ही रहा है कि लोग घर बैठे हुए, सबसे बड़ा इसमें है कि समय का जो बचत हो जाता है, सबसे बड़ा बेनिफिट है अभी के समय में। और हम लोग देखते हैं कि मतलब है कि इसमें भी थोड़ा सा दोष है कि आप जो कंप्यूटर पर बैठ करके पढ़ते हैं तो थोड़ा वहाँ जो होता है कि आँख पे असर ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा जो अच्छा होता है जहाँ गुण होता है वहाँ गुण भी होता है, आँख पे असर ज़्यादा पड़ता है। आप किसी मित्र से वहाँ संपर्क नहीं हो पाता है, डिस्कशन नहीं कर पाते हैं कि इसके विषय में, लेकिन होता है कि ऑफलाइन में जो होता है आप जाते हैं विद्यालय महाविद्यालय तो वहाँ आपके साक्षात शिक्षक होते हैं, आपके साथी लोग होते हैं, कुछ वहाँ उनसे मदद करते हैं, बातचीत करके बहुत सारा चीज़ कर लेते हैं। लेकिन होता है कि ऑनलाइन में होता है कि आप अकेले, सिर्फ अकेला रूम में बैठ करके आप उस पर पढ़ाई करते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई भी है बुराई भी है जहाँ इन सबों को लेके हम चलते हैं।
0: कवि लिखने छथि जे सुख दुख है दोनों जीवन में, दोनों मिलते जीवन क्रम में। तो सुख आ दुख ई तो जे कोनो चीज में अहाँ देखबे तो दोनों चीज में अहाँ के गुण लाभ हानि सब में

किछु ने किछु भेटबे करत, तऽ जे बात अहाँ चर्चा कयलहुँ हँ, जे दोस्त यार या समाज, एहिसँ अहाँ कटि जाइ छी अगर ऑनलाइन पढ़ाइमे या ऑनलाइन काज करै छी तऽ अहाँ एकाकीपन जे छै से व्यतीत कऽ रहल छी। अगर इसकुलमे जाइ छी, कॉलेजमे जाइ छी तऽ अहाँके इष्ट मित्रसँ सेहो भेट होइए, प्रत्यक्ष शिक्षकसँ अहाँके भेट भऽ रहल हँ, तऽ ईसभ तऽ छै, गुण दोष तऽ छै, जाहि चीजमे गुण हेतै ओहिमे दोष सेहो हेतै, तऽ अहाँ ओहिमे सामञ्जस्य स्थापित कऽ कऽ आओर आगाँ बढ़ी तऽ लाभदायक होयत, इएह हमर सभक कहब अइ। आ गपशप हमहूँसभ जे छै से कने कम कऽ कऽ सामञ्जस्य स्थापित करी गीत सङ्गीत आओर सुन्दर सनक एकटा गीतके आनन्द फेरसँ अपना श्रोता तक पहुँचाबी।

0: मोहब्बत की है तुम्हारे लिए बहुत सुंदर एक गीत एखन हमरा लोकन सुन रहल छलौं। कार्यक्रम संबंधी एकटा जानकारी अपने लोकन के दी, रक्तदान क्यों है महान, महादान। ई आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगला अंक के विषय है। एकर विशेषज्ञ हेता दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पतालक रीजनल ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर संजीव कुमार। कार्यक्रम काल्हि दिन में 11 बजे से आरंभ हैत और ई कार्यक्रम के मध्य अहाँ कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकै छी हमरा फोन नंबर के माध्यम से। हमर फोन नंबर है 0627222481। दोसर नंबर है 9430029353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण के समय अपने के मौन है, फिर हम दोहराबे छी, रवि दिन अर्थात 14 जून के दिन में 11 बजे से। तो ई कार्यक्रम अपने अवश्य सुनी और एमे जुड़ कर अहाँ अपन विचार सेहो आकाशवाणी के माध्यम से श्रोता तक पहुँचाबी। कार्यक्रम संबंधी सूचना संपन्न भेल आ चलवा से पूर्व एक नज़र समसामयिक घटना पर।
1: आज 3 दिन के केरल दौरे पर जाएंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत। पीएम मोदी 13 से 19 जून तक फ्रांस के सोलोकिया के दौरे पर जाएंगे। BHU में विज्ञान भारती के 2 दिवसीय 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे CM योगी। ईरान हुरमुज से गुजर रहे जहाजों को फिर से बनाया निशाना, ड्रोन ने किया हमला।
0: तो इछल समसामयिक घटना पर एक नज़र आ एक संग आब आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रमक समय सेहो संपन्न भ रहल है। तो मणिकांत के
1: और मनोज को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार मिथिला।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भर तुहार आ बैठल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: जिंदगी कैसी है बहेली हाय,
4: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
5: श्रोताओं, रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन रक्षा की जा सकती है, बल्कि रक्तदाता को भी इससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 0627222481, हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353, 9430029353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय याद रखें रविवार 14 जून, कल यानी रविवार 14 जून 2026 ईस्वी दिन के 11 बजे। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

0: गाम घर संध्या 6:30 पर
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों

0: के 2000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
5: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
7: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ

0: विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
1: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को

0: नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
1: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
0: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, राजस्व कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में एक तकनीकी टीम बनाई जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग सामग्री में धातु की पिन और तारों के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के 17 जिलों में पूरी तरह सक्रिय। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों में आज भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में विकसित किए जा रहे नए औद्योगिक क्षेत्रों और सैटेलाइट टाउनशिप योजनाओं को समय से पूरा किया जाएगा। उन्होंने उद्योग विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में तेजी लाई जाए। श्री चौधरी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय पर बल दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राजस्व कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में एक तकनीकी टीम बनाई जाएगी। यह टीम मुख्यालय की आईटी टीम के साथ लगातार संपर्क में रहकर तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करेगी। राजस्व कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलावार समीक्षा के दौरान श्री जायसवाल ने यह निर्देश दिए। इधर राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और भूमि संबंधी अनियमितताओं के आरोप में 8 अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। पिछले एक महीने में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के 50 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

0: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग सामग्री में धातु की पिन और तारों के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि केक की सजावट और मिठाई के डब्बों समेत अन्य खाद्य पैकेट में पिन या तार का इस्तेमाल उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। FSSAI के अनुसार जन स्वास्थ्य को देखते हुए खाद्य उत्पाद व्यापारियों को पैकेट में पिन और तार का उपयोग बंद करना चाहिए। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान डॉ. सोमनाथन ने सभी संबंधित हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से परीक्षा का सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन नीट पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए घनिष्ठ समन्वय में काम कर रहे हैं। वहीं NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। NTA ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया AI-171 विमान दुर्घटना की जांच की प्रगति पर अंतरिम बयान जारी किया है। पिछले साल अहमदाबाद में हुई इस दुखद दुर्घटना को 1 साल पूरा हो गया है। AAIB ने कहा है कि सभी जांच गतिविधियां पूरी होने और आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा के बाद अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी। इधर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि विमान दुर्घटना की जांच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुसार पेशेवर तरीके से की जा रही है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा लोक भवन और उच्च न्यायालय परिसर में भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम बढ़ती उम्र के लिए योग निर्धारित की गई है। इस थीम के माध्यम से लोगों को बढ़ती उम्र में बेहतर स्वास्थ्य, सक्रिय जीवन शैली और मानसिक संतुलन के लिए योग अपनाने को प्रेरित किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मनरेगा के तहत 990 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि से प्रदेश में संचालित हो रही मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी। श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने सामग्री मद में 73,556 लाख रुपए और प्रशासनिक मद में 1,203 लाख रुपए आवंटित किए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं. ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं. मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के 17 जिलों में पूरी तरह सक्रिय हो गया है. विभाग के अनुसार सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, लखीसराय, बांका, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर जिलों में मानसून के प्रभाव से अच्छी बारिश हो रही है. इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और जमुई जिले के कुछ भागों में भी मानसून ने प्रवेश कर लिया है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य और दक्षिणी भागों में बारिश हो सकती है. इस दौरान किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है.
3: राज्य के पूर्वी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है. राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है. राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी जिलों में कुछ जगहों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है. राज्य के उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के जिलों एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है. राज्य के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिलों में एक दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना है.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है. आज हम सरकार द्वारा सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएंगे. एक रिपोर्ट.
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं. देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है. सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं. आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है. इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है. संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है. यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है. आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की. भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है. साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुँचना अधिक आसान बना रही है. आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है. भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है. अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रदेश में 21 नए पालना घर खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत नए पालना घर की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था. प्रदेश में पहले से 79 पालना घर संचालित हो रहे हैं. पटना जिले के मसौड़ी थाना क्षेत्र के मणिचक गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है. नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि अपराधियों की ओर से की गई फायरिंग में

मसौढ़ी के थानाध्यक्ष राहुल कुमार और दारोगा संजय कुमार घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश के सभी 76,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों की जमीन का डाटा बैंक बनाया जाएगा, साथ ही विद्यालय भवनों और अन्य संरचनाओं की जानकारी एकत्र की जाएगी। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार डाटा बैंक बनाने की जिम्मेदारी राजस्व और भूमि सुधार विभाग के पूर्व अधिकारियों को सौंपी जाएगी। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया। बर्मिंघम के एजबेस्टन में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 219 रन बनाए। भारत का पहला मुकाबला कल चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियाँ। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मीडिया संवाद में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बिहार में भ्रष्टाचार कर कोई नहीं बच सकता। दैनिक जागरण का शीर्षक है, नीट में छात्रों को मिलेंगे अतिरिक्त 15 मिनट। दैनिक भास्कर ने खाड़ी युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर लिखा है, ईरान के साथ युद्ध खत्म, करार जल्द होगा। प्रभात खबर ने मौसम की गतिविधियों को तरजीह देते हुए लिखा है, सूबे में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 17 जिलों में पहुंचा। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, अंतर्राष्ट्रीय शूटर जसपाल राणा का निधन। आज अखबार लिखता है, बिना रेरा नंबर के खरीदा फ्लैट या प्लॉट तो फंसेगा पैसा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, राजस्व कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में एक तकनीकी टीम बनाई जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग सामग्री में धातु की पिन और तारों के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के 17 जिलों में पूरी तरह सक्रिय, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों में आज भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: AIR at 90.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी। एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।
1: आप आकाशवाणी के कार्यक्रमों को अपने स्मार्टफोन पर न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं, कभी भी कहीं भी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: हेलो जिंदगी कार्यक्रम के अगले अंक का विषय है रक्तदान क्यों है महादान। रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन की रक्षा की जा सकती है बल्कि रक्तदाता को भी इससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। तो रक्तदान क्यों है महादान, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 0627222481, 0627222481, 9430092353 हमारा मोबाइल नंबर है, 9430029353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय है कल यानी रविवार 14 जून 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम अंजुमन अब से कुछ ही देर में।

0: खुदा बख्श लाइब्रेरी या जैसा कि इसके बानी में नहायत आजजी के साथ दी पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का नाम दिया था, ये दुनिया में इस्लामी अदब का एक बेहतरीन खजाना है।
1: ये लाइब्रेरी हमेशा के लिए पटना में कायम किया गया है।
2: पटना वो शहर है जो 2600 वर्षों से जमाने के तमाशे देखता आया है।
3: पटना रहम दिल बादशाह अशोक का शहर रहा।
0: पटना उसके बाहिम्मत दादा चंद्रगुप्त मौर्य का शहर रहा।
1: पटना मशहूर सैयाह मेगास्थनीस का शहर रहा है, जिसने यहाँ अपनी जिंदगी के 8 साल बसर किए
2: और ईसा की पैदाइश से 300 साल कबल एक हिंदुस्तानी शहर की जिंदगी की जीती जागती तस्वीर बनाकर अहले यूरोप के लिए छोड़ा गया।
3: जी हाँ, इसी शहर के गलियों में लोगों ने महात्मा बुद्ध को नजात दिलाने वाली दुनिया की तलाश में घूमते देखा।
0: इस तरह इस लाइब्रेरी को सामाजिक, सियासी और रूहानी बहुत ही अच्छा माहौल मिला।
1: खुद लाइब्रेरी भी अपने आप में कुछ कम अहम नहीं है।
2: इसमें गुजरे हुए आलिमों और गुजरे हुए बादशाहों की यादें महफूज हैं।
3: जो लोग कदीम जमाने की कदरों से वाकिफ होना चाहते हैं, ये लाइब्रेरी उनकी तमन्ना पूरी करने के लिए मौजूद है।
0: नायाब किताबों की इस लाइब्रेरी की तारीख भी कम दिलचस्प नहीं है।
1: बिहार के शुमाल में एक शरीफ मुसलमान मोहम्मद बख्श रहते थे।
2: मोहम्मद बख्श आलिम थे, शायर थे और अपनी फुर्सत के औकात में मशरिकी अदब की किताबें जमा करते थे।
3: इंतकाल के वक्त वो अपने बेटे और लाइब्रेरी के बानी खुदा बख्श के लिए 1400 किताबें छोड़ गए।
0: ज़ईफुल उम्र मोहम्मद बख्श ने इंतकाल के वक्त जो आखिरी ख्वाहिश जाहिर की वो
1: ये थी, इधर उधर नहीं, बल्कि अगर हो सके तो पटना शहर ही एक बड़ी लाइब्रेरी का मरकज बने।
2: और ये कुतुब खाना मशरिकी मालूमात और नशरियात का जरिया बने।
3: जवां हिम्मत बेटे ने, जिसे विरासत में इन किताबों के अलावा और कुछ नहीं मिला था, अपने शफीक बाप की तमन्ना पूरी कर दिखाई।
0: रोजी रोटी की तलाश में पहले वकील और फिर निजाम हैदराबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने।
1: हैदराबाद के कयाम के दौरान जब वह हाई कोर्ट से वापस आ रहे थे तो उनकी मुतलाशी नजर एक आटे के बोरे पर पड़ी जिसमें किताबें भरी हुई थी।
2: उन्होंने गाड़ी रोकी और खिचड़ी फरोश की दुकान पर जाकर किताबें देखने के बाद पूरे बोरे की कीमत पूछी।
3: खिचड़ी फरोश ने दानिशमंदी से जवाब दिया, मैं किसी और को ये बोसीदा और सड़े हुए कागजात सिर्फ 3 रुपए में देता, लेकिन चूंकि हुजूर को इसमें दिलचस्पी है इसलिए आपसे 20 रुपए लूंगा।
0: और खुदा बख्श साहब ने उसे 20 रुपए में खरीद लिया।
1: खुदा बख्श साहब का अंदाजा सही निकला। उस रद्दी बंडल में अरबी किताबियात पर एक कदीम नुस्खा मिला जो कहीं और नहीं था।
2: जी हाँ, निजाम हैदराबाद ने इस नुस्खा के लिए खुदा बख्श साहब को 400 रुपए की पेशकश की।
3: लेकिन बेसूद भला खुदा बख्श साहब उसे क्यों बेचते,
0: वो तो खुद ऐसी नायाब चीजों के दीवाने थे।
1: इस दौरान वो सैकड़ों लोगों से मिले और पूरे हिंदुस्तान में खूब घूमे।
2: दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों से वो बखूबी वाकिफ थे।
3: नायाब किताबों के जमा करने वाले की हैसियत से उनकी शोहरत नायाब और बेशकीमत किताबों के मालिकों तक पहुंच चुकी थी।
0: हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर के ममालिक उनकी पहुंच के हदों से बाहर थे,
1: लेकिन जहां चाह वहां राह वाली बात सही साबित हुई।
2: अपने दिल की आरजू पूरी करने के लिए उन्होंने एक अरबी शख्स को बहाल किया
3: जिसका नाम मोहम्मद मक्की था।
0: वो 18 वर्षों तक काहिरा, दमिश्क, बैरूत, मिस्र और ईरान के कुतुबखाने खंगालता रहा
1: और हर बार अपने आका के लिए जो कलमी किताबें उसे दस्तियाब हुई वो उनके साथ शादा व फरहा आता रहा।
2: हिम्मत मर्दां मदद।

0: खुदा।
1: जी हाँ, अगर इंसान हिम्मत से काम ले तो खुदा भी उसकी मदद करता है।
0: अब देखिए ना, खुदा बख्श साहिब की मदद के लिए खुदा ने एक बाहिमत अरबी को भेज दिया।
2: सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास फरिश्ते भी आते थे।
3: ख्वाब में उनका दीदार होता और उनके काम में हाथ बटाते।
1: एक बार तो खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद लाइब्रेरी में जीनत अफरोज हुए।
0: मशहूर मुअर्रिख यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि खुदा बख्श ने उनसे कहा कि
2: एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि लाइब्रेरी से नदी की गली में लोग खचाखच भरे हुए। मैं भी घर से निकल पड़ा था। लोग चिल्लाने लगे,
3: रसूले अकरम तुम्हारी लाइब्रेरी में तशरीफ ला रहे हैं, तुम कहाँ हो?
1: खुदा बख्श साहब ने बताया। मैं उस कमरे की तरफ दौड़ा जहाँ हाथ से तहरीर की हुई किताबें रखी थी।
0: उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा चुके थे,
2: लेकिन यहाँ हदीस की दो पन्ने किताबें मेज पर खुली रखी। लोगों ने बताया कि उन दोनों को रसूल अकरम पढ़ रहे थे।
3: इन दोनों किताबों पर लाइब्रेरी के बाणी ने एक नोट लिख दिया
1: कि किसी भी हालत में इन किताबों को कुतुबखाना से बाहर न ले जाया जाए।
0: ये कुतुबखाना कदीम आलम इस्लाम का नायाब खजाना है।
2: दुनिया में निहायत खूबसूरत खुशखती सोने की मीनाकारी बेशकीमती किताबी नक्काशी
3: और सुर्ख गुलाबी जाफरानी नीले और हरे रंगों से कुछ सफात पर मुसव्वरी से बढ़कर और कोई चीज नहीं हो सकती।
1: उनकी सादगी और खूबसूरती से बढ़कर दिल पर असर करने वाली कोई चीज न देखी गई और न ही सुनी गई।
0: जिन इंकलाबात में इन चीजों ने अपना किरदार निभाया है उनसे कहीं ज्यादा ये खुद असली मालूम होती हैं।
2: ये दमिश्क के किसी गरीब आलिम की लिखी हुई किताब है जिसकी दुनिया भर में एक ही जिल्द है।
3: ये देखिए, ये किताब किसी शहंशाह या बादशाह को तोहफे में पेश की गई है।
1: और ये किताब हीरो से मुजयन किसी शहजादी का पसंदीदा खिलौना ही रही है जो खुद भी एक आला दर्जा की शायरा थी।
0: यहाँ तारीख खानदान तैमूरिया यानी हिंदुस्तान के मुगल बादशाह जिस खानदान से ताल्लुक रखते थे उस खानदान की तारीख की एक नायाब और नफीस जिल्द है।
2: मुसव्वरी के नुक्ते नजर से ही ये किताब बेशकीमती है। इसके कम से कम 133 सफाहात पर तस्वीरें बनी हैं।
3: हर सफा के नीचे उस मुसव्विर का नाम लिखा है।
1: इनमें सबसे मशहूर मुसव्विर ईरान के शहर शिराज का रहने वाला ख्वाजा अब्दुस समद था।
0: उसने हुमायूं को खुशखती और मुसव्वरी सिखाई थी।
2: इस किताब पर शाहजहां के हाथ की लिखी हुई एक इबारत भी दर्ज है।
3: इसमें शाहजहां ने बताया है कि तैमूर और उसके जानशीनों की यह तारीख जो अकबर के जमाना के 19वीं साल पर खत्म होती है शाह बाबा के दौर में लिखी गई।
1: शाह बाबा से मुराद खुद शाहजहां अकबर हैं।
0: अख्तियार की मुहरें और अर्ज़दीद शुद की इबारतें इस किताब के काबिल एतमाद होने की तायीद करती हैं।
2: एक जगह फारसी में लिखा है कि इस किताब की कीमत 8000 रुपए है
3: और आज हजारों पौंड में भी उसका खरीदना मुमकिन नहीं।
1: ये किताब कितनी अहमियत रखती है इसका अंदाजा इस बात से होता है कि जिस अलमारी में इसे रखा गया है उसे दो कुंजियों से खोला जा सकता है।
0: इन दो कुंजियों में से एक लाइब्रेरी के डायरेक्टर के पास और दूसरी पटना के कमिश्नर के पास रहती है।
2: इस कीमती खजाना के बाद फन का एक और नमूना देखिए।
3: ये शाहजहां के जमाने की तारीख बादशाह नामा है।
1: इसके अंदर मुसव्विरों ने अपनी अंथक मेहनत से जो तस्वीरें बनाई हैं उन पर एक नजर डालने ही से आप ये महसूस कर लेंगे कि मुगलों की नस्ल में कितनी तब्दीली पैदा हो चुकी थी।
0: ये नस्ल माहौल की तब्दीली और हिंदुओं में शादी ब्याह की वजह से हिंदुस्तानी बन चुकी थी।
2: इन खालिस हिंदुस्तानी नजारों के बाद अब हुसैनी के शाहनशाह नामे की सर करें। ये किताब हमें तुर्की के उस्मान अली सुल्तान के साथ मैदान जंग में पहुंचा दी।

0: तो हिंदुस्तानी शायरों की किताबें भी यहाँ मौजूद हैं।
1: इन्हीं में अमीन खुसरो हैं, जिनकी शायरी आज भी हिंदुस्तानियों के दिलों में धड़कन पैदा कर देती हैं।
2: मीर, अनीस, गालिब, इकबाल वगैरह जैसे अजीम शायरों की सैकड़ों किताबें यहाँ मौजूद हैं।
3: यहाँ मुताला करने के लिए दुनिया भर से अहले इल्म आते रहते हैं।
0: जी हाँ, अभी मार्च 2004 में भी फ्रांस के दानिश्वर ओलिन मोले कई हफ्तों तक इस किताब का मुताला करते रहे।
1: यहाँ करोड़ों मुसलमानों की राहनुमा मुकद्दस किताब कुरान के लिए कई नुस्खे हैं, जो खुद अल्लाह की किताब है
2: और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का अजीम जखीरा है।
3: उनसे मुताल्लिक बाकिरदार आलिमों की तहरीर करदा तफसीरें हैं।
0: इस कुतुबखाना में कुरान मजीद के दो एक नुस्खे ऐसे भी हैं जो कुछ लोगों की नजर में लाइब्रेरी की नायाब सरमाया है।
1: मशहूर खुशनवीस याकूत मुस्तासमी के जरिए लिखा एक नुस्खा है। इसके आखिर

0: आखिरकार 1969 के दिसंबर में पार्लियामेंट ने खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट मंजूर करके लाइब्रेरी के एक कौमी अहमियत का अदारा करार दे दिया।
1: खुदा बख्श खां की पैदाइश बिहार के शहर छपरा में 2 अगस्त 1842 ईस्वी को हुई थी।
2: उन्हें 1883 में खान बहादुर का खिताब मिला था
3: और 1903 ईस्वी में CIE का भी खिताब मिला।
0: 66वीं यौमे पैदाइश के दूसरे दिन यानी 3 अगस्त 1908 को खुदा बख्श पैदा करने वाले से जा मिले।
1: उन्हें लाइब्रेरी के अहाते में ही एक छोटे से खुले मुकाम पर कब्र में दफन कर दिया।
2: उनके बेटे सलाउद्दीन के बयान के मुताबिक यहाँ वो अपने सफर हयात के खात्मा पर इस्लाम के बड़े बड़े मुसन्निफीन के यादगारों के गहवारे में आराम की नींद सो रहे थे।
3: एक तरफ से ये लाइब्रेरी इल्म हासिल करने वालों की प्यास बुझाती है
0: तो दूसरी तरफ यहाँ काम करने वाले 54 कारकुनों के खानदानों के सैकड़ों एरकान की परवरिश भी करती है।
1: है ना ये एक अजीम इंसान का अजीबो गरीब कारनामा।
4: हम इस अजीम को करार पेश करते हैं।
5: मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं।
6: सामिन, हमारी गुफ्तगू की जानिब कदम बढ़ाएं इससे पहले आइए आपकी समातों के हवाले। एक और प्यारी सी गजल कर रही हूँ, समात कीजिए, फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 10 बज रहे हैं, आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवाएंगे गीतकार प्रेम धवन के लिखे हुए कुछ चुनिंदा गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म शहीद के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत और संगीत प्रेम धवन के हैं।

0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको फिल्म एक फूल दो माली से। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।
1: ये पर

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो जिंदगी से संबंधित एक सूचना आपको दे दें। रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन की रक्षा की जा सकती है, बल्कि रक्तदाता को भी इससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान, ये है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर हैं वही 0627222481, 0627222481। हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353, 9430029353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय याद रखें, रविवार 14 जून 2026 यानी कल दिन के 11 बजे। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं आज गीतकार प्रेम धवन के लिखे हुए कुछ चुनिंदा गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है 10 लाख और इस गीत को संगीत से सजाया है रवि ने।

यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, मुकेश राजेंद्र मेहता और महेंद्र कपूर की आवाज में। फिल्म शहीद का यह गीत है, गीतकार और संगीतकार प्रेम धवन ने।

ये था भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम। आज आपने सुने जगजीत सिंह और पुरुषोत्तम दास जलोटा के गाए हुए कुछ भजन। भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

31.5 मीटर पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सभा। तो सभा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कबीर भजन पंडित जसराज की स्वर में।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम, पंडित जसराज के स्वर में कबीर भजन। आइए श्रोताओ, वक्त हो रहा है मधुर फिल्म संगीत की आनंद लेने का, तो आइए सुनते हैं नए पुराने मधुर फिल्म संगीत।

समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था जतिन ललित ने, और ये गीत है फिल्म गुलाम से लिया गया था, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म क्यामत से क्यामत तक से लिया गया, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद साहब ने, तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म क्यामत से क्यामत तक से।

फिल्म दिव्य शक्ति का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। श्रोताओं भी आप आनंद ले रहे हैं नए पुराने फिल्म संगीत का। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सागर से लिए गए इस गीत को शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज़ में। इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी वर्मन ने।

ये गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मर्द से एस जानकी और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

एक गोरा सुना क्या लड़की बोला हाँ। बात में बहुत दम है छाती ठोक ठोक के बोला।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म दिल से लिए गए इस गीत को। आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म मिस्टर आशिक से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

फिल्म आशिक, फिल्म आतिश का ये गीत अभी आप सुन रहे थे जॉली मुखर्जी और अलका याग्निक की आवाज़ में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बोल राधा बोल से।

फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। तो इसी गीत के साथ हम फिल्म संगीत का ये मधुर सफ़र अभी यहीं समाप्त करते हैं और अब वक्त हो रहा है हमारी श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार का। तो आइए मिलते हैं आपकी रेडियो सखी प्रेरणा से कार्यक्रम नारी संसार में।

स्वागत है आप सभी श्रोता सखी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार में। नमस्कार बहनों, आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी प्रेरणा। बहनों, आज फिर से होगी कार्यक्रम में ढेरों सारी बातें, साथ ही आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतें और हर दिन की तरह आपको वार्ता भी सुनवाएंगे। पर उससे पहले करते हैं विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। हर साल 13 जून यानी आज का दिन एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं एल्बिनिज्म क्या है। बहनों, यह कोई संक्रामक बीमारी नहीं बल्कि एक दुर्लभ और अनुवांशिक स्थिति है। इस स्थिति से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल और आंखें पूरी तरह से सफ़ेद या बहुत हल्के रंग की होती है। मानव शरीर में मेलिन नामक पिगमेंटेशन रंग द्रव के कारण बनने या बहुत कम बनने के कारण होता है। मेलेनिन ही हमारे त्वचा, बालों और आंखों को रंग देते हैं। व्यक्ति में मेलेनिन की कमी के कारण इन्हें धूप में गंभीर परेशानी होती है, साथ ही आंखों की रोशनी कमजोर होती है। यहां तक कि स्किन कैंसर का खतरा भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहनों, अभी तक तो इनका पूर्णतः इलाज नहीं है, लेकिन बचाव और सही देखभाल ही इसका सबसे बेहतर उपाय है। त्वचा और आँखों को सुरक्षित रखकर इस स्थिति के साथ एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है।

बहनों, इस स्थिति और इससे जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे कमजोर दृष्टि और स्किन कैंसर का खतरा के प्रति लोगों को जागरूकता करना इस दिन का उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन की शुरुआत एल्विनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के मानव अधिकार, उनकी सुरक्षा और समाज में समानता के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। बहनों, दुनिया के कई हिस्से, विशेषकर कुछ अफ्रीकन देशों और एल्विनिज्म से पीड़ित लोगों को अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। उनके खिलाफ होने वाले हमलों और भेदभाव को समाप्त करना विश्व एल्विनिज्म जागरूकता दिवस का मुख्य लक्ष्य है। इस दिवस के जरिए एल्बिनो लोगों की चिकित्सा और बचाव संबंधी शिक्षा भी दी जाती है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में दुनिया भर की लोगों और समुदायों को याद दिलाता है कि एल्विनिज्म वाले व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक समान रूप से पहुंचाना है, उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को प्रस्ताव पारित कर पहली बार 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्विनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था। इसके बाद से हर वर्ष 13 जून को यह दिवस मनाया जाता है। तो बहनों, यह एक अनुवांशिक बीमारी है, तो इसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें बचाव के साथ और सभी को एक समानता के साथ जीने का हक है। तो अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और सामाजिक बहिष्कार को ख़त्म करना ही हम लोग का उद्देश्य है। तो बहनों, ये जाने आज के बारे में हम कि एल्विनिज्म दिवस क्या है। तो यह वह एक संक्रामक बीमारी है। तो बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये गीत।

0: यार नाटक लेकर नचना यार नचना।
1: अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्तर नचना, भैन की सगाई चे तो भाई नू नचना ही पैंदा है।
1: हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ए गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना।

0: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
1: बात घर की।
2: नमस्कार, मैं रवि किशन। अरविंद जी ने पूछा है, निर्माण के लिए बजट का अनुमान ये पहले ही लगाना चाहते थे ताकि प्लानिंग के साथ आगे इनके मन को तसल्ली रहे। इंजीनियर बाबू से जवाब सुनते हैं।
3: एक बेहतर कॉन्ट्रैक्टर या राजमिस्त्री का चुनाव, उचित घर बनाने की सामग्री का इंतजाम और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। घर के इंटीरियर्स जैसे टाइलिंग, इलेक्ट्रिकल काम, पेंटिंग और फर्नीचर घर बनाने के बजट का बड़ा हिस्सा होते हैं, लेकिन आप घर के ढांचे की गुणवत्ता और मजबूती से कोई समझौता ना करें।
1: बात घर की।
0: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक समय

0: नमस्कार, मैं रवि किशन। अरविंद जी ने पूछा,
1: निर्माण के लिए बजट का अनुमान ये पहले ही लगाना चाहते थे ताकि प्लानिंग के साथ आगे इनके मन को तसल्ली रहे।
0: इंजीनियर बाबू से जवाब सुनते हैं।
2: एक बेहतर कॉन्ट्रैक्टर या राजमिस्त्री का चुनाव, उचित घर बनाने की सामग्री का इंतजाम और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। घर के इंटीरियर्स जैसे टाइलिंग, इलेक्ट्रिकल काम, पेंटिंग और फर्नीचर घर बनाने के बजट का बड़ा हिस्सा होते हैं, लेकिन आप घर के ढांचे की गुणवत्ता

0: महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। घर के इंटीरियर्स जैसे टाइलिंग, इलेक्ट्रिकल काम, पेंटिंग और फर्नीचर घर बनाने के बजट का बड़ा हिस्सा होते हैं, लेकिन आप घर के ढांचे की गुणवत्ता और मजबूती से कोई समझौता ना करें।
1: बात घर की।
2: बहनों, अंतराल से पहले आप सुन रहे थे प्यार तो होना ही था फिल्म से। कलाकार थे अलका याग्निक और अभिजीत। बहनों, आइए कार्यक्रम बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन रक्षा की जा सकती है, बल्कि रक्तदान को भी इसके स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान, यही है आकाशवाणी दरभंगा फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर होंगे 0627222481। हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय याद रखें, रविवार 14 जून 2026 दिन के 11 बजे। कार्य संबंधी सूचना समाप्त हुई। बहनों, कार्यक्रम में हम आगे और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले आइए सुनते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत। विषय है महिला और योग, वार्ताकार है लालती।
3: नमस्कार बहनों, लालती की ओर से। प्यारी बहनों, आज छोटी मुलाकात के अंतर्गत हम बातें करते हैं महिलाओं के योग की आवश्यकता से संबंधित। श्रोता बहनों, बचपन से लेकर वयस्क होने तक एक महिला का शरीर कई बदलावों से गुजरता है। भावनात्मक और मानसिक स्तर पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों से कई महिला को कई कारणों से कई उतार चढ़ाव और बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ता है। अक्सर इन सब के बीच महिलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वह मासिक धर्म संबंधी समस्याओं, स्त्री रोग संबंधी विकारों, तनाव, शारीरिक दर्द और अन्य समस्याओं से जूझती है। और योग एक ऐसी प्राचीन अभ्यास है जिससे विश्व भर में सभी आयु और लिंग के लोगों को लाभ मिलता रहा है। इसलिए शारीरिक और मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए महिलाओं को योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। श्रोता बहनों, महिलाओं के लिए कुछ विशेष आसनों का अभ्यास मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। योग में समग्र उपचार के गुण होते हैं जो महिलाओं को शक्ति, लचीलापन, संतुलन बढ़ाने और शरीर को सुडौल बनाने, तनाव और चिंता कम करने और अधिक विश्राम प्राप्त करने में मदद करते हैं। श्रोता बहनों, ये आसन महिलाओं को अपार लाभ प्रदान करते हैं। इन आसनों में 8 मुख्य आसन हैं जो महिलाओं के लिए रामबाण के रूप में काम करता है। पहला है विपरीत करनी यानी उल्टा आसन, दूसरा भद्रासन यानी शुभ आसन, तीसरा मत्स्यासन यानी मछली की मुद्रा, चौथा पद्मासन, आप सभी जानती हैं बहनों, पांचवा नटरार्थ आसन यानी घुटने टेककर प्रार्थना करने की मुद्रा, अगला है हस्त पादंगुष्ठासन, अगला है उक्टासन और धनुर्वक्रासन यानी धनुष आसन। तो बहनों, इन आसनों का प्रतिदिन अभ्यास अवश्य करें और स्वस्थ रहें।
4: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
1: बात घर की।
5: नमस्कार, मैं रवि किशन। अरविंद जी ने पूछा है, निर्माण के लिए बजट का अनुमान ये पहले ही लगाना चाहते थे ताकि प्लानिंग के साथ आगे इनके मन को तसल्ली रहे। इंजीनियर बाबू से जवाब सुनते हैं।
0: एक बेहतर कॉन्ट्रैक्टर या राजमिस्त्री का चुनाव, उचित घर बनाने की सामग्री का इंतजाम और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। घर के इंटीरियर्स जैसे टाइलिंग, इलेक्ट्रिकल काम, पेंटिंग और फर्नीचर घर बनाने के बजट का बड़ा हिस्सा होते हैं, लेकिन आप घर के ढांचे की गुणवत्ता और मजबूती से कोई समझौता ना करें।
1: बात घर की।
4: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
1: बात घर की।
5: नमस्कार, मैं रवि किशन। अरविंद जी ने पूछा।

0: अच्छा है। निर्माण के लिए बजट का अनुमान ये पहले ही लगाना चाहते थे ताकि प्लानिंग के साथ आगे इनके मन को तसल्ली रहे।
1: इंजीनियर बाबू से जवाब सुनते हैं।
2: एक बेहतर कॉन्ट्रैक्टर या राजमिस्त्री का चुनाव, उचित घर बनाने की सामग्री का इंतजाम और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। घर के इंटीरियर्स जैसे टाइलिंग, इलेक्ट्रिकल काम, पेंटिंग और फर्नीचर घर बनाने के बजट का बड़ा हिस्सा होते हैं, लेकिन आप घर के ढांचे की गुणवत्ता और मजबूती से कोई समझौता ना करें।
3: बात घर की।
4: बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम नाड़ी संसार में। बहनों, इसी के साथ बढ़ती हूँ अपनी चर्चा की ओर। रक्तदान क्यों है महादान? रक्तदान महादान है जिससे एक अकेले व्यक्ति का खून कई जरूरतमंदों को नया जीवन दे सकता है। यह एक अत्यंत सराहनीय और मानवीय कार्य है। विश्व रक्तदाता दिवस या किसी भी सामान्य दिन पर रक्तदान करना एक बहुत ही सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है। हर किसी व्यक्ति को जो कि सामान्य रूप से स्वस्थ है, उन्हें जरूरतमंदों की सहायता कर रक्तदान अवश्य करना चाहिए। बहनों, रक्तदान करने से शरीर को कोई नुकसान या हानि नहीं होता। जबकि शरीर से पुराने खून निकलते हैं तो शरीर में नई और अधिक कार्यकुशल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो रक्तदान करने से घबराएं नहीं, आपका दिया हुआ रक्त किसी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार बन सकता है। हमारे शरीर का वह हिस्सा जो खून कुछ ही दिनों में वापस बन जाते हैं, वह किसी दूसरों को मौत के मुँह से बाहर निकाल सकता है। इससे बड़ा और नेक काम भला क्या हो सकता है? तो बहनों, आप जरूरतमंदों को जरूर रक्तदान दें। बहनों, जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी की आर्थिक मदद करते हैं तो वह बहुत पुण्य का काम होता है। लेकिन जब हम रक्तदान करते हैं तो हम सीधे तौर पर किसी को जीवन दान दे रहे होते हैं। किसी के परिवार की खुशियां उजड़ने से बचाया जा सकता है। तो इस महादान की मुहिम में जुड़कर हम सबको एक बेहतर और संवेदनशील समाज का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस आने वाला है, यानी कल का दिन। यह समय नेक काम के प्रति खुद को जागरूक होने का भी है और साथ ही दूसरे को भी प्रेरित करने का दिन है। कल के दिन खुद भी आगे आएं और दूसरे को भी इस नेक काम के लिए प्रेरित करें। रक्तदान करने से दूसरे की मदद के साथ आपको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। रक्तदान करने से दिल की सेहत सुधरती है, शरीर में नए ब्लड सेल बनते हैं और आयरन का स्तर भी नियंत्रित रहता है। यह दूसरों की जान बचाने के साथ साथ खुद को स्वस्थ रखने का बेहतरीन तरीका है। तो रक्तदान करने से पहले और बाद में कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें ताकि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहें। सबसे पहले आप अपने चिकित्सक से सलाह लें। सब कुछ समान होने पर ही आप सुरक्षित रूप से रक्तदान दें। रक्तदान से एक दिन पहले और उस दिन पर्याप्त मात्रा में पानी, जूस जरूर पिएं। आयरन से भरपूर खाना खाएं और खाली पेट रक्तदान करने से बचें। रक्तदान देने से 24 घंटे पहले कोई भी नशीले पदार्थ के सेवन न करें और पर्याप्त मात्रा में नींद अवश्य लें। रक्तदान के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट आराम कक्ष में बैठे अगले 24 से 48 घंटे तक खूब पानी पिए। जूस या ORS लें। उस दिन भारी वजन वाले काम, कठिन शारीरिक परिश्रम से बचें। सुई वाली जगह पर लगी पट्टी को कम से कम 4 से 5 घंटे तक न हटाएं। यदि आपका रक्तदान के बाद चक्कर आए या कमजोरी होने लगे तो तुरंत ही लेट जाएं और अपने पैर ऊपर कर ले और चिकित्सक से मिलें। तो रक्तदान की मुहिम में आप जरूर रक्तदान दें। बहनों, कार्यक्रम में हम आगे भी बातें करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं एक और गीत।

बहनों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म आवाज़ दो हमको, ये गीत सुन रहे थे दुश्मन फिल्म से। कलाकार थे उदित नारायण और अलका याग्निक। बहनों, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अभी गर्मी का समय बहुत ज़्यादा चल रहा है और इस समय आप सभी को अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आप खुद का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी रखें और घर के बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर से बाहर जब भी निकले तो छाते का प्रयोग करें और अपने साथ पानी की बोतल अवश्य रखें। समय समय पर पानी पीते रहें, ये गर्मी के बचाव का आसान तरीका है। तो इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम से दीजिए प्रेरणा को अनुमति। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हमारे श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार को, आपकी रेडियो सखी प्रेरणा के साथ। अब हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, बस कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर

पल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी आपको देते हैं, साथ ही साथ साप्ताहिक कार्यक्रम की जानकारी भी आपको देंगे। अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर के 1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रादेशिक समाचार का समय होगा दोपहर के 2:00 जो आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से, और इलाकाई खबरों का वक्त है 2:05 पर हमारे पटना केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। देश दुनिया की खबरें आप सुनेंगे दोपहर समाचार में, हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा दोपहर के 2:15 पर, और एक बार फिर से आप फिल्म संगीत का आनंद लेंगे दोपहर के 2:30 पर। प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम का वक्त है दोपहर के 3:00, आज आप सुनेंगे गुजराती गीत सुरेश रावल की आवाज में। हमारे दूसरे सहभागी कार्यक्रम में शाम 5:00 आप सुनेंगे युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:10 पर हमारे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हमारे ग्रामीण श्रोता भाइयों का कार्यक्रम गांव घर। आज चर्चा का विषय होगा प्रदूषण के कारण और बचाव, और शाम 7:00 हमारे किसान श्रोता भाइयों के कार्यक्रम खेती गृहस्थी का प्रसारण किया जाएगा। चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

हमारा कार्यक्रम हमारा पर्यावरण, निर्माण एवं वाचन प्रस्तुत करता है असद दाऊद। रात्रि के 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम संगीत संस्कृति भारती का प्रसारण आप सुनेंगे, और रात्रि के 10:00 हमारे दिल्ली केंद्र से ही संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारण किया जाएगा।

तो श्रोताओं, ये तो थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब साप्ताहिक कार्यक्रम की जानकारी दे दें। श्रोताओं, रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद लोगों की जीवन की रक्षा की जा सकती है, बल्कि रक्तदाता को भी इसके स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर है 0627222481। हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय याद रखें, रविवार 14 जुलाई 2026 दिन के 11 बजे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आइए अब सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत पर आधारित आपके कार्यक्रम आपकी पसंद का।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज फिर हाजिर हो गई हूँ आपके ढेरों पसंदीदा गीतों के साथ। तो चलिए श्रोताओं, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं इस सुरीले सफ़र का और इस पहले गीत के साथ, जो कि लिया गया है राजू बन गया जेंटलमैन से अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में। और इसे सुनना पसंद कर रहे हैं नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, इशरत अक्रम, रुबीना परवीन, अरहान बाबू, हमजा बाबू, तैमूर बाबू, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अहिबा नाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, नवाज साहब, मुजबिल बाबू, कोकिलवाड़ा जिला औराई मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख, नुजरत जहां नाज, कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं इनामत टोला भगवतीपुर बिहार से नूतन सहनी, रासो देवी, कंचन सहनी, रिंकू देवी, बबीता सहनी, रुचि कुमारी, कोमल, निशु कुमारी, नव्या और एस के सहनी, सुधा, विभा, ज्योति, पार्वती, त्रिपुरारी सहनी, एस के सहनी और संतोष सहनी। इसी गीत को सुनना पसंद किया है दरभंगा बिहार टावर चौक आशापुर से प्यारे लाल मनोहर, अमर लाल मनोहर, दुलाले लाल मनोहर, सुंदर लाल मनोहर और प्रेम लाल मनोहर। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ से ताजपुर मोरबा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीराकारी, पुंज राजार्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। और इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्कीवाली, फलना झा। साथ ही साथ नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से।

आइए श्रोताओं, अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लाल दुपट्टा मलमलका से। इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खांडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। इसी गीत को सुनना पसंद किया है एकता रेडियो श्रोता संघ बड़ी खंजरपुर से, भागलपुर बिहार से भाई खुल फराज आलम, बेगम समा आरा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली, फैजा, फातमा, यूसुफ और हाजमा, हमजा। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंगवाकर राही, श्रीमती सरिता गंगवाकर, सिद्धांत गंगवाकर, प्रिंस एकांश गंगवाकर, आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से शैलेश, श्रीमती वैशाली, श्वेता सुमित गनवाकर, कुमारी ध्वनि उर्फ परी, वार्ड नंबर 5 भगवतीपुर बाजार से विनोशा अकेला, प्रिंस कुमार, मीना शाह, आदित्य कुमार, संतोष शाह, ज्योति देवी, बेबी देवी, लक्ष्मी कुमारी, मुस्कान कुमारी, ज्योति कुमारी, राहुल कुमार, साक्षी कुमारी, रेणू देवी, रोशन शाह, अरुण प्रसाद गुप्ता, कन्हैया जी, लाल शाह दीवाना, राजनगर बाजार से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रेणु मिश्रा उर्फ गोल्डी, मास्टर रुद्र गुप्ता, राजनगर गांधी चौक से रानी गुप्ता, सोनाली गुप्ता, संगीता गुप्ता, मेनका गुप्ता, पलक पंखुरी, माधवी साध्वी, हैप्पी, रिद्धि गुनगुन, चुलबुल, रेणु, ज्योति जी, शालू, दीपशिखा और अर्चना, कालका हरियाणा से शुभ चंद्र बजाज। इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं क्रांति गुप्ता, भुलैया देवी, प्रेम पासवान। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म लाल दुपट्टा मलमलका से, आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की।

इस खूबसूरत से गीत के बाद आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और फिर से हाजिर होते हैं ढेरों पसंदीदा गीतों के साथ।

0: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
1: बात घर की।
2: नमस्कार, मैं रवि किशन। अरविंद जी ने पूछा है, निर्माण के लिए बजट का अनुमान ये पहले ही लगाना चाहते थे ताकि प्लानिंग के साथ आगे इनके मन को तसल्ली रहे। इंजीनियर बाबू से जवाब सुनते हैं।
3: एक बेहतर कॉन्ट्रैक्टर या राजमिस्त्री का चुनाव, उचित घर बनाने की सामग्री का इंतजाम और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। घर के इंटीरियर्स जैसे टाइलिंग, इलेक्ट्रिकल काम, पेंटिंग और फर्नीचर घर बनाने के बजट का बड़ा हिस्सा होते हैं, लेकिन आप घर के ढांचे की गुणवत्ता और मजबूती से कोई समझौता ना करें।
1: बात घर की।
4: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
5: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
6: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
7: अंतराल के बाद आइए फिर से सुनते हैं आपके पसंदीदा गीत। मैं आपकी रेडियो दोस्त चंदना आपको सुनवा रही हूँ आपके पसंदीदा गीतों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत, जो कि है फिल्म आखिरी रास्ता से मोहम्मद अजीज और एस जानकी की खूबसूरत आवाज़ में। और इस गीत को सुनना चाह रहे हैं शेरखेड़ा प्रत्राभल जिला उज्जैन से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुनत, चेतन नहट्टा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कोश मुनत, साथ ही साथ पुणे से पंकज बोर्डे, आर्या, प्रियंका, बीटी बोर्डे, साथ ही साथ झंझारपुर लगड़ा चौक से हरिराम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी। और इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं केटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी गीत को सुनना पसंद किया है कुशेश्वर स्थान सलमगढ़ से मोहम्मद ईशा, सवीना नाज, इरफान आज़ाद, मुस्तफ़ा आफ्ताब, सनाफरीन, सादिया नूर, आरिश बाबू, समा परवीन, साहिन परवीन, नेमत, रौनक परवीन, सुमैया फातिमा तथा खुशी। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म आखिरी रास्ता से।
8: One, two.

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

बेबी आरजू जाजुरिया, रामनगर रोड, शांति नगर, इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता, संजय, वाणी, मनीष, ब्रोनो, ब्रोनो, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, ललित नारायण खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। इसी गीत को सुनना पसंद किया था नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहनी, पिंकी सहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, अनमोल मानकर। रामनगर भारत खंड से निधि सहनी, सुनीता सहनी और सुदीप मुडक। साथ ही साथ यही गीत सुनना पसंद कर रहे थे जतुका कृष्णपुर से आलम दिलकर, शवाना राज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, सवानान आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर, गणेशपुर से वकील राही, फिरोज आलम, नाज परवीन और अर्श बाबू। आइए अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से बब्बे लहरी और आशा भोसले की आवाज में। इस प्यारे से गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं लाल पोखर नाका नंबर 5 दरभंगा से मोहम्मद कलीम दीवाना, दानिश बाबू, अमन बाबू, सरफराज बाबू, सिराज बाबू, सोनी बेगम, खुशी परवीन, डॉली परवीन, शास्ता परवीन और मेहरा परवीन। बेडी से राज सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गणवेनकर और धीरज सवरसरे। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: फिल्म आज़ाद देश के गुलाम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे नाडा पोडवाल और मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ में। और इस गीत को सुनना पसंद किया था नाहरमान टोला से भाई कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान और सलमान। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे थे पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजुरिया, गीता रानी जाजुरिया, गगनदीप जाजुरिया और

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ दीजिए हमें इजाज़त। हमारा पता है प्रोग्राम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। अगले हफ्ते शनिवार के दिन इसी जगह इसी रेडियो सेट पर आपसे फिर से मुलाकात होगी आपकी ढेरों पसंदीदा गीतों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपने इस रेडियो दोस्त को दीजिए इजाज़त।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: तो श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हमारे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। हमारा अगला कार्यक्रम सुनने से पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन की रक्षा की जा सकती है, बल्कि रक्तदाता को भी उसके स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय।

विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक डीएमसीएच दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर है 0627222481, मोबाइल नंबर है 9430029353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय याद रखें, रविवार 14 जून 2026 दिन के 11 बजे। श्रोताओं, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारे पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही देर में, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के आसपास हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। श्री कुशवाहा का इस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन तय है, क्योंकि केवल उन्होंने ही नामांकन पत्र भरा है। उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा अब से कुछ देर बाद की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पटना स्थित स्मृति संग्रहालय में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने ब्रज बिहारी प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के 19 जिलों तक मॉनसून पहुंच चुका है। मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा, रोहतास, अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना और शेखपुरा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी आशंका है। पटना के विश्वकुमार भवन की 13वीं मंजिल पर आज तड़के आग लग गई। अग्निशमन दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि प्राथमिक

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। लीजिए अब सुनते हैं रोजगार सूचना। एसएससी सीजीसी ऑनलाइन फॉर्म 2026, पोस्ट 12,256, आयु 18 से 32 साल। एसएससी के अपने नियम अनुसार सीजीसी पदों के लिए आयु, शैक्षणिक योग्यता, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन शुल्क CGN.10BC/EWS ₹100, फीमेल एवं पीएच के उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून 2026। आवेदन की वेबसाइट है ssc.gov.in। BSNL जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर जियो ऑनलाइन फॉर्म 2026 के लिए पद हैं 100, आयु की सीमा है 20 से 30 साल। BSNL के अपने नियम अनुसार जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पदों के लिए आयु की छूट प्रदान करेगी। शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक, आईटी और इंस्ट्रूमेंटेशन के केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से इंजीनियर की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। वैकल्पिक लैब से इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी डिग्री द्वारा वाले उम्मीदवारों की पात्रता होगी। आवेदन शुल्क हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹2,000 और एससी एसटी और महिलाओं के लिए ₹1,000। अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026। आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर बीएसएनएल रजिस्ट्रेशन .ibtxaminatioN.com पर। श्रोताओं, भारतीय नौसेना भर्ती 2026, कुल पद हैं 60। आवेदन शुरू होने की अंतिम तिथि

शुरू होने की तिथि है 29 मई 2026 तक 26 से और आवेदन की अंतिम तिथि है 18 जून 2026 तक। इच्छुक अभ्यर्थी इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स की उम्र होनी चाहिए 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 तक के बीच में। SSC CGL संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2026, कुल पद हैं 12,256। आवेदन शुरू होने की तिथि है 21 मई 2026 और आवेदन की अंतिम तिथि है 22 जून 2026 तक। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम उम्र 32 वर्ष। इच्छुक अभ्यर्थी SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओं, असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा श्रोताओं, आइए हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार सुनते हैं।

0: सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत

0: अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना।

0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की

0: संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए श्रोताओं, आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

साधना सरगम और कुमार शानू की आवाज़ में फिल्म आतिश का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म सलामी से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। फिल्म में आप सुन रहे थे आतिश सलामी, जीना मरना तेरे संग और लव फिल्म से लिए गए गीतों को। आवाजें थी कुमार शानू, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, विपिन सचदेव, एस पी बाला सुब्रमण्यम और के एस चित्रा। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 331.5 मीटर पर। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं प्रादेशिक संगीत का हमारा कार्यक्रम। गुजराती गीत सुनते हैं सुरेश रावल के सुर में।

0: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
1: बात घर की।
2: आज का दूसरा सवाल पूछा है इरफान मलिक जी ने, मुंबई में बारिश के कारण इनके घर में दीमक की समस्या काफी रहती है, गांव में घर बनाते वक्त ये समस्या ना हो इसके लिए उपचार जानना चाहते हैं। चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं।
3: जिन इलाकों में दीमक की दिक्कत आती है वहाँ निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किसी एक्सपर्ट के द्वारा करवा लें। इस ट्रीटमेंट के दौरान आपके घर की नींव से लेकर हर एक प्लिंथ और फ्लोरिंग तक केमिकल की परत लगाई जाती है ताकि दीमक से आपके घर को बेहतरीन सुरक्षा मिले।
1: बात घर की।

0: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
1: बात घर की।
2: मोहम्मद शमी जी अब शीघ्र ही गांव में अपना घर बनवाने जा रहे हैं और उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का विचार रखते हैं और इसका सही तरीका आपसे जानना चाहते हैं इंजीनियर बाबू।
3: शमी जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आप रिचार्ज पिट बनवा सकते हैं। सबसे पहले रिचार्ज पिट के लिए निचली जगह पर एक गड्ढा खुदवाइए। गड्ढा लगभग 1 से 2 मीटर चौड़ा हो और 2 से 3 मीटर गहरा। फिर इस गड्ढे को पत्थर, बजरी और मोटी रेती से परत दर परत भरवाएं।
1: बात

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत का हमारा कार्यक्रम, सुरेश रावल के आवाज़ में गुजराती गीत। प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। यही समाप्त होती है आज की हमारी पहली सभा। हम अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।

मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की आप सभी की फरमाइश पर ये गाना फिल्म का नाम है भाभी। राजेंद्र कृष्ण की बोल चित्रगुप्त की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील

मोहम्मद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूंडनून और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया। अब सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
1: मनचाही गीत
2: मनचाही गीत
1: मनचाही गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी।
1: इसके बाद भी क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छूट जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी।
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी, एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जूते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं कहीं ये यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा न।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र सपनी की आज्ञा का

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचते हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म भीष्म भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।

0: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
1: राजकुमारी,
0: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है,
1: फिर वही
0: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
1: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
0: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: राजकुमारी, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। वो देखिए आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है।
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है। राजकुमारी,
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र
0: वो अभी कैसे आएंगे? उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
1: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
2: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही? कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
1: कुलदेवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
2: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
1: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
2: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है। चलकर विश्राम करो।
1: जो आज्ञा।

0: तो कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है, तो बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यहीं रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तो चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: अब मुझसे ना पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी ना बटोर सकें।

0: क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: प्रवंचना हुई है राजकुमारी, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतन अंधकारमय पथ की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा ऐंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप चुगुप समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराष्ट्र धृतराष्ट्र ज्योतिहीन है, जन्मान सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं, वो दृष्टिहीन है, दृष्टिहीन।

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा?
0: गांधारी।
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्योंकि आपने केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग हैं। हट, छोड़ दो।
1: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती, किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
0: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
1: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
0: उस घटना का स्मरण दिलाओ पुत्री।
1: क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
0: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
1: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती।

0: मेरी आंखों पर बंधी ये पट्टी राजनीति शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
1: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया, फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
0: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा

करने वाली कौन होती हूँ और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रभंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: कौन?
1: मैं
0: धृतराष्ट्र। ओह, आप विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है। आइए आइए ना।
1: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
0: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
1: क्या?
0: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ।
1: क्या हुआ, गिर पड़ी?
0: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
1: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
0: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
1: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताकृत भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर, न जाने किस किस से दी थी।
0: महाराज,
1: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूँ लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी?
0: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
1: क्या?
0: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
1: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
0: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज। मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
1: क्या?
0: मेरा पातिव्रत यही मांग करता है। यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है। मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
1: और तुम इसे पातिव्रत कहती हो? ये तुमने क्या किया गांधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
0: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हैं?
1: मैं अंधत्व का दुख जानता हूँ गांधारी। मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से इस संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया। यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
0: महाराज, मैं सोचती थी कि
1: अब भी समय है गांधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
0: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
1: हूं। गांधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनी है, असहनी है ये सच, असहनी है ये सच।

0: आश्चर्य की क्या बात, क्या ये स्वाभाविक नहीं?
1: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
0: क्या
1: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का?
0: ओह पगली कहेगी, क्या तू तो जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है, वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
2: कांधारी
0: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
1: जो आज्ञा महारानी।
2: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
0: हाँ महाराज सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
2: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा, क्यों उचित है ना?
0: सर्वथा उचित है महाराज, वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
2: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
0: महाराज ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
2: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है, क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
0: महाराज कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
2: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी, यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
0: अर्थात हस्तिनापुर का भावी शासन?
2: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
0: किंतु महाराज ये तो अनर्थ होगा।
2: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था, नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
0: महाराज,
3: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
2: कहो सूत।
3: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
0: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं, क्यों नहीं हुआ? प्रबल ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती थी? इतना अपमान, इतना है।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
1: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
1: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
1: क्यों?

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश।
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक।
1: काश मैं देख सकती। किस पर किया है?
0: किस पर? दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है।

0: पारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। मां देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, न जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज, द्रौपदी के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ है, उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है, कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुनि की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधा?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही न रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज,
0: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा,
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं, अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन ने?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
0: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदल कर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
0: विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
1: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन।

कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी, और आपको याद दिला दें कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: Silence. Lights. Sound. Camera. Action.
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं,
1: वो पढ़े लिखे भी नहीं।
0: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?
3: मैं

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: एब्सोल्युटली,
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो

0: फोटोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और
0: बड़े
1: इतनी बड़ी कला बड़ी फिल्म थी
0: हाँ
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नजर में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया, लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट थी, वो भी फिट हो गई।
1: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था,
0: करेक्ट,
1: आरडी बर्मन साहब का। और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
0: करेक्ट,
1: वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे,
0: करेक्ट,
1: तो उन गानों पर उस संगीत पर कुछ उसमें कुछ नयापन लाना और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, सो तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए, तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
1: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ आपने।
0: तो डांस में इट वाज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वाज मोर अबाउट, इट वाज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है, फिल्म में भी वो लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी, एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है, और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी, तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था। आई डिडंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल एज अ कोरियोग्राफर। समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे देखने में, फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी मुझको चुनो ना चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील, फील का गाना था।

एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंधरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे रामगोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीजें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे, बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ यू नो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और रामगोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाच आपे, कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हट

हटके है, जो हटके सोचता है, तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरमाली जी, और वो हर एक चीज समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ, तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया, और वही चीज़ वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग, तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया, और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 films, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ, यू नो, एक अलग एक पहचान मुझे इस फिल्म

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो हाँ। गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही।
0: किस तरह के? क्या क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं,
1: हाँ।
0: अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे, लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे।

0: जो मतलब देसी फिल्मों से थे, कुछ गाने बहुत ही दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले। और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था,
1: अच्छा,
0: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहां पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने, या मासूम के गाने, या ऐसे फिल्मों के जहां पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही सोचकर, या साहिर लुधियान के गाने सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
1: चित्रलेखा फिल्म,
0: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि मटीरियलिज्म इज राइट, ओके, और इज इट कि सब कुछ त्याग देना भोग में है या त्यागने में, तो क्या है? सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था मेरे माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे।

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, तो एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी नहीं,
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं,
1: नहीं
0: किया। बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं इसको।
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर आपने

0: ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है. तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ. पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था. फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में. बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा. इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए. वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस. क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो नो जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आप को ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है. लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक यू नो एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो. और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक. और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट. मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है. अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े. अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए. अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार यू नो थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस. जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ. ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं. और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन. ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट. और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो, कई बार अंदर से आ जाता है और 1 सेकंड में वो सही आ जाता है. कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको यू नो फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
1: छानना पड़ता है
0: वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर. तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में ज्यादा ना हो ना कम हो. इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है.

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो आप जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले, क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन होती है।
1: आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है क्योंकि कहानियां के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
1: बाहों में चले।

0: एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं, गाने में बीट्स होती हैं, ओके, एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए, क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करें, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा, हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, आप कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो आते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे झक झक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर यहां झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो यू नो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्ट कट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं है उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है, ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है।

0: तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं, और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है, या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है, और वो चेहरे पे दिखने लगता है। तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए, ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी।
0: हाँ।
1: ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया।
0: हाँ।
1: तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हो या सिंगिंग शोज हो।
0: हाँ।
1: गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं।
0: करेक्ट। बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है।
1: हाँ।
0: जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
1: कौन सा?
0: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वाला गाना
1: अजनबी।
0: हाँ, अजनबी वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं, लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है?
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज की एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जो आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़
1: पा। सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, and that's the one thing that I really admire about them.

0: Yusuf, Ritik, Shahid, all very good. Very good dancers. Ranveer also is very good dancer. And they also work hard. So it's nice to see the young dancers. It's just that 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है।
1: सही कह रहे हैं।
0: हाँ, दूसरे एक जमाना हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी। शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर, लेकिन उनकी फिल्मों में, पाकिजा में, उनको नाचना है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी ये सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में युवा श्रोताओं के लिए सुनिए हमारे ये कार्यक्रम तरुण कुसुम।

तरुण कुसुम, इस कार्यक्रम के आज के इस अंक को सुनने वाले आप सभी युवा श्रोताओं को आपके इस रेडियो हमसफर संजीव कुमार सुधाकर का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं युवा दोस्तों? बिल्कुल अच्छे होंगे। आज इस कार्यक्रम में अब से लेकर शाम 5:40 तक हम हैं आपके साथ। ढेर सारी बातचीत होंगे, हर दिन की तरह आपको सुनवाएंगे माटी की सौंधी खुशबू लिए प्यारे प्यारे लोकगीत। तो आइए ना, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आप तक पहुंचाते हैं ये प्यारा सा देवी गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। युवा श्रोताओं के लिए आप सुन रहे हैं हमारे ये कार्यक्रम तरुण कुसुम। श्रोताओं, आप जानते हैं कि हर दिन की तरह इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी बातें भी आपके साथ करते हैं जो बातें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। आज श्रोताओं, चर्चा का विषय है वित्तीय समावेशन से। जी हाँ, वित्तीय समावेशन यानी जनधन से जन कल्याण तक। जनधन से जन कल्याण तक, जी हाँ, ये यात्रा भारत में वित्तीय समावेशन का एक ऐसा ऐतिहासिक सफर है जिसने आम इंसान के जीवन में उसके आर्थिक दृष्टिकोण को बदला है। इस महाअभियान के कई विशेषताएं, जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही हमें बचत करने की शिक्षा दी जाती है। हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, हमारी जो माँ होती हैं, वो हमें कहती हैं कि बेटा, अगर आपको कुछ पॉकेट मनी मिला है तो उसे बचाना भी सीखो। बचत करने की जो आदत होती है ना युवा दोस्तों, ये भविष्य में हमारे लिए बड़े सहायक होते हैं। अब होता क्या है ना कि अचानक 100 रुपये अगर हमें मिल जाए तो जी तो चाहता है कि भाई 100 रुपये का इसी वक्त हम विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद, जो ऐसी सामग्रियां जो जी को लल जाते हैं, मन को लल जाते हैं, वो सारी चीजों को खरीद कर खा पी कर खत्म कर दिया जाए। लेकिन वहीं अगर विवेकपूर्ण तरीके से उस 100 रुपये का उपयोग हम करें, 50 रुपये खर्च करें, अगर 50 रुपये हम बचा लें, तो उस वक्त जिस वक्त हमें पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और हमारे हाथ खाली होते हैं, उस वक्त यही बचत किया हुआ हमारा पैसा हमारी ज़िंदगी में कई तरह के जो परेशानियाँ होती हैं ना, उन्हें दूर कर देते हैं। हमारी जो ही आमदनी हो, कम या ज़्यादा, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हम बचत करने की आदत अपना कर रखते हैं कि नहीं, है ना दोस्तों। बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और प्यारे से गीत आप तक पहुंचाते हैं। माटी की सौंधी खुशबू लिए ये प्यारे प्यारे लोकगीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। युवा श्रोताओं के लिए आप सुन रहे हैं हमारे ये कार्यक्रम तरुण कुसुम। युवा दोस्तों, आज आपके साथ जो चर्चा का विषय है वो है वित्तीय समावेशन, जनधन से जन कल्याण तक। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक तौर पर मजबूत होना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कई बार इसका जो सामंजस्य है वो हम सही तरीके से नहीं कर पाते। इसको किस तरीके से हमें व्यवस्थित ढंग से अपने जीवन में उपयोग करना है, कहाँ बचत करना है, कहाँ जरूरी खर्चे करना है, इन सब चीजों को जानना भी, सीखना भी जिंदगी में सफल होने के लिए जरूरी है। दोस्तों, सरकार भी अब इस ओर विशेष जोर दे रही है। लोग अपने

आर्थिक स्थिति को बेहतर करें। इस ओर सरकार भी कई प्रकार की योजनाएं देश में चला रही है। अब आप देखेंगे कि जनधन खाता, ये बैंक में आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था है जहां आप जीरो बैलेंस पर भी अपने खातों को खोल सकते हैं, जहां आप जो भी बचत करते हैं अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन्हें वहां संभाल कर रख सकते हैं। लगभग 58 करोड़ लोगों ने अपना जनधन खाता विभिन्न बैंकों में खुलवा लिया है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारा खाता खुल जाता है ना, तो फिर हमें अंदर से एक प्रेरणा भी आती है कि हम बेहतर तरीके से बचत करें। और ये जो बचत करने की आदतें हैं, ये ज़िंदगी में ज़रूरी होती है, ये आप भी महसूस करते हैं। कई बार अगर अचानक से ढेर सारा पैसा हमारे पास चला है, तो वो पैसा अचानक चला आया, फिर मन में कई तरह की बातें आने लगी, उस पैसे को संभाल कर अगर हम ना रखें तो वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वहीं अगर उन पैसों को हम अपने खाते में संभाल कर रखें, घर में परिवार में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए उनका उपयोग करें, तो ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर चलता रहता है, है ना दोस्तों। और इस कार्यक्रम में सब बेहतर चलता रहे, इसके लिए हम आप तक पहुंचाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत, माटी की सौंधी खुशबू लिए।

आकाशवाणी दरभंगा से युवा श्रोताओं के लिए आप सुन रहे हैं हमारे ये कार्यक्रम तरुण कुसुम। श्रोताओं, जनधन खाते जिंदगी में बचत को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए बड़े ही जरूरी होते हैं। आप देखें ना, डाकघरों में भी आपको इन खाताओं की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जहाँ जीरो बैलेंस पर यानी शून्य बचत पर भी आप अपने खातों को चालू रख सकते हैं। और तो और, ऐसे खाते जो होते हैं ना, जनधन और जो सरकार के यहाँ डाकघर आदि में जो आप खुलवाते हैं जीरो बैलेंस वाले, उसमें आपको जो सरकार के द्वारा विभिन्न लाभप्रद योजनाएं जो आती हैं ना, उनका लाभ भी आप तक सीधे आपके खातों में पहुँचेगा। तो ऐसे खाते आपको बिचौलियों से भी बचाते हैं। कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको बचत खातों को खुलवाने के नाम पर हो सकता है आपको परेशानी में डाल दे, तो ऐसे लोगों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो ज़रूर कोशिश कीजिए युवा दोस्तों कि अगर आपके घर में भी वैसे बुजुर्ग या माँ बहनें जिन्होंने अब तक ऐसे खाते नहीं खुलवाए हैं, जल्द से जल्द उनका वो खाता आप खुलवाएं और आप भी अपने लिए खाते खुलवाएं। जो भी हो, जो ही पैसे हो, 2 रुपये ही हो सही, 2-2 रुपये करके अगर हम बचाते हैं ना, तो वो 2-2 रुपये भी हमारे लिए एक दिन बड़ी राशि बन जाती है। छात्र जीवन में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में हमारे आपके हाथ में भी कुछ पैसे होते हैं तो हम अपने घर के लोगों को भी सहयोग कर देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होता है वो परिवार और ज़िंदगी को खुशहाल बनाते हैं। तो हमेशा कोशिश करना है कि ज़िंदगी में बचत की आदत बनाए। ऐसा नहीं कि अगर आज किसी ने 500 रुपये दे दिए तो 500 रुपये आज ही ख़त्म कर ले। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए भी पैसे बचा कर रखें। और समय हमारे पास, चूँकि इस कार्यक्रम में तरुण कुसुम के इस अंक में आप जानते हैं कि शाम 5:40 तक का ही समय शेष रह गया है, तो 5-6 मिनट 4 मिनट और बचे हैं। आइए नए का और प्यारा सा लोकगीत आपको सुनवाते हैं।

युवा दोस्तों, घड़ी की सुई अब और ज़्यादा देर हमें आपके साथ इस कार्यक्रम में बने रहने की इजाज़त नहीं दे रही। आज जिन कलाकारों के गाए लोकगीत हमने आपको सुनवाए, वे कलाकार थे काशीनाथ झा, किरण, दिवाकर सिंह, अरविंद कुमार झा, सूर्यनारायण पौद्दार और मीरा मिश्र। इस गीत के साथ ही अब तरुण कुसुम इस कार्यक्रम के आज के इस अंक से दीजिए अपने इस रेडियो हम सफर संजीव कुमार सुधाकर को विदा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं के लिए हमारा कार्यक्रम तरुण कुसुम। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। शाम के 5:40 हुए हैं। समय हो चला है चंद गीत और गजलों का।

0: करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं चंद गजलें। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन एक साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे थे चंद गजलें। आज कलाकार थे हरिहरन, अलका याग्निक, अमृत पडवाल और साथी। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, शाम के 6 होने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।

0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में एक विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।

न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप के माध्यम से आप हमें अपने स्मार्टफोन पर भी सुन पा रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। श्रोताओं, जानकारी प्राप्त कीजिए। आज हमारी सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। आज की हमारी सभा में आपसे थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:10 पर आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम विद्यापति गीत। मैथिली संवाद का समय होगा शाम 6:25 और शाम 6:30 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम गाम घर। ग्रामीण श्रोता गाम घर कार्यक्रम में आज सुनेंगे चर्चा प्रदूषण

के कारण और निदान। शाम 7 बजे समय होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती गृहस्थी का। शाम 7:30 पर श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। जिले की हलचल का समय होगा शाम 7:47। कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत के हमारे कार्यक्रम में शाम 7:52 पर। रात 8 बजे आज आप सुनेंगे एक प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात 8:15 ये समय होगा कार्यक्रम हमारा पर्यावरण का। रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या न्यूज एट 9। रात 9 बजे आप सुनेंगे और रात 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू खबरें, इन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इन्हें भी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज हमारी सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। और अब कार्यक्रम संबंधी एक और सूचना। श्रोताओं रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन रक्षा की जा सकती है बल्कि रक्तदाता को भी इससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान? जी हाँ, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फॉन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान विषय से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारा मोबाइल नंबर होगा 9430029353 और हमारा बेस फोन नंबर होगा 0627222481। हेलो जिंदगी, कृपया हमारे इस कार्यक्रम का प्रसारण समय याद रखें कल ही यानी रविवार 14 जून 2026 दिन में 11 बजे। कार्यक्रम संबंधी ये सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय शाम के 6:10 हुए हैं। समय हो चला है महाकवि की रचनाओं का। सुनिए विद्यापति गीत।

महाकवि की ये रचनाएं आप सुन रहे हैं विद्यापति के। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा।

महाकवि की ये रचनाएं आप सुन रहे थे विद्यापति के। आज गीतों के कलाकार थे गौतम मिश्र, काशीनाथ झा किरण और साथी। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन एक साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप के माध्यम से हम आपके स्मार्टफोन पर भी उपलब्ध हैं। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी दरभंगा एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद, संवादक संग हम छी कामिनी ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे भारतक युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर आ ड्रोन एहन क्षेत्र सभ मे उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कऽ रहल छथि। सोशल मीडिया पोस्ट मे ओ कहलनि जे भारत आई विश्वक प्रमुख स्टार्टअप केन्द्र सभ मे सम्मिलित अछि आ एकर सफलता मे छोट शहर आ गामक युवा लोकनिक महत्वपूर्ण भूमिका अछि। प्रधानमंत्री खेलकूद मे युवा लोकनिक उत्कृष्ट प्रदर्शनक सराहना करैत कहलनि जे भारतीय खिलाड़ी लोकनि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सभ मे देशक मान बढ़ौलनि अछि। ओ कहलनि जे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया आ अटल इनोवेशन मिशन जकां पहल सँ नवाचार आ उद्यमिता के बढ़ावा भेटल अछि। श्री मोदी कहलनि जे पछिला 12 वर्ष सँ एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वला विकास के प्रोत्साहित कऽ रहल अछि, जाहि मे देशक युवा लोकनिक आत्मविश्वास बढ़ल अछि आ ओ अपन सपना के पूरा कऽ रहल छथि। केन्द्र सरकारक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देशभरि मे बालिका लोकनिक सशक्तिकरणक एक पैघ अभियान बनि गेल अछि। महिला आ बाल विकास मंत्रालयक अनुसार पछिला 10 वर्ष मे जन्मक समय लिंगानुपात 9 से 18 बढ़िकऽ 9 से 29 भऽ गेल अछि। ओतहि माध्यमिक स्तर पर छात्रा लोकनिक नामांकन सेहो लगभग 75% सँ बढ़िकऽ 80% के बराबर भऽ गेल अछि। मंत्रालय कहलक अछि जे ई योजना बालिका लोकनिक शिक्षा, सुरक्षा आ सशक्तिकरण के बढ़ेबा मे

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभाहित रहल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उद्योग, निवेश, रोजगार आ आधारभूत संरचनाक विस्तार के सरकारक सर्वोच्च प्राथमिकता जनौलनि अछि। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री चौधरी कहलनि जे राज्य में निवेश के बढ़ावा देबाक लेल उद्योग सभ के 30 दिनक भीतर सभ आवश्यक स्वीकृति उपलब्ध करा देल जायत। ओ जनौलनि जे बिहार में 12 नव टाउनशिप विकसित कयल जा रहल अछि, जाहि मे पैघ स्तर पर निवेश प्रस्तावित अछि। मुख्यमंत्री कहलनि जे बिजली, सड़क आ आन बुनियादी सुविधा सभक विस्तार सँ औद्योगिक विकास के गति भेट रहल अछि। ओ कानून व्यवस्था के विकासक महत्वपूर्ण शर्त जनबैत कहलनि जे अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री उद्योगपति, चार्टर अकाउंटेंट्स आ कंपनी सचिव सभ सँ बिहारक आर्थिक विकास मे सक्रिय भागीदारी के अपील कयलनि। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदक लेल उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित भेला अछि। नव दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में श्री कुशवाहा के निर्वाचनक घोषणा कयल गेल। राष्ट्रीय अध्यक्ष पदक लेल केओ आन गोटे अपन नामांकन दाखिल नहि कयने छलाह। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 15 जून सँ अभियान बसेरा के दोसर चरणक शुरुआत करत। 21 जून धरि चलय वला एहि अभियानक उद्देश्य भूमिहीन परिवार सभ धरि बसोबासक भूमि के अधिकार पहुँचायब आ भूमिहीन परिवार सभ के बंदोबस्ती प्रमाण पत्र निर्गत करब अछि। कटिहार जिलाक कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जुराव गंजक लग NH31 पर एक बस के अनियंत्रित भऽ कऽ उनटि गेला सँ 25 यात्री घायल भऽ गेला, जाहि मे 15 गोटे के स्थिति गंभीर जनाओल गेल अछि। गंभीर रूप सँ घायल लोकनि के प्राथमिक उपचारक बाद नीक सँ नीक इलाजक लेल GNCH पूर्णिया रेफर कऽ देल गेल अछि। प्रदेशक 19 जिला धरि मॉनसून पहुँच चुकल अछि। मौसम विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार आइ प्रदेशक बेसीतर भाग मे वर्षा हेबाक संभावना अछि। एहि दरमियान आइ कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद आ लगपासक जिला सभ मे मूसलाधार वर्षा भेल अछि। एहि दरमियान पटना, औरंगाबाद, रोहतास, बेगूसराय, नालंदा आ शेखपुरा सहित 14 जिला सभ मे भारी वर्षा हेबाक चेतावनी जारी कयल गेल अछि। एहि दरमियान तेज हवा के संग ठनका खसबाक सेहो आशंका अछि। आर्थिक अपराध इकाई के टीम कुख्यात अपराधी संतोष यादवक पटना आ नालंदा स्थित 25 ठिकाना सभ पर एक संग छापामारी कयलक अछि। प्राप्त जनतबक अनुसार अवैध संपत्ति आ आमदनी के स्रोत सभक जनतब प्राप्त करबाक लेल ई कार्रवाई कयल गेल। पश्चिम चंपारण जिलाक योगापट्टी प्रखंड निवासी सारांश कुमार गुजरातक अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के रिदमिक पेयर योगासन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतलनि अछि। बेतिया पहुँचला पर सारांश कुमार के बैंड बाजा के संग भव्य स्वागत कयल गेल। मधुबनी जिलाक बासोपट्टी थाना क्षेत्रक कौवाहा सँ पुलिस 4 से 19 किलो गांजा के संग 4 तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार जनौलनि जे गांजा के तस्करी में डायल 112 के चालकक संलिप्तता पाओल गेल, जिनका तत्काल प्रभाव सँ निलंबित कऽ देल गेल अछि। धान किनबा में अनियमितता करबाक आरोप में बांका जिलाक चुटिया बेलारी पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद शाहबाज के निलंबित कऽ देल गेल अछि। निलंबित पैक्स अध्यक्ष पर 50 लाख टाका मूल्यक धान के हेराफेरी करबाक आरोप अछि। समस्तीपुर जिलाक बढ़ौना पंचायतक चतरा गामक करंट लागि गेला सँ माँ बेटा के मृत्यु भऽ गेलनि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा कार्यक्रम गांव घर।

0: कार्यक्रम गाम घरक अंतर्गत झरोखा सुनिहार सब श्रोता लोकन के मिहिर कुमार झा के नमस्कार अभिनंदन संगे नमस्कार गोपी भाई।
1: नमस्कार मिहिर भाई, संगे संग गाम घरक श्रोता लोकन के सेहो नमस्कार। मिहिर भाई, देखै छी अपने सब की जतेक जनसंख्या बढ़ल जा रहल है ओतबे प्रदूषण पसरल जा रहल है। प्रकृति के एतेक बेसिक अहाँ के दोहन भ रहल है कि चारू दिस अहाँ के प्रदूषण पसरि रहल अछि। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण।

0: माने प्रदूषणे के स्थिति में हम सब रही रहल छी आ तरह तरह के रोग व्याधि के शिकार भ रहल छी आ पर्यावरण प्रदूषण के जे मुख्य कारण अछि ओ अछि अनियंत्रित औद्योगिकरण जे अपना सब पढ़े छी टिकाऊ विकास तो टिकाऊ विकास नहीं भ रहल अछि तात्कालिक विकास भ रहल अछि भविष्य के पीढ़ी के जे छथि हुनकर भविष्य के हम सब ध्यान में नहीं रख रहल छी आ सिर्फ अपना तात्कालिक लाभ लेल क रहल छी अ कारण प्रदूषण जे या ओ विकट रूप में पसर रहल
1: है। ठीक है कहलिए गोपी भाई ई जे पर्यावरण के चक्र जे असंतुलित भ रहल अछि ओहि के चलते असमय वर्षा ते अत्यधिक तीक्ष्ण सूर्य के ई सब किरण जे अपना सब देख रहल छिए जे भोरे 7 बजे भोर होय छै कि सूर्य के किरण लगे छै 11 बजे बाजि रहल छै
0: ओकरा की कहबे अपने सब डकहा रोद जे कहै छै हां एकदम समझ लिए तिल मिला दे छै अहां 8 बजे
1: ई जे अत्यधिक तीक्ष्ण सूर्य के किरण सब जे छै पर्यावरण के जे जैविक या अजैविक घटक सब में होमे वाला कोनो प्रकारक परिवर्तन के पर्यावरण प्रदूषण तो कहल जाय छै।
0: देखियो मिहिर भाई हम तो एकटा गप अहाँ बुझ लिय कि प्रकृति अहाँ के आवश्यकता के पूरा कऽ सकैय अहाँ के लोभ लालच या जे अनियंत्रित इच्छा अछि ओकरा पूरा नहीं कऽ सकैय बुझलहुँ कि नहीं आब अहाँ के जे नियमित जे समझ लिये निम्नतम जे आवश्यकता अछि न्यूनतम ओ तो पूरा भऽ जायत मुदा जे से छी दू प्राणी हाँ आ मकान चाही 4 जगह दिल्लियो में चाही पटनो में चाही मुजफ्फरपुर में चाहिए दरभंगो में चाहिए आ सब जगह मकान ढकर ढकर या बुझलो लागल या ताला लागल या झोल ओहि में लागल खा रहल या मकान के छै लेकिन लेकिन 4 जगह मकान चाहिए
1: तैं देखै छै रोड साइड में जतय खेती वाला जमीन छै जतय उद्यान वाला जमीन छै ओहिठाम विकासकरण सरकार के घर बनि रहल छै सिर्फ तो आब तो रोडो सब जे या गोपी भाई से ढलाई भ रहल छै अंगनो जे छै आब देखै छियै लोग ओकर ईटा दए खरंजा कर
0: खरंजा कर माटि नहि लागि जाय
1: माटि नहि लागि जाय
0: पैर मे जे माटि लागि जाय तखन तो हम पिछड़ल कहब छी
1: सब बिसरि रहल छथिन जे चंदन है इस देश की माटी माटि के चंदन बिसरि रहल छथिन
0: सिर्फ अपना सब के पहले देख लियो माटिक घर छला ऊपर में खपरा रहै छला कतबो गर्मी पड़े हां त एकदम छै घर शीतल रहै छला आब तो महाराज के जैसे 7 बजे 8 बजे के बाद एहन घरों में गर्मी लागे या आ जौं बिजली कट गेल तो ओकर बाद तो बुझू कि एकदम दुर्गतिये दुर्गत भ जाइया छै से।
1: देखियो गोपी भाई प्रदूषण पर्यावरण आ मानव स्वास्थ्य के प्रभावित कर रहल अछि ई एगो गंभीर समस्या अछि गोपी भाई प्रदूषण एक प्रकारक अत्यंत धीमा जहर है जकरा स्लो पॉइजन कहै छी जे बसात पैन गर्दा ए सब तरहक माध्यमे मानवेटा में नहीं प्रवेश कर रहल है जी प्रदूषण के दुष्प्रभाव ई जतेक भी जीव जंतु या पशु पक्षी या अपितु गाछो सब जे छे से प्रदूषित पर्यावरण के शिकार बन रहल है।
0: देखियो अपने सब के जे छे से अहाँ के भारतीय संस्कृति छल ओकरा कहल जाय छल अरण्यक संस्कृति बनीय संस्कृति वन में जे ऋषि मुनि छले थे जेना अपने सब कहते ना कि सांडिल गोत्र के छी भारद्वाज गोत्र के छी सांडिल के छले थे कश्यप के छले थे सब अहाँ के ब्रह्मर्षि छले थे तो उनके हम सब संतान छी आ ओ सब जे छे ओ अहाँ के जंगल में रह के वन में रह के वन के संवर्धन करैत गाछ के सेवा करैत अपन तपस्या ज्ञान से इस संस्कृति के अहाँ के पुष्पित पल्लवित के लेते मुदा आब हम सब जे प्रकृति के संग तालमेल क के रहे छलो ओ बिसरि रहल बुझलहुँ आब कोनो बात में सड़क बनायब तो अहू लेल गाछ काटि लेब गाछ काटब लेकिन लगायब नहीं
1: लगायब
0: पहले अपना सब के पूर्वज कहे छलखिन कि सुखल गाछ जे छौ ओकरे काटिया एकटा गाछ काट त 10 गो लोग आब तो छै से हरियरो गाछ के काटे में संकोच नहीं करै छी सुखल के पूछा आ लगाबे के समय में एकदम बिसरि जाय छी तब प्रकृति के जे साथ एना छेड़छाड़ करबे एहन दोहन करबे तब प्रकृति के जे कोप अछि प्रकृति के जे अहाँ के क्रोध अछि ओकर त शिकार अहाँ के होबे पड़त ओकर आक्रोश के छै से बुझलिए त एहि लेल छै से अपना सब के सजग रह पड़त साकांक्ष रह पड़त आ प्रत्येक व्यक्ति के दायित्व है समाज के दायित्व है कि वो अहाँ के छै से हमर सब के पूर्वज के जे नियम छल कि सुखल गाछ काटी एकटा सुखल गाछ काटी त 10 गो लगाबी ओहि परम्परा के निर्वहन करऽ पड़त।
1: देखियो
0: हमर जे बाबा छलथि ओ अहाँके 85 वर्ष के छलथि बुझलहुँ तो आमक मालदा आम के गाछ लगाबै छलथि
1: अच्छा
0: हँ तऽ हमर चचेरा भाय ओ पूछ देलकै कि काका ई जे अहाँ गाछ लगाबै छी हँ से अहाँके ई गाछ के विश्वास अछि कि फल अहाँ खायब

0: तो कहलखिन रे बउआ हमर बाबा लगेने रहे गाछ तेकर फल हम खेलहुँ बुझलहुँ और हम लगा रहल छी कि हमर जे पोता हैत ओ एकर फल खायत छी तो अपने लेल नहीं सोचबाक चाही बुझलहुँ आबे वाला जे अहाँके संतति अछि आबे वाला जे अहाँके जेनरेशन या जे आगे वाला जे युवा पीढ़ी अछि
1: ओकरा सुरक्षित
0: ओकरा सबके सुरक्षित भविष्य लेल टिकाऊ विकास पर ध्यान दी आ प्रकृतिक संग तालमेल कऽ के चली प्रकृति के पूजा करी प्रकृति के संवर्धन करी प्रकृति के सुरक्षा करी आगू हम सब गपशप करब मुदा ओहिसँ पहिने छोट छीन विराम लऽ ली
1: सुनल जाए।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।
0: हाँ छोट छिन विराम के उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई त मीर भाई एखन हम सब गपशप करे छलो हूँ कि प्रकृति के संग तालमेल कऽ के चली ओना ही प्रकृति के कण कण में संगीत है बुझलिए जलधारा जे बहैया हाँ जे कलकल धारा बहैया ओहू में अहाँ गंभीरता से सुनबे तो अहू में संगीत है बुझलहुँ चिड़िया जे अहाँ के चहचहाइया ओहू में संगीत है जंगल में बोन में गाछ में जे हवा जे बहैया गाछ के पात संगीत गाछ के पात जे डोलैया ओहू में संगीत है तो किया नहीं छे से हम सब संगीत का आनंद लेत एकटा छे से गीत सुनी
1: सुनल जाए गीत।

0: वाह गोपी भाई, हे गौरा तोरे सजन माना, ए गीत पर तो अहाँ एकदम देखलहुँ झूमै छलहुँ। आ देखियो गोपी भाई, महादेव छथिन ओ आशुतोष, हुनकर नाम छै
1: वास्तवमे। देखियो
0: ओ आशुतोष जे हुनका जे किछु नहि चाही, एक लोटा जल दऽ दियो,
1: एकदम सहज सरल सरल छै, बुझलहुँ कि नहि। आ सबसँ पैघ जे गप छै कि शिवके मतलब होइ छै कल्याण,
0: कल्याण
1: बुझलहुँ। आब देखियो ने छै जे जखन समुद्र मन्थन भेल तऽ सब देवता छै से अहाँके विष्णु लक्ष्मीके प्राप्त कयलथि, इन्द्र एरावत हाथी प्राप्त कयलनि, सब देवता अमृत बाँटलनि, मुदा शिव जे छै जखन ओ विष निकलऽ लागल, जखन सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जोड़ऽ लागल, तऽ शिव जे से समस्त विषको रक्षा करै लेल, समस्त जीव जन्तुके कल्याणक हेतु ओ जहर जे छल, गरल जे छल, ओ पी गेला आ नीलकण्ठ कहल,
0: कण्ठे मे राखि लेलकै। तऽ बुझल यऽ गोपी
1: भाई, इएह छै इएह छै मानवीय जीवन, कि मानवके जीवन जे हेबाक चाही अहाँके परमार्थ लेल हेबाक चाही, परमार्थ लेल साधु धरा शरीर, बुझलहुँ। ई मानव जीवन भगवान एहि लेल देलथि हँ कि परहित सरिस धर्म नहि भाई, आ पर पीरा सम नहि अधमाई। दोसरके हित करैसँ पैघ, दोसरके हित चिंतन करैसँ पैघ कोनो धर्म नहि थिक। आ जँ दोसरके अदला सोचै छी, जँ दोसरके लेल अदला चिंतन करै छी, तऽ एहिसँ पैघ कोनो पाप नहि थिक। तऽ मानव जीवनके जे सार्थकता अछि मिहिर भाई, ओ शिवके जेना समस्त चराचर जगतके कल्याण सोचियौ, आ ओहिके कल्याण करै लेल तत्पर रही,
0: तत्पर रही। तैं ने देखलियै जे देवों का देव महादेव,
1: महादेव तखन ओ महादेव कहलनि। हाँ अच्छा, एहन देव छथि कि अहाँके देवता की आ मनुख की, दानव पशु पक्षी सब हुनका पूजा करैए। अच्छा सबमे ओ समान प्रिय छथि, राक्षसो पूजा करा हुनका सब वरदान लए। अच्छा एहन औढ़रदानी कि एकदम समझ लिअ जे पूजा केलक हुनकर ध्यान केलक, जे वरदान मांगलक से दऽ देलक।
0: तीन लोक बस्ती बसा के आप बसे बीरानी,
1: बीरानी। हाँ अच्छा, सबके तऽ दै छथिन महल अटारी, आ अपने रहै छथि अहाँके हिमालय पर, नहि कोनो छत नहि कोनो अटारी, बरखा सेहो झेलै छथि, गर्मी सेहो झेलै छथि, आ जाड़ सेहो छै से ओ बर्दाश्त करै छथि।
0: इरादा मोहन मिश्र से ई सुंदर सन गीत सुनलहुँ।
1: हाँ हाँ, बड़ सुंदर गीत छल।
0: अहाँ लग कोन संदेश एकटा यऽ?
1: देखियौ हमरा लग संदेश अछि अहाँके कि रक्तदान जे यऽ ओ अहाँके मानव जीवनक एकटा महान काज थी, बुझलहुँ। रक्तदानके माध्यमसँ अहाँ जरूरतमंद जे व्यक्ति अछि ओकर जीवनके रक्षा करै छी। तऽ एहिसँ संबंधित एकटा सूचना अछि श्रोता लोकनि, रक्तदानके माध्यमसँ मात्र जरूरतमंद व्यक्तिके जीवन रक्षा नहि होइत अछि, परञ्च रक्तदाताके एहिसँ स्वास्थ्य सम्बन्धी कईटा लाभ होइत अछि। रक्तदान किया अछि महादान, एहि विषय पर आकाशवाणी दरभंगाके फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगीके अगला अंकक विषय होयत, रक्तदान क्यों है महा।

विशेषज्ञ हेता डॉक्टर संजीव कुमार इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़वाक लेल हमर सबक फोन नंबर है 0627222481। एक बेर फिर से सुन लिया 0627222481। और दोसर अहाँक मोबाइल नंबर है 9430029353 9430029353।

0: बजे अकेले 11 बजे। हाँ, तो श्रोता लोकन तत्पर रहता कि कार्यक्रम सुनता और अ कार्यक्रम सुनिक रक्तदान का महत्व का बुझता और रक्तदान के लिए तत्पर रहता। अच्छा, किछ लोग भ्रम पसारित है कि रक्तदान से शरीर में बड़ कमजोरी चल आबैया, बुझलो कि नहीं, आ बाद में छै से तरह तरह के स्वास्थ्य संबंधी बाधा आबैया, ई सब जे या ई सब मनगढ़ंत सूचना है, बुझलो गप है। सो रक्तदान से छै से अहाँ के खून का और बने के मौका भेटे छे, बोलो आ एकदम ताजा खून बनत है। आ दोसर गप ई कि रक्तदान के माध्यम से समाज में अहाँ एक सकारात्मक संदेश दे छे कि जे जरूरतमंद व्यक्ति छे ओकरा रक्तदान करियो आ समाज के विकास में राष्ट्रक विकास में अपन योगदान।
1: देखियो गोपी भाई, दाने शब्द जे छे से महान छे। हाँ। तो दान कोनो भी चीज के दान जे छे से बहुत बढ़िया है छे।
0: हाँ।
1: तो देखियो गोपी भाई और सब गप करो, तब एक छोट छिन विराम।
2: कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: छोटछिन विराम के उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई संग में छेद मिहिर भाई। मिहिर भाई, अपन सबके जे देश अहाँ कह वैदिक युग से हम सब विश्व गुरु छलो, ज्ञान का जे अहाँ का अठाम प्रचार प्रसार भेल, आ पूरे संपूर्ण विश्व को हम सब ज्ञान दिलूँ। अब देखियो ना, सुन्ना से लौ कर 9 तक का जे आविष्कार भेल ओ भारतीय में भेल, के केलन तो आर्यभट्ट जे हमर सब के छले गणितज्ञ से केलन। हाँ, दशमलव का आविष्कार अही ठाम भेल। अब सुन्ना से लौ कर 9 तक के जे अंक है आ दशमलव जे है अही पर तो पूरा अहाँ का गणित आ विज्ञान आधारित है। हाँ, जते जगह अहाँ का वैज्ञानिक गणना हुई तो वही पर हुई है से ओनाही से हमर सब का से चिकित्सा विज्ञान से उत्ते समृद्ध छल। ईसा मसीह के जन्म से 323 वर्ष पहले पाटलिपुत्र में अहाँ का एक नगर सेठ छले था, उनकर मस्तिष्क के नस में अहाँ का घाव भ गेल, बुझल। अच्छा, मस्तिष्क जो है पूरा शरीर के कह सके थी, जना कंप्यूटर को होया CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओनाही मस्तिष्क जो है वो अपना पूरे होल बॉडी को प्रोसेस करैया, पूरा आँख ओकरा एक्टिव करैया, मॉनिटरिंग करैया। अब वही में अहाँ के छे से ओकरा घाव भ गेल आ वो व्यक्ति आ मरे वाला रहा, तो अहाँ नाम सुनने हेबे बहुत बड़का छे से उसमें सर्जन छले था, शल्य चिकित्सक सुश्रुत, सुश्रुत संहिता निकले लिखने छे, और वो अहाँ को जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय जे छल पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, वही यूनिवर्सिटी से वो निकलल छले था, वही यूनिवर्सिटी से जैसे चाणक्यो पढ़ने रहे, आ वही समय अहाँ के एक महान फिजिशियन छले था चरक, जे चरक संहिता लिखने छे ओहो छे से वही यूनिवर्सिटी के छले था। तो सुश्रुत ओहि समय ओहि व्यक्ति के मस्तिष्क के खोल के आ ओहि के नस में जो ओकरा मवाद छले हँ घाव, ओ मवाद के नस के काट के मवाद निकाल दिलक, फिर नस के जोड़ दिलक, आ फिर ओकर दिमाग के सिलाई कर दिलक, आ ओकर बाद ओ व्यक्ति 1 साल 2 साल ने 25 साल आरोग्यतापूर्ण जीवन वो जिलक जैसे। तो देखियो हमर सबके जे मेडिकल साइंस छल वो कतेक अहाँ के डेवलप विकास विकसित छल ईसा मसीह के जन्म से 323 वर्ष पहिने। तो अपना सबके जे ज्ञान है, जे संस्कृति है, जे समझ लीजिए धरोहर है, वो अमूल्य है, ओकर संरक्षण संवर्धन आवश्यक है।
1: देखियो गोपी भाई, मिथिला जे छे से विश्व गुरु तो छै है, अध्यात्मो के वास्ते मिथिला जे छे से सर्वमान्य छे। देखियो मिथिला में आन जगह के जे माटि छे से अन्न फल फूल दे छे, एतुका माटि तो जगत जननी जानकी के प्रादुर्भाव के नहीं है। तो मिथिला के तो जतेक भी वर्णन कर अवर्णनीय है। आ देखियो गोपी भाई, अपन सबके एहि तरहक जे सांस्कृतिक विरासत जे छे से सब समाज के छे एक पहचान, ओकर इतिहासक प्रतीक कहल जाए छे। एक संरक्षण आ संवर्धन के लेल सब गोटे के अंतःकरण से एकरा स्वीकार करय पड़ते जे ई संरक्षित केना

0: तहत संवर्धित केना रहतै। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में खाली पुरान इमारत आ कलाकृति सभक रक्षा करब मात्र नहीं छे गोपी भाई, अपितु अपन सभक समाज के रहन सहन पावन तिहार भाषा परंपरा ऐ सब तरह जतमान वस्तु छे ओहि सब के सुरक्षा करब सेहो अपना सब के कर्तव्य
1: होइ छे। देखियो सांस्कृतिक धरोहर के जे संरक्षित करब मीर भाई आ ओकरा बढ़ावा देब तैले एचाके में ऐतिहासिक इमारत भेल पुरातात्विक स्थल भेल कलाकृति के भौतिक रख रखाव आ मौखिक परंपरा आ लोक कला जे ओकरा छै से अहाँ के सहेज के राखी बुझलौ। तो आगू हम सब गपशप करब मुदा ओहि सब पहिने अपने सब गीत नाद सुनल
0: जाय।

0: नजरिया हो ई झूमर अहाँके शारदा सिन्हाके स्वरमे सुनै छलहुँ। वास्तवमे ई नजर जे अछि हँ एकर बहुत अर्थ छै, बुझलहुँ अहाँ नजरके द्वारा अपन छै से आँखिके भावके द्वारा अहाँ बहुत रास काज कऽ सकै छी। पहिलुका जे कलाकार सब छलथि हँ ओ मौन भावके सिर्फ आँखिसँ अपन भावके सम्प्रेषण करै छलथि, आ एखुनको जे अहाँके बहुत जे सशक्त कलाकार सब छथि ओ कतेक जगह एहन होइ छै कि संवाद नहि होइ छै, मुदा अपन आँखिक छै से भावके सम्प्रेषण अपन चेहराके भावके सम्प्रेषणके द्वारा ओ अहाँके आसानीसँ अपन गप कहि जाइ छथि। तऽ नजरके आँखिके बड़ महत्व अछि, आ ओनाही महत्व अछि कि अपन जे सांस्कृतिक जे विरासत यऽ, बुझलहुँ इएह एहिसँ तऽ अपना सबके पहचान अछि। आ मिथिला जे अछि ओ विश्व पटल पर अहाँके अपन सांस्कृतिक गौरवके लेल प्रसिद्ध अछि, हमर सबके समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अछि। तऽ एहि विरासतके हमसब संरक्षित करी, संवर्धित करी, एकरा सहेज कऽ राखी, ताकि जैसे आबैवला जे पीढ़ी अछि ओकरो बताबी कि जैसे अपन सबके सब जे संस्कृति अछि जे विरासत अछि कतेक गौरवमयी अछि।
1: देखियौ गोपी भाई, संस्कृत विरासत के बचेबाक लेल सबसे सरल उपाय छै भाषा के बचा कर रखना।
0: हाँ एकदम, हाँ
1: भाषा बचत तो संस्कृत बचत, संस्कृत बचत अपन अस्तित्व मानव के अस्तित्व बचत।
0: भाषा भेल, लोक संगीत भेल, लोक नृत्य भेल, अपना सबके जे विधि विधान होइया, विधि विधान वाला गीत पावन त्यौहार ई सब छै से संस्कृति के बहुआयामी रूप अछि। तऽ एहि के संगे जे गाम घर के समय अछि ओ सम्पन्न हेबाक अछि, आ हमसब खेती पथारी के कार्यक्रम खेती गृहस्थी दिस चली। तऽ खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई लोकनि का हार्दिक स्वागत अछि। तऽ केना की खेती बाड़ी भऽ रहल छै मिहिर भाई?
1: खेती पथारी तऽ अखन बढ़िया जकाँ चलि रहल अछि। आ देखियौ गोपी भाई, खेती पथारी के बढ़िया बनबे के वास्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा चलाओल जा रहल एक गोट प्रमुख फसल बीमा योजना अछि।
0: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ।
1: एकर मुख्य उद्देश्य गोपी भाई प्राकृतिक आपदा जना कि रौदी, बाढ़, पाथर, ओलावृष्टि सब जे भऽ जाइए ऐसा तरहक प्राकृतिक आपदा के संग संग कतौ कतौ कीट कीट मकोड़ा सबके प्रकोप जे टिड्डा टिड्डा कीट सब बीघा के बीघा खेत सबके नाश कए दैए, एहि सब जे कीट वला फसल सब जे छै तकरा नाश करैए, ई सब जे प्राकृतिक आपदा छै ओहि सबमे किसान के फसल के लागत के बराबर मुनाफा जे छै से हुनका घाटा नहि लगनि, ओ जे हुनका जतेक लागत लगलनि ओ ई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान लोग के दे के भारत सरकार के एकटा देखियौ योजना।
0: मेहर भाई बड़ नीक योजना अछि, आ अपने सब बुझै छियै किया तऽ अपने सब खेती बाड़ी करै छी कि खेती बाड़ी के काज अछि कतेक अनिश्चित अछि। हाँ, आ एखनो जे खेती बाड़ी के काज यऽ ओ अहाँके मानसून पर निर्भर यऽ, बुझलहुँ नीक बरखा भेल आ समय पर बरखा भेल तक तऽ फसिल नीक हैत, आ कहीं रौदी पड़ि गेल, कहीं बरखा समय पर नहि भेल या अतिवृष्टि भऽ गेल तब अहाँके फसिल दहि जायत। तब बड़ अनिश्चित छै से अहाँके काज अछि खेती बाड़ी के काज, आ एहिमे ई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जे अछि कि जँ अहाँके फसल खराब भऽ गेल चाहे रौदी के कारण, चाहे कीड़ा मकोड़ा के कारण, चाहे अहाँके अतिवृष्टि सँ दहि गेल, तऽ एहिमे जब फसल के बीमा करा लै छी तऽ अहाँके जे हानि यऽ ओ हानि नहि हैत, आ पूरा लाभ के संगे छै से ओ पैसा अहाँके भेट जायत।
1: तऽ
0: ई जे अछि खेती बाड़ी के जे अनिश्चितता, जे अनिश्चित भविष्य अछि ओकर संकट के दूर करैए, आ किसान के खेती बाड़ी करै लेल उत्साह दैए, हौसला दैए कि आब कोनो चिंता के गप नहि छै, आब जे रोजियो

0: पड़तै तऽ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा हमरा छै से ओते सुरक्षित छी, बुझलहुँ।
1: ए बीमा योजना के छै जे कम प्रीमियम पर नीक सुरक्षा दे,
0: कम प्रीमियम पर छै,
1: किसान भाई बंधु लोकन के अपना तरफ से बड कम प्रीमियम देबा पड़ै छै, भारत सरकार आ राज्य सरकार मिलकर हुनकर लागत।
0: देखियो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान के बीमा कंपनी द्वारा निश्चित खरीफक फसल के लेल 2% प्रीमियम और रबी के फसलक लेल 1.5% प्रीमियम के भुगतान करय पड़ै छै।
1: ओते वाणिज्य बागवानी फसल के बीमा राशि में 5%
0: 5% अछि। आई अपन विशिष्टता के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जे ओ काफी छै से अहाँ के लोकप्रिय भ रहल अछि। आगू हम सब गपशप करब, मुदा ओहि से पहिने छोटछिन विराम लऽ
1: सुनल जे।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: छोटचिन विरामक उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई संग में छेद मिहिर भाई। तो मिहिर भाई अखन चर्चा करे छलो हम सब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावा के निपटारा में देरी भेला के स्थिति में राज्य और बीमा कंपनी पर जुर्माना लगाबे के प्रावधान शामिल करे के फैसला सेहो केलक, बुझलहुँ। आ संगे संग ई महत्वपूर्ण प्रावधान FBI के क्रियान्वयन के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अंतर्गत भ रहल अछि। आगू हम सब गपशप करी, मुदा ओहिसँ पहिने विराम लऽ ली।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: हाँ, छोटचिन विराम के उपरांत उपस्थित छी हम गोपी भाई संग में छथि मिहिर भाई। तो मिहिर भाई, आब अहाँ के समय भ रहल अछि अपन सबक जे प्रायोजित कार्यक्रम अछि उड़ान। हाँ, तो उड़ान प्रायोजित कार्यक्रम जे अछि ओ हम सब सुनी।
1: सुनल जाए।
4: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
5: इससे बड़ा प्रेम और कुछ नहीं कि कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए, उसकी दोस्ती के लिए अपना प्राण दे दे। जैसे तेल और खुशबू से, वैसे ही एक दोस्त के दिल की अच्छी दोस्ती और साथ से दोस्त का मन आनंदित हो जाता है। प्यारे श्रोताओं, नमस्कार। कार्यक्रम उड़ान में मैं प्रियंका आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है
6: 8806008-8827। जी हाँ, 8806008-8827।
5: दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारे विषय में प्रोग्राम लेके आए हैं। जी हाँ, एक बहुत ही सुंदर रिश्ता दोस्ती का, दोस्ती जो जीवन को महका देती है, या यूं कहें कि जीवन को आसान कर देती है। दोस्ती, दोस्ती नाम है शरारत का, मुस्कुराहट का, उम्र भर की चाहत का। दोस्ती एक एहसास है, न भूल सको वो ख्वाब है, कभी यादों में, कभी ख्वाबों में, वो हर

कहीं मिल जाता है। कोई आए ना आए, दोस्त हर मुसीबत में दौड़ा चला आता है। दोस्ती सुकून है जो हमें हर तकलीफ से निजात दिलाता है। दुख की तपन में दोस्त शीतल बयार बनकर आता है। कभी छेड़छाड़ कभी इकरार, हर दिन की तकरार, मगर दिलों में है प्यार। दोस्ती इसी का नाम है सरकार। जी हाँ दोस्तों, दोस्ती बहुत ही खास और गहरा रिश्ता है और हम सबके जीवन में ये रिश्ता होता ही है, या हम सब इस रिश्ते को अपनी जिंदगी में चाहते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच्चे मित्र हीरे की तरह कीमती और दुर्लभ होते हैं, जो आसानी से नहीं मिलते, और अगर मिल जाते हैं तो हमको इसको बहुत संभाल कर सहेज कर रखना चाहिए। हमको इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। कुछ भी हो, हमको बस अपने दोस्त के लिए वफादार रहना चाहिए। कई बार ऐसा वक्त आता है कि हमारी जिंदगी में हम जिंदगी में उलझ रहे होते हैं और जिंदगी में हार रहे होते हैं, और आसपास कोई ऐसा नहीं दिखता जिसको हम अपने दिल की बात बता सकें। और ऐसे वक्त पर अगर कोई होता है जहां हम सहज महसूस करें, तो वो होता है दोस्त का साथ। और आज ऐसे ही एक प्यार भरे रिश्ते की कहानी लेकर मैं आई हूँ। ऐसी दोस्ती जो अद्भुत थी, जहाँ प्यार, विश्वास, सब कुछ था, जहाँ सिर्फ एक दूसरे का होना ही सब कुछ था। जी हाँ दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा।

एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम सुमा था। काफी बड़ा राज्य था उसका। उसके बड़े बेटे का नाम जीवा था। बहुत सुंदर, योग्य, हर बात में उत्तम था। राजा का बड़ा बेटा था तो आगे चलकर आने वाला राजा उसी को होना था। और उसी राज्य में एक लड़का था जिसका नाम देव था। वह एक चरवाहा था और वीणा बजाता था। एक बार की बात है, इस राज्य में एक दिन संकट आ गया। एक दुश्मन ने इस राज्य में हमला कर दिया और वह दुश्मन इतना खतरनाक था कि कोई भी उससे युद्ध करने को नहीं जा पा रहा था। राजा की हिम्मत भी नहीं थी कि वह उससे युद्ध करे और ना ही प्रजा के किसी इंसान में हिम्मत थी कि कोई जाकर उससे युद्ध करे। सब डरे हुए थे। तब देव को पता चला, वो चरवाहा था और अपने घर में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाई भी राजा की सेना में ही थे, पर पूरे राज्य में किसी के अंदर युद्ध करने का साहस नहीं था। तब ये बात देव तक पहुंची और देव ने राजा से कहा कि वह युद्ध करने को जाएगा। राजा ने और सब ने उसको बहुत मना किया और कहा कि वह अभी छोटा है और ना ही उसे युद्ध की समझ है, और जिससे युद्ध करना है वो तो बहुत बड़ा योद्धा है। तब देव ने कहा कि वह रोज जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाता है और वहां पर कई बार वो जंगली जानवरों से अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करता है। तब समय आया कि राजा ने देव की बात मान ली और देव ने उस दुश्मन को मार गिराया। और हुआ यूं कि वह देव देखते देखते सबका चहेता हो गया और राजा का बड़ा बेटा जीवा देव को अच्छा मानने लगा और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और जीवा देव को बेहद प्यार करने लगा। वो राजा का बेटा था और देव चरवाहा था, पर दोनों के बीच बेहद प्यार था। तब ऐसा हुआ कि प्रजा के बीच देव काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था और यह देखकर राजा को अच्छा नहीं लगा और राजा को देव से जलन होने लगी। दूसरी तरफ जीवा और देव की दोस्ती बहुत ही गहरी होती जा रही थी। कुछ समय बीतता गया और राजा के अंदर की जलन बढ़ती गई, क्योंकि राज्य के लोगों के लिए देव एक नायक के समान हो गया था। तो राजा की ईर्ष्या और क्रोध देव के लिए इतना ज्यादा हो गया कि राजा ने देव को मार डालने का निश्चय किया और राजा देव को मारने का बार बार प्रयत्न करने लगा और हर बार देव बच जाता था। राजा का बेटा जीवा देव को सब कुछ बता देता था। जो भी उसका पिता योजनाएं बनाता था देव को मारने के लिए, जीवा

सब कुछ देव को बता देता था। जीवा ने अपनी तलवार, अपने राजकीय वस्त्र, अपना धनुष, सब कुछ देव को दे दिया और दोनों ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी क्यों ना हो, उनकी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। एक दिन राजा ने अपने बेटे जीवा को बुलाकर कहा कि वे देव को मार डाले, पर जीवा ने ऐसा नहीं किया और उल्टा राजा से वचन ले लिया कि वह देव को कुछ नहीं करेंगे। पर एक दिन राजा ने सेना भेज दी देव को मारने के लिए और देव वहां से भाग गया। तब देव ने और जीवा ने गुप्त में एक बैठक की और उस गुप्त बैठक में दोनों ने मिलकर एक दूसरे से वादा किया कि कुछ भी हो, पर वो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा वफादार रहेंगे, एक दूसरे के परिवार पर दया करेंगे और एक दूसरे के परिवार की हिफाजत करेंगे। तब देव के पास राजा के घर से दावत का निमंत्रण आया, क्योंकि देव राजा के सेना में था। देव को राजा के उस भोज में शामिल होना था। तब देव ने और जीवा ने तय किया कि जीवा अपने घर जाकर पता लगाएगा कि कहीं भोज में देव की जान को खतरा तो नहीं है, और अगर हुआ तो देव को जीवा सब कुछ बता देगा। तब भोज का समय निकट आया और देव भोज में नहीं गया। तब राजा ने पूछा कि देव क्यों नहीं आया। तब जीवा ने राजा को कुछ बहाना बता दिया। तभी राजा क्रोधित हुआ और राजा का सारा क्रोध जीवा पर निकला। राजा ने अपने बेटे से कहा कि तुम क्यों नहीं समझते हो कि जब तक देव जिंदा है तुम राजा नहीं बन सकते। प्रजा के अंदर देव के लिए प्यार है और देव के होते हुए तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे, इसलिए जाओ और देव को लेकर आओ ताकि मैं उसको मार दूं। तब जीवा ने कहा, आप क्यों देव को मारना चाहते हैं? तब क्रोध में राजा ने अपने बेटे के ऊपर ही भाला फेंक दिया, पर जीवा बच गया। तब जीवा को समझ आ गया कि देव की जान को खतरा है और जीवा वहां से चला गया और उसने जाकर देव को सब कुछ बता दिया और देव से कहा कि उसकी जान को खतरा है और वो वहां से भाग जाए। दोस्तों, तब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वे बहुत रोए। तब जीवा ने देव से कहा कि तुम यहां से भाग जाओ, पर हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी, ईश्वर तुम्हारे और मेरे वंश के बीच में हमेशा रहेगा। तब दोनों ने एक बार और एक दूसरे को गले लगाया और वो दोनों लिपट लिपट कर रोने लगे और फिर देव वहां से दूर सुरक्षित जगह पर चला गया और जीवा अपने घर वापस आ गया। तब कुछ वक्त के बाद अचानक फिर उस राज्य पर आक्रमण हुआ और युद्ध होने लगा। देव वहां नहीं था। तब उस युद्ध में राजा और उसके पुत्र मारे गए और जीवा भी उस युद्ध में मारा गया। तब देव तक ये समाचार गया। देव टूट गया, उसने अपने एक अच्छे सच्चे भाई जैसे दोस्त को खो दिया। तब देव ने उस इंसान को मार डाला जिसने राजा और उसके पुत्रों को मारा था।

तब उस देश का नया राजा देव को बनाया गया। और फिर देव ने सबसे पहले जीवा के परिवार से उसके बेटे को बुलाया और जितना कुछ राजा का था और जीवा का था सब कुछ उसको लौटा दिया और उसको अपने साथ अपने महल में रखा। और इस तरीके से देव ने अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, एक अनुभव कहता है कि एक

एक वफादार दोस्त हजार रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जी हाँ, एक वफादार दोस्त हजार रिश्तेदारों से बेहतर होता है। देखा दोस्तों, सिर्फ दोस्त कह देने से दोस्ती नहीं हो जाती। दोस्ती निभाने के लिए सच्चाई, वफादारी और अटूट प्यार का होना बहुत जरूरी है, विश्वास का होना बहुत जरूरी है, जैसा देव और जीवा के बीच में था। जीवा दोस्ती के कारण अपने पिता के खिलाफ चला गया, क्योंकि उसको पता था कि देव सही है। जीवा को भी पता था कि देव के होते हुए जीवा कभी राजा नहीं बन सकता, पर फिर भी उसके लिए राजगद्दी जरूरी नहीं थी, अपना दोस्त जरूरी था। और बदले में देव ने अपना वचन पूरा किया और जीवा के परिवार की देखभाल की।

0: हाँ दोस्तों, आज हमको भी जरूरत है कि अगर हम दोस्ती करते हैं तो ऐसी पवित्रता होनी चाहिए हमारी दोस्ती में, विश्वास होना चाहिए हमारी दोस्ती में। किसी ने इस प्रकार कहा है कि दोस्ती करो तो ऐसी करो कि भगवान भी आपको दोस्त बनाना चाहे। दोस्तों, ऐसे ही हमारे कुछ दोस्त हैं आज जिनका नाम हम हमारे प्रोग्राम में साझा करना चाहते हैं। जी हाँ, हमारी दोस्त हैं ज्योति शर्मा जी हरदोई यूपी से, नीलिमा द्विवेदी जी बाराबंकी यूपी से, हमारे दोस्त रोशन सिद्दीकी नवादा बिहार से, और हमारे दोस्त कामेश्वर सिंह समस्तीपुर बिहार, अरुण कुमार उन्नाव यूपी से, और राम प्रहलाद सुपौल बिहार से। हम आप सबका हमारे प्रोग्राम को सुनने और प्रशंसा करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
0: तो दोस्तों, ऐसे ही दोस्ती निभाते रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। अब आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: हाँ मिहिर भाई, एखन हमसब प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनि रहल छलहुँ। वास्तवमे मनुष्यके जे क्षमता अछि ओ अनन्त अछि, आ मनुष्य जँ सकारात्मक भऽ कऽ अपन काज करए बुझलहुँ तऽ ओकर भविष्यक जे उड़ान अछि ओ अनन्त गगनमे अनन्त आकाशमे उड़ि सकैए, ओकर कोनो सीमा नहि अछि। जे केओ एकसँ एक जतेक क्रान्तिकारी विकास भेल हमसब सोचै नहि छलहुँ। पहिले रेडियो लगाबी, गाममे रेडियो सुनी, तऽ कखनो लगाबी विविध भारती, कखनो पटना आकाशवाणी, कखनो गोरखपुर आकाशवाणी, तऽ सोचै छलियै कि एहनो अथी होइतै कि टी वी होइतै कि ओहिमे सब 10 तरहके चैनल रहिते ही रहैत। आ देखियौ देखैत देखैत जे आब तऽ मोबाइले भऽ गेल कि ओहिमे सबकिछु पूरा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ओहिमे समाहित अछि, सब जानकारी समाहित अछि। तऽ कहबाके मतलब ई अछि कि मनुष्यके जे क्षमता अछि ओ अनन्त अछि, आ जे एकसँ एक जे अहाँके पैघ व्यक्ति भेलथि हँ, यौ पूरा कहि सकै छी कि धरसँ लऽ कऽ जतेक धरसँ नीचाके जतेक शरीरके हुनकर भाग छलनि हँ ओ पैरालाइज्ड छलनि विलियम हॉकिन्सके।
1: अच्छा।
0: आ ओ 21वीं शताब्दीके सबसँ महान साइंटिस्ट मानल गेल बुझलहुँ, एहन विज्ञानके ओ सूत्र देलथि हँ। तऽ कहबाके मतलब ई अछि कि जँ हमर खाली दिमाग स्वस्थ अछि तऽ हम पैघसँ पैघ काज कऽ सकै छी, बुझलियै।
1: अपने जे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम,
0: अब्दुल कलाम छलथि,
1: जीवन हत्या करै लए जाइ छलथि,
0: हतोत्साहित भऽ
1: आ बड़का साइंटिस्ट भऽ गेलथि, आ राष्ट्रपतियो भेलथि,
0: मिसाइल मैनके नामसँ प्रसिद्ध भेलथि। तऽ ओनाही छै से जीवनके जे उड़ान अछि ओकरा रूप निश्चित रूपसँ गति देबाक चाही।

0: मनुष्यके जीवनमे निष्काम भावसँ कर्म करी, कहल गेल अछि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करू अहाँ सकारात्मक भावसँ आ फल जे छै भगवानपर छोड़ि दियौ आ एकदम आनन्दित भऽ कऽ समर्पित भऽ कऽ कर्म करी। ओनाही जे अछि खेती बाड़ीके जे काज यऽ ओहूमे आनन्दित भऽ कऽ समर्पित भऽ कऽ काज करब आ समयानुकूल आ योजना बना कऽ, आ योजनाके अन्तर्गत आबि जाइए कि मौसम पूर्वानुमानके जे जानकारी किसान भाई लोकनिके हमरा लोकनिके भेट जाइए तऽ खेती बाड़ीके काज करैमे बड्ड आसानी होइए। की मीर भाई तऽ अपना सबके लग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभाग दिससँ जारी 10 जून सँ 14 जून 2026 धरि मौसम पूर्वानुमानक अनुसार पूर्वानुमान अवधिके अधिकांश समय आकाशमे आंशिक रूपसँ मेघ लागल रहत आ 11 सँ 13 जूनके आसपास वर्षाके सङ्ग सङ्ग मेघ गर्जन आ झोंकेदार हवा चलेके सम्भावना अछि। विशेष रूपसँ 11 सँ 13 जूनके दौरान एहन मौसमीय गतिविधिके सम्भावना अछि। गोपालगंज, मधुबनी, बिहार, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिलामे 11-12 जूनके 65 सँ 70 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होइके सम्भावना अछि। आन जिलामे हलुकसँ मध्यम वर्षा हेबाक सम्भावना अछि।
1: हाँ गोपी भाई, एहि अवधिमे अधिकतम तापमान 35 सँ 49 डिग्री रहैके सम्भावना अछि आ सामान्यसँ लगभग 2 सँ 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहैके सेहो सम्भावना अछि आ न्यूनतम तापमान 25 सँ 28 डिग्री सेल्सियस रहैके सेहो सम्भावना अछि। आ भोरके सापेक्ष आर्द्रता 70 सँ 75% आ दुपहरियामे 20 सँ 25% रहैके सेहो सम्भावना अछि।
0: तऽ एहिके सङ्गे खेती गृहस्थी कार्यक्रमके समय सम्पन्न हेबाक अछि। खेती गृहस्थी कार्यक्रमसँ किसान भाइसँ हमसब आज्ञा ली। नमस्कार मीर भाई।
1: नमस्कार गोपी भाई।

खेती गृहस्थी, ये था किसान भाइयों के लिए हमारा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

0: थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के विस्तार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित। कहा, दीपक प्रकाश पूरी अवधि तक मंत्री बने रहेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त। भोजपुर के कायमनगर निवासी अग्निवीर वायु दानिश आलम समेत 5 जवानों की मौत। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के विस्तार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को 30 दिनों के भीतर सभी आवश्यक मंजूरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि बिहार में 12 नए टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से औद्योगिक विकास को गति मिल रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था को विकास की महत्वपूर्ण शर्त बताते हुए कहा कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के जेपी गंगा पथ पर 1,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। पटना में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने गंगा तट क्षेत्र के समग्र विकास, पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक पहचान के पुनर्स्थापन और राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं पर समयबद्ध

0: कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 निर्धारित की गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वे इस आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
1: क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहां से पास होता रहा, उसका अध्ययन करेंगे। अभी कल ही हमारे पास ये जानकारी आई है, हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए, मंडे को उस पर सेक्रेटरी के साथ बैठेंगे, क्या एक्शन प्लान हो सकता है उस पर बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके निर्वाचन की घोषणा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। बाद में अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि पार्टी का विस्तार उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश अपने पूरे कार्यकाल तक मंत्री बने रहेंगे।
2: एनडीए के नेताओं में पूरे तौर पे सूझबूझ है और सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया, नहीं देना होता तो दीपक प्रकाश दोबारा से मंत्री परिषद का शपथ नहीं लेता। जिस दिन दोबारा से इसने मंत्री परिषद की शपथ ली, उस दिन इस सूझबूझ के साथ शपथ दिलाई गई कि दीपक प्रकाश 2 महीना 4 महीना का मंत्री नहीं, पूरे कार्यकाल का मंत्री। तो एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं की सूझबूझ पर कभी शंका करने का काम मत करिए।
0: एनडीए ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के उस बयान को खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार कंगाल होने के कगार पर है। गया में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है।
3: डबल सरकार है, ऐसे यहाँ पैसा की कमी नहीं है, पैसा सब आ रहा है। जब डबल इंजन की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी हैं यहाँ पर, तो सम्राट चौधरी को यानी बिहार सरकार को पैसे की कोई कमी नहीं होगी।
0: विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है।
4: लोकतंत्र में बातों को रखना चाहिए, जानकारी भी लेना सही चाहिए, बयान देना एक अलग चीज है, कोई भी बयान दे सकता है जाकर। सच्चाई यह है कि आज बिहार में समय पर अधिकारियों को वेतन मिल रहा है, बिहार का विकास हो रहा है, बिहार में तेज रफ्तार से डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार में खुशहाली है, शांति है, कानून का राज है, बिहार का विकास हो रहा है, सबों को पेंशन भी मिल रहा है, वेतन भी मिल रहा है और डेवलपमेंट का काम भी जारी है।
0: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार आम लोगों के लिए काम कर रही है।
5: खजाने की चिंता तेजस्वी जी नहीं कर रहे, सम्राट चौधरी जी बिहार की चिंता कर रहे हैं। हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, एक दिन में 1100 रुपए प्रति व्यक्ति उन्होंने डीबीटी के माध्यम से भेजा और सारी योजनाएं जो लोक हित की योजनाएं वो चल रही है। सम्राट चौधरी जी की सरकार आम लोगों के हित में काम कर रही है, लगातार नई नई योजनाओं की घोषणा हो रही है, इसलिए आम जनता की चिंता बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी उनकी सरकार कर रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की युवा विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विनिर्माण सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10

0: वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% हो गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम के जोरहाट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के कायम नगर के अग्निवीर वायु दानिश आलम भी शामिल हैं। 22 वर्षीय दानिश वर्ष 2025 में वायुसेना में शामिल हुए थे। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। प्रदेश के 19 जिलों तक मॉनसून पहुंच चुका है। मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मॉनसून के प्रभाव से आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान पटना, औरंगाबाद, रोहतास, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों

0: जमीन, वित्तीय लेन देन, संपत्ति से जुड़े कागजात और बेनामी संपत्ति की जांच की गई। पटना के बिस्कुमान भवन की 13वीं मंजिल पर बेल्ट्रॉन कार्यालय में आज तड़के आग लग गई। आग लगने के कारण कई महत्वपूर्ण कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर नष्ट हो गए। अग्निशमन दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है।
1: आग को कंट्रोल करने में पूरा 45 मिनट लगा था, बाकी धुआं वगैरह था उसको हम लोगों ने पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है। हमारी 5 हाइड्रोलिक गाड़ियां और 12 वाटर टेंडर और वाटर बाउजर गाड़ियां थी।
0: कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जुराबगंज के पास NH 31 पर एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 25 यात्री घायल हो गए। इनमें से 15 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए GNCH पूर्णिया रेफर किया गया है। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कौवाहा से पुलिस ने 419 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि गांजा की तस्करी में डायल 112 के चालक की संलिप्तता पाई गई है, जिसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक चारपहिया वाहन से 10.5 किलो अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नवादा सदर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार को 15,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से जमीन के परिमार्जन के एवज में घूस ले रहा था। धान खरीद में अनियमितता बरतने के आरोप में बांका जिले के चुटिया बेलारी पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद शाहबाज को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पैक्स अध्यक्ष पर 50,00,000 रूपये मूल्य की धान की हेराफेरी का आरोप है। समस्तीपुर जिले के बढ़ोना पंचायत के चतरा गांव में करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत शेखपुरा जिले के मदारीपुर गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड निवासी सारांश कुमार ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के रिदमिक पेयर योगासन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बेतिया पहुंचने पर उनका बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के विस्तार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित। कहा, दीपक प्रकाश पूरी अवधि तक मंत्री बने रहेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त। भोजपुर के कायमनगर निवासी अग्निवीर वायु दानिश आलम समेत 5 जवानों की मौत। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
3: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
2: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
3: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
2: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार, स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से

0: महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
3: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भोजपुर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
4: राज्य में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कई वर्षों के बाद इस बार जिले में मॉनसून समय पर पहुंचा है। मॉनसून के आगमन के साथ ही कृषि कार्यों में तेजी आ गई है और किसान बड़े उत्साह के साथ खेतों में जुट गए हैं। किसानों का कहना है कि यह समय धान के बिचड़े डालने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। समय पर हुई बारिश ने खेतों में नमी बढ़ा दी है, जिससे धान के बिचड़े डालने की तैयारी को गति मिली है। भारत सरकार द्वारा भोजपुर के ननौर गांव निवासी भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर जिलेवासियों में हर्ष का माहौल है। लोगों ने भोजपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले कलाकार को यह प्रतिष्ठित सम्मान दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। शाहाबाद की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और गुरुजी तथा साजा बाबा के नाम से प्रसिद्ध लोक गायक भरत सिंह भारती ने पद्मश्री सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने भोजपुरी भाषा, लोक गीतों और सांस्कृतिक मूल्यों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने युवाओं से अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने की अपील की।

0: भोजपुरी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भोजपुर जिले में इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जन समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न नीतिगत निर्णयों की सराहना की है। लोगों का मानना है कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सरकार भावी पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर रही है। असम के जोरहाट में हुए विमान हादसे में वायु अग्निवीर 22 वर्षीय दानिश आलम की मौत हो गई। दानिश भोजपुर जिला के कोइलर थाना अंतर्गत कायम नगर के रहने वाले थे और अपने परिवार में इकलौते पुत्र थे। हादसे में उनकी मौत की खबर से परिवार में मातम पसरा है और लोग सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। भोजपुर जिले में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस गृह विभाग कारा तथा परिवहन विभाग में सिपाही पदों पर नियुक्ति के लिए 14 जून और 17 जून को दो दो पालियों में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए जिले में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर मानवेंद्र कुमार राय ने बताया कि प्रत्येक पाली में 11,424 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा संचालन की निगरानी के लिए वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को परीक्षा संयोजक, नोडल पदाधिकारी और पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले के प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों जिले के राजापुर पंचायत में श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। उनके साथ बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया भी उपस्थित रहे। इस दौरान राजस्व और स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल और कृषि सहित विभिन्न विभागों के काउंटर लगाए गए। ग्रामीणों ने सीधे अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासन गांव गांव तक पहुंचे। इधर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन के डिजिटाइजेशन तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% निष्पादन के निर्देश दिए। बीते दिनों बिहिया में आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता द्वारा बाढ़, सुखाड़ और हीट वेव जैसी संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर एक विस्तृत समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक के दौरान संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों को पूरी तरह अद्यतन और सक्रिय रखें। अपर समाहर्ता ने विशेष रूप से राहत सामग्री, नावों की उपलब्धता तथा मेडिकल किट की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। बैठक के बाद उन्होंने बिहियां अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। भोजपुर जिले के विभिन्न अनुमंडलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया गया है। इस अभियान के तहत प्रशासन की टीम द्वारा जेसीबी मशीनों की सहायता से सड़कों, फुटपाथों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान जहां जहां अतिक्रमण पाया जा रहा है वहां तत्काल प्रभाव से उसे हटाकर मार्गों को खाली कराया जा रहा है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और आम लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
2: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्म संकेत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनिए, आनंद बख्शी का लिखा हुआ। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गायक कलाकार मोहम्मद रफी। फिल्म का नाम है कर्ज़।

0: कर्ज फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, रात के 8 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए ये प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के घर आंगन में है। याद होगा आपको, हर साल इसी महीने से ये कार्यक्रम आने वाले कुछ महीनों तक आप सुनते हैं और बातें हम करते हैं टेक्निकल पढ़ाई की। टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, जो अगर आपने टेक्निकल पढ़ाई कर ली तो पढ़ते पढ़ते या पढ़ने के बाद रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। खास करके हम BCA BBA की बात करते हैं, लेकिन आज थोड़ी बहुत बात करेंगे MCA MBA और BEd की भी। हाँ, ढेर सारी बातें होंगी, अभी ये सिलसिला चलेगा। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं पिछले 27 वर्षों से आप युवाओं के साथ खड़ा जो संस्थान है BCA और BBA को लेकर, आर्किड बिजनेस कॉलेज। जी हाँ, आर्किड बिजनेस कॉलेज जो कि आर्य कुमार रोड और सगुना मोड़ पटना में है। और आपको बताएं कि ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का एकमात्र स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है।
3: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
4: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
3: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
4: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
3: फिर तो आर्किड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
5: आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520-800-800। याद रखें 7520-800-800।
2: इसलिए BCA और BBA अगर जो आपको करना होना तो नंबर डायल कर सकते हैं 7520800800। जी हाँ, यानी 7520-800-800। आज हमारे साथ हैं, हाँ, इस आर्किड बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर संस्थापक आशीष आदर्श जी, जो करियर काउंसलर भी हैं। ढेर सारी बातें आज इनसे करेंगे कि BCA BBA या MCA BEd MBA, हाँ, आर्किड ग्रुप के ये जो कॉलेजेस हैं ना, ये जो आर्य कुमार रोड, सगुना मोड़ और ABC, हाँ, भी कॉलेज है नेवरा में, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है इनका आज के उड़ान कार्यक्रम में। आशीष जी, एक बात बताइए, 27 वर्षों से आप इस संस्थान को चला रहे हैं, जी हाँ, BCA और BBA को लेकर, हाँ, क्या सोचा था, कैसा लगता है, या सीधे सीधे अपना अनुभव बताइए।
6: जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि हमारा संस्थान पहला संस्थान है बिहार का जिसने वोकेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज बिहार में शुरू किया। BCA और BBA जैसे कोर्सेज को कोई नहीं जानता था उसके पहले। बात 1998 की है, उस समय में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लाया और ला करके पहला संस्थान बना।

0: ये बिहार का, जिसने बीसी और बीबीए जैसे संस्थान पाठ्यक्रम शुरू किए। पहले हमारा संस्थान मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत एफिलिएटेड था, संबद्ध था। बाद में 2018 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय नई बनी और मगध विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज थे जो पटना के, वो सब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गए और हम भी उसी में हैं। और आपको मैं बता दूं, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बिहार का यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से बीसीए बीबीए पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त है। आपने कई बार देखा होगा, कई कॉलेजेस हैं पटना के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहां आए दिन हल्ला हंगामा होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इन सब बातों को लेकर के एक आर्केड बिजनेस कॉलेज की एक अलग पहचान है, एक अलग विश्वसनीयता है और बिल्कुल अलग तरीके से ये काम करता है। और यही कारण है कि आज हमारे यहाँ 10,000 से अधिक स्टूडेंट, सफल स्टूडेंट्स।
1: बहुत खूब आशीष जी, ये बहुत बड़ी बात है। 27 वर्षों से बीसीए और बीबीए को लेकर आप युवाओं के बीच में हैं और 10,000 से ज्यादा जो बीसीए और बीबीए कर लिए युवा हैं आज रोजगार में हैं। आर्केड बिजनेस कॉलेज और उसी गुणवत्ता के साथ आर्य कुमार रोड, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पर बना हुआ है। हम ये पूछना चाहते हैं कि उस जमाने में, आज तो कहा जाता है टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, हाँ टेक्निकल पढ़ाई कीजिए और रोजगार के लिए सुनिश्चित हो जाइए, लेकिन उस जमाने में क्या दूरदर्शिता दिखाई आपने? एक बात हमें बताइए कि बिहार के किस जिले से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, उनमें टेक्निकल पढ़ाई बीसीए और बीबीए पढ़ने की ललक ज्यादा होती है?
0: पूरे बिहार से हमारे यहाँ, आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ पिछले साल का अगर हम ब्यौरा अगर बताएं तो पिछले साल लगभग 1100 एडमिशन्स हुए थे। उन 1100 एडमिशन्स में लगभग बिहार का कोई भी ऐसा छोटा से छोटा कस्बा भी नहीं है जो अछूता रहा हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार के जो बच्चे जो आते हैं हमारे यहाँ, जो छोटे गाँव शहर से जो आते हैं, कई बार उनको ये लगता है कि हम मतलब बड़े शहर में जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, और पटना में कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे। तो हमारा पहला ही ये जो वर्कशॉप जो होता है वो यही होता है कि हम बच्चे के झिझक को कैसे हटाएं। यानी कि अगर आपकी पृष्ठभूमि ग्रामीण भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, आपको स्मार्ट बना के हम रखेंगे। आपको शुरू के 2-3-4 महीने में आपको खुद के अंदर तब्दीली होती हुई नजर आएगी, सो दैट कि आपको आगे चलकर के अपने पाठ्यक्रम को खूब अच्छे तरीके से कर सकें। और आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, जब आप 3-4 महीने के बाद में वापस घर जाएंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा बदलाव आप में महसूस करेंगे।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, आशीष आदर्श जी आर्केड बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। युवाओं के लिए हम बातें कर रहे हैं, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है और बीसीए और बीबीए पिछले 27 वर्षों से ये संस्थान अपने साथ लेकर चल रहा है, युवाओं में पठन पाठन करवा रहा है और रोजगार भी अच्छे खासे संख्या में लोगों को मिला है। अगर आप भी बीसीए और बीबीए की तरफ सोच रहे हैं तो एक बार बात करना चाहिए। और नंबर नोट करें, 7520800800। आशीष जी एक बात बताइए, नहीं रुकिए, उससे पहले हम बताएं कि आर्केड बिजनेस कॉलेज आर्य कुमार रोड, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ में है। हाँ आशीष जी एक बात बताइए, जब गांव से बच्चे निकलकर शहर में आते हैं, चकाचौंध देखते हैं, तो उन बच्चों या युवाओं कह लें, उनको संस्थान में क्या देखना चाहिए, कौन सा मानक है और क्या आर्केड बिजनेस कॉलेज उस सभी मानकों पर उतरता है?
0: देखिए एक बात बताता हूँ, आप कोई भी संस्थान का विज्ञापन उठा के देखिए, हर संस्थान अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। आपको यह देखना है कि उस संस्थान के जो पहले के जो छात्र हैं उनका क्या मंतव्य है। अगर आपको कोई वैसे स्टूडेंट मिल जाए जो आर्केड बिजनेस कॉलेज से पढ़ा हो, आप जरा उससे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार का स्टूडेंट है, क्या उसको पढ़ाई की कैसी उसको चीज़ें मिली, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये देखना है कि जिस ध्येय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बीसीए किया या बीबीए किया, उसके बाद आपको जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है, परसेंटेज कितना है, जॉब कितना परसेंटेज। अभी मैं आपको जस्ट अभी बताऊं, अभी तकरीबन पिछले महीने 2026 के प्लेसमेंट्स की बात में करता हूं, अभी तक लगभग हमारे यहाँ 450 स्टूडेंट करीब पास आउट करके निकले हैं, लगभग 200-225 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है, 200-225 के बीच में। और बाकी अभी कंपनियां, 4-5 कंपनियां, बहुत सारी कंपनीज ऐसा बोलती है कि भाई एग्जाम के बाद हम, परीक्षा के बाद हम उनको इन कैंपस इंटरव्यू आपके यहाँ करेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए हम छुट्टी नहीं देंगे। अब परीक्षा खत्म हो चुकी है पार्ट 3 की, रिजल्ट भी अब 1-2 दिन में आने वाला है, तो इसीलिए अब बहुत सारी कंपनीज लाइनअप कर रही हैं, वो आ रही हैं। और हम ये बात आश्वस्त करते हैं हर स्टूडेंट को कि आपके लिए कम से कम 10 कंपनी का हम इन कैंपस इंटरव्यू लेकर के आएंगे, कहीं

0: कहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही, बस आपको अपनी क्लासेस में अपनी जो अटेंडेंस रखनी है और अपने कोर्स के ऊपर में पूरा फोकस करना है, बाकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं।
1: वाह बहुत खूब, आपने बेबाकी से सब कुछ कह दिया। हाँ, आपने कह दिया कि स्टूडेंट आए तो जो पुराने स्टूडेंट रहे हैं संस्थान के उसको देखें, उनसे बात करें, उनका फोन नंबर लें और फिर संस्थान के बारे में जानकारियां लें। इसके अलावा एंड ऑफ द डे रोजगार बहुत मायने रखता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक अच्छा रोजगार चाहते हैं, है ना, चाहते हैं ना, तो इसके विषय में भी आशीष जी ने बताया कि आर्केड बिजनेस कॉलेज की क्या स्थिति है, यही दूसरे कॉलेज में भी आपको देखनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि बीसी और बीबीए के लिए आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं, 27 वर्षों से लगातार हाँ आप लोगों के लिए खड़ा है, और संकोच नहीं कीजिएगा, नंबर हम दे रहे हैं, एक बार फोन से बात कीजिए, वक्त निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अच्छे संस्थान का चुनाव कीजिए और हम समझते हैं कि ये आर्केड बिजनेस कॉलेज जिसकी तरफ से ये उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अच्छा हो सकता है। नंबर नोट करें, 7520800800, 7520800800। और अब आगे बढ़ते हैं आशीष जी, अगर हम टीचर्स की बात करें तो आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, टीचर तो किसी भी संस्थान का की आत्मा होती है। आपके यहाँ अगर अच्छे टीचर होंगे तभी वो एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छा एक आपको नॉलेज दे सकते हैं। टीचर्स के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। हमारे यहाँ आप स्टूडेंट से बातचीत करेंगे तो वो हमेशा ही, अभी आप रिव्यूज देखिए, आप आर्केड बिजनेस कॉलेज के वेबसाइट पर चले जाइए, abcollege.org भी है और abcollege.in भी है। abcollege.org राजेंद्र नगर कैंपस का है, abcollege.in सगुना मोड़ कैंपस का है। आप वहां जाकर रिव्यूज देखिए या गूगल में डालकर रिव्यूज देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आर्केड बिजनेस कॉलेज का क्या स्थान है, उसकी क्या विश्वसनीयता छात्रों के बीच।
1: जरूर होगी विश्वसनीयता आर्केड बिजनेस कॉलेज की, क्योंकि आप लगातार लगे रहते हैं और सबसे बड़ी बात है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की एक स्थायी मान्यता प्राप्त संस्था है बीसी और बीबीए के लिए। हम नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं, 7520800800, 7520800800। फोन करने में मत झिझकिचाइएगा क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। कहते हैं ना कि ये बुनियाद है आपकी, इसको मजबूत कीजिए और जीवन में फिर ऊंचाइयों को प्राप्त कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए आशीष जी, 27 वर्षों का लंबा अनुभव है आर्केड बिजनेस कॉलेज के साथ बीसी और बीबीएम के लिए, कैसे बच्चों को इंटरमीडिएट के जो साइंस हैं, कॉमर्स हैं, आर्ट्स हैं, कैसे बच्चों को ये बीसी और बीबीए की पढ़ाई चुननी चाहिए, क्योंकि कोर्स का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है, आपका अनुभव क्या कहता है?
0: देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर आपका 10+2 में पीसीएम रहा है और मैथमेटिक्स अगर आपका ठीक है, अच्छा है, तो फिर आपको बीसीए करना चाहिए। और अगर आपका ठीक है, आपने पीसीएम भी कर लिया है उसके बाद भी, लेकिन मैथमेटिक्स भी एवरेज है, तो आप बीबीए चुन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमसीए, बीसीए और एमसीए करने के बाद एक आप प्रोग्रामर बनते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो आदमी जिसका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जितना बेहतर होता है वो उतना ही अच्छी एनालिसिस कर सकता है, और एनालिसिस अगर आपकी जो जो आपकी स्किल अगर है तो आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो मेरा समझना यही है कि कुल मिलाकर के अगर आपका, आपको खुद आकलन करना है, अब मार्क्स के हिसाब से मैं चलिए बोल देता हूँ, अगर आपको पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स है या 60% से भी ज़्यादा मार्क्स है तो आप बीसीए ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम है, 60-70% से कम अगर है, तो फिर आपको बीबीए की तरफ जाना चाहिए। और वैसे ही आर्ट्स के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी यही थ्योरी में कहूँगा कि अगर आपको आपके अपने सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए कॉमर्स को, तो मैं बोलूंगा कि वो बीसीए की तरफ ना जाएं, बेहतर है वो बीबीए ही लें, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका कॉमर्स का एक बैकग्राउंड रहा है और आगे चल करके उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़ने में सुविधा होगी बीबीए कोर्स में, और फिर आगे एमबीए में भी वही सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ना होगा उनको।
1: तो समझ में आ गई कि का करे के, हाँ, कौना कौना स्टूडेंट कौना कौना सब्जेक्ट लेवे के या पढ़ाई करे के, हाँ, सही चुनाव ही आपको करियर में आगे ले जाएगा। उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं 27 वर्षों से युवाओं के लिए टेक्निकल पढ़ाई का प्रबंध करने वाली संस्थान आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से आप बीसीए और बीबीए कर सकते हैं। नंबर है 7520800800, यानी 7520800800। आशीष जी, कहते हैं ये आर्केड बिजनेस कॉलेज के अलावा भी आप टेक्निकल पढ़ाई का आप क्या हब है, खास करके कंप्यूटर से रिलेटेड, क्या कहेंगे?
0: देखिए, आर्केड

0: ग्रुप के ऑल टुगेदर तीन कॉलेजेस हैं, एक आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर, एक आर्केड बिजनेस कॉलेज सगुना मोड़ और एक एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक नया परिसर है, 2017 में शुरू हुआ। ये नेवरा में है, मतलब दानापुर स्टेशन से लगभग 10 मिनट लगता है जाने में। वहां पर हमने बीसी बीबीए के अतिरिक्त एमबीए एमसीए, बीएड पहले से वहां चल रहा है, एमबीए और एमसीए ये दोनों प्रोग्राम शुरू किए हैं।
1: थैंक यू आशीष जी, ये बात को हम आगे बढ़ाएंगे अगले शनिवार को जब हम कार्यक्रम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवा साथियों, चाहे बीसीए या बीबीए कीजिए, अब पैसे की भी चिंता नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप पढ़ाई कर सकते हैं और यहाँ आर्केड बिजनेस कॉलेज में भी ये सुविधा है। बहरहाल हम एक ही बात आपसे कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी मत गवाइए, संस्थान का चुनाव ठीक से कीजिए। नंबर दे रहा हूँ आगे से, फोन करके पता कीजिए, नंबर है 7520800 7520800, ये नंबर है आर्केड बिजनेस कॉलेज का। तो आज का उड़ान कार्यक्रम खत्म करने की राजेश को दीजिए इजाजत। थैंक यू आर्केड बिजनेस कॉलेज की, साल भी आपने ये सिलसिला जानकारियों का जारी रखा है। नमस्कार।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
4: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम, हमारा पर्यावरण।

श्रोताओं नमस्कार। आज का हमारा पर्यावरण कार्यक्रम के इस नए अंक के साथ मैं हूं कायम नैयर। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे भारत में पर्यावरणीय समस्याएं। साथ ही इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे विद्यानाथ झा की एक वार्ता जिसका विषय होगा वर्तमान पर्यावरणीय परिदृश्य, और आपको जीव जंतुओं के बारे में कुछ रोचक तत्वों से भी परिचय करवाएंगे। श्रोताओं, हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रकृति ने जो चीज़ हम जीवों को मुफ्त में प्रदान की है, जो हमें जीवित रखने का सबसे बड़ा साधन है, आपको इसके बारे में पता तो होगा ही। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, जो हमारे आसपास है, जैसे हवा, जल, पहाड़, नदी, भूमि, सूर्य। श्रोताओं, इस बदलते ज़माने और बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। प्रकृति द्वारा दिए गए इन संसाधनों का प्रयोग करके हम नए नए वस्तुओं का निर्माण भी करते हैं। श्रोताओं, हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते और समझते भी हैं। भारत में अनेक पर्यावरणीय समस्याएं मौजूद हैं, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वनों की कटाई, जनसंख्या वृद्धि, प्लास्टिक प्रदूषण इत्यादि शामिल है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार, संगठन, व्यक्तिगत प्रयास मिलकर कार्य कर रहे हैं। वायु प्रदूषण, भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, खासकर शहरी क्षेत्रों में वाहनों, उद्योग और निर्माण गतिविधियों से निकलने वाला धुआं और अन्य प्रदूषणकारी पदार्थ हवा को दूषित करते हैं। जल प्रदूषण नदियों, झीलों और भूजल को प्रदूषण औद्योगिक अवशिष्ट, कृषि रसायनों और अपवहन के कारण है। शहर से लेकर गांवों तक नदियां और पोखरों में काफ़ी प्रदूषित हो रहे हैं, जो धीरे धीरे ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। अवशिष्ट पानी, चाहे वो घरों का हो, फैक्ट्रियों का हो या नाले का हो, उसे जल में मिला देने के कारण जो जलीय जीव है वो काफ़ी प्रभावित होती चली जा रही है। साथ ही साथ यह भूगर्भीय जल स्तर को प्रभावित करता है। वनों की कटाई से जैव विविधता का नुकसान, मृदा अपवर्धन और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं होती है। जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या हमारे देश की प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। बढ़ती जनसंख्या से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं और गंभीर होती जाती है। प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और अवशिष्ट प्रबंधन की कमी से पर्यावरण को नुकसान होता है, ये सड़ता गलता नहीं है। लंबे समय तक ये जमीन के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, जिसके कारण हमारा भू स्थल काफी खराब होता जा रहा है, जल की समस्या होती चली जाएगी और

इसका बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा पड़ता है। वायु प्रदूषण अपशिष्ट का अनुसूचित प्रबंधन, वायु प्रदूषण अपशिष्ट का अनुसूचित प्रबंधन बढ़ती जल कमी, गिरता भूजल स्तर, जल प्रदूषण, वनों का संरक्षण और संरक्षण, जैव विविधता का ह्रास और मृदा संरक्षण कुछ ऐसी प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियां हैं जिसका भारत आज समाधान कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल अधिनियम 1947, जल प्रभाव अधिनियम 1977 लागू किया गया। मानव पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करने एवं पेड़ पौधे और संपत्ति को छोड़कर मानव जाति को आपदा से बचाने के लिए EPA या केंद्र सरकार का पर्यावरणीय गुणवत्ता की रक्षा करने और सुधारने, सभी स्रोतों से प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण कम करने और पर्यावरणीय आधार पर कमी औद्योगिक सुधार की समस्या करना है। पर्यावरण में कम से कम 33% हिस्सा पेड़ पौधे का होना चाहिए। भारत की वन नीति 1988 के अनुसार देश के भूभाग का 33% हिस्सा वनों से ढका होना चाहिए। पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ये सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जल की रक्षा करते हैं और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन वृक्षों का आवरण होना चाहिए। वर्तमान में भारत में कुल वन और वृक्षों का आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.15% है। पर्यावरण में पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन लगभग 21% होती है, जो वायुमंडल का लगभग 99% हिस्सा बनाते हैं। आर्गन और अन्य गैसेस भी वायुमंडल में मौजूद होते हैं, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। श्रोताओं, सरकार के द्वारा किया गया या चलाया गया कोई भी योजना, कोई भी मिशन तभी धरातल पर सही ढंग से चल पाएगा, सफल हो पाएगा, जब तक हम सब इसकी रक्षा और सुरक्षा करें। छोटे छोटे पहल से हम सरकार तथा समाज की मदद कर सकते हैं और उसकी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। श्रोताओं, ये बात हम सब जानते हैं कि अगर पर्यावरण हम इंसानों को से प्रभावित होता है, इसे बर्बाद तथा इसके दूषित होने का कारण हम सब हैं, लेकिन इसका समाधान भी हम सब ही खोज सकते हैं और पर्यावरण को वापस स्वच्छ कर सकते हैं। इसका समाधान हम इस प्रकार कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम करना, स्वच्छ ईंधन का उपयोग, उद्योगों और परिवहनों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें, ऊर्जा दक्षता में सुधार करें और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाएं, वाहन प्रदूषण नियंत्रण, वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से लैस करें और प्रदूषणकारी वाहनों का उपयोग को सीमित करें, जल प्रदूषण को कम करना, उद्योगों और कृषि से निकलने वाला अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का उपयोग करें और कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग को कम करें, जल संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाएं और जल की बर्बादी को रोकें, वनों की कटाई को रोकें, वन संरक्षण वनों की कटाई को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं और वनों को पुनर्जीवित करें, वन रोपण वृक्षारोपण अभियान चलाएं और वनों का विकास के लिए जागरूकता बढ़ाएं, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाएं और लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करें, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करें, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, प्लास्टिक के अपशिष्ट को पुनर्चक्रण करें और प्लास्टिक का उपयोग कम करें, एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को प्रबंधित करें और प्लास्टिक के विकल्प का उपयोग करें। अन्य संसाधनों की अगर बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए शिक्षा जागरूकता अभियान और अन्य कार्यक्रम का आयोजन करें, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करें, पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दें। इन सभी समाधानों को लागू करने के लिए सरकार, औद्योगिक, नागरिक समाज, व्यक्तिगत स्तर पर सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग हमें कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे प्रदूषक ईंधनों का उपयोग कम करके और पवन और जल ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए। प्रदूषण से होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां वायु प्रदूषण अस्थमा और फेफड़े का कैंसर, जल प्रदूषण, दस्त और हैजा, ध्वनि प्रदूषण, सुनने की समस्या, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाकर भारत कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। श्रोताओं, हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना

0: ज़रूरी है। हम सभी जीवित प्राणियों के लिए पर्यावरण कितना आवश्यक है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसकी रक्षा और सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार से हो रहा है। हमने पहले भी चर्चा किया कि पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे इससे हमें लाभ मिलता है, किस प्रकार हम इसकी रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं। छोटी छोटी पहल करके हम इसकी रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं। जल और ऊर्जा का संरक्षण करके भारत अपने संसाधनों को बचा सकता है। इसमें जल के अवयव को कम करना, पानी का पुनः उपयोग करना, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना शामिल है। प्लास्टिक का उपयोग कम करके भारत कचरे की मात्रा को कम कर सकता है। इसमें प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के अन्य उत्पादों का उपयोग कम करना शामिल है। हमें जितना से जितना हो सके प्लास्टिक का हम कम उपयोग करें। छोटी छोटी पहल हम अपने जीवन में जब तक नहीं कर सकेंगे तब तक वो चीज़ सफल नहीं हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। पेड़ से हमें कितना फ़ायदा है ये हम सब इस बात को समझते हैं, जानते हैं। पेड़ लगाने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये होता है कि पेड़ लगाकर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं और वनों को बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार ने कई तरह की योजनाएं, कई तरह के मिशन चलाई है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि स्वच्छ वायु कार्यक्रम। भारत सरकार ने जल प्रदूषण को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि गंगा नदी को साफ करने का कार्यक्रम। भारत सरकार ने वनों के विनाश को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय वन नीति। भारत सरकार ने बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को सही रखने के लिए अगर हम इस प्रकार समझें तो और भी आसान है। धरती है हमारा घर, साफ रखें इसे हर पल। चल हम नदियाँ, तालाब, झीलें बचाएं, जीवन का आधार है ये। प्रदूषण मिटाएं, पर्यावरण बचाएं, चीज़ों को रिसाइकिल करके धरती को बचाएं, कचरा कम करके। पौधे लगाएं, हरियालियाँ बढ़ाएं, जीवन को हरा भरा बनाएं। तो श्रोताओं, ये छोटी छोटी चीज़, जो छोटी छोटी पहल है सरकार ने हमारे लिए किया है, और इसको हम मनुष्य ख़ास तौर पर जब तक कि किसी चीज़ को खुद के अंदर में जागरूकता नहीं फैलाएंगे, समाज के अंदर में नहीं फैलाएंगे, तब तक वो चीज़ सफल नहीं हो पाएगा। और सफलता का राज हम सब के हाथ में है। हम सब इन छोटी छोटी चीज़ों पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। जो चीज़ हमारे लिए सबसे आसान है उसे हम पहले करना शुरू करें। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने कहा कि प्लास्टिक का कम प्रयोग करें, प्लास्टिक के छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग हम कम करें, क्योंकि प्लास्टिक हमारे भूमि के लिए, हमारी धरती के लिए, हमारे कृषि के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो जो हमारे आसपास के नाले होते हैं, जो घरों का पानी हम सड़कों पर यूं ही बहा देते हैं, उसको रोकने की ज़रूरत है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, जीव जंतुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेड़ों से हमें बहुत लाभ है, हर प्रकार का लाभ है। पेड़ पौधों का हम कहीं ना कहीं कटाई करते हैं किसी न किसी कारणवश, या वो सूख जाते हैं या किसी कारणवश, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अगर एक पेड़ किसी कारणवश उस जगह से हट जाता है किसी भी कारण से, तो उसकी जगह पर हम कई पेड़ लगाएं। पेड़ का लगाने की एक आदत हम अपने जीवन में कर लें, जिससे हमारा पर्यावरण काफ़ी स्वच्छ होगा। और जाहिर है, जब पर्यावरण हमारा स्वच्छ होगा तो हम सुरक्षित होंगे। श्रोताओं, जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आपको जीव जंतुओं के बारे में कुछ रोचक तत्वों से परिचय करवाएंगे। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कौन ऐसा जानवर है जो अपनी जीव बाहर नहीं निकाल सकता? चलिए इसका जवाब मैं ही आपको बता देता हूँ। मगरमच्छ। कौन ऐसा जीव है जिसका खून नीला होता है? ऑक्टोपस। कौन ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता? इसका सही जवाब है हाथी। पृथ्वी पर मछलियों की लगभग 20,000 से अधिक प्रजातियाँ मौजूद हैं। श्रोताओं, क्या आपको पता है मानव फेफड़ा पानी पर तैर सकता है? हमारा जिगर यानी हृदय को पुनर्जीवित होने की क्षमता होती है। मानव मस्तिष्क का वजन 3 पाउंड से अधिक होता है। हमारे शरीर में 300 से अधिक अलग अलग कोशिकाएं हैं। शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य का 98% डीएनए चिंपांजी से मिलता जुलता है। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं विद्यानाथ झा की वार्ता। वार्ता का विषय है वर्तमान पर्यावरणीय परिदृश्य।
1: इस समय देश या फिर

विश्व स्तर पर पर्यावरणीय विपर्यय की घटनाओं का विश्लेषण आवश्यक है। अभी विश्व के विभिन्न भागों में जंगल में भी दावानल फैल रहा है। जंगली आगों से अमेजन के जंगलों को भारी क्षति पहुंची है। वायु, जल, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषणों के कारण आम लोगों का जीवन कई प्रकार की स्वास्थ्य जन समस्याओं से ग्रस्त हो रहा है। देश का एक बड़ा हिस्सा गर्मी के समय में पेयजल की समस्या भोगता है। यह स्थिति केवल मैदानी भागों में ही नहीं, पानी के स्रोत माने जाने वाले पहाड़ों में भी देखने को मिल रही है। एक तरफ हमें भौतिक प्रगति करने की लत हो गई है, तो दूसरी तरफ हमारा पर्यावरण दिनानुदिन ऐसी स्थिति में पहुंचता जा रहा है जो हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहा है। स्थिति मरता क्या न करता तक पहुंच गई है। वैश्विक ताप वृद्धि को रोकने की दिशा में आज विश्वभर में वैज्ञानिक एवं राजनेता लगे हुए हैं। इस हेतु सबसे आवश्यक है कि ग्रीन हाउस गैसों के मूल में स्थित जीवाश्मीय ईंधन के प्रयोग को कम कर नए एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाए। कोयला पर आधारित बिजली घर क्रमशः बंद किए जा रहे हैं। विकसित देशों में कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाली जो तकनीकी विकसित की जाती है उसे कम विकसित देशों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। यह एक स्वागत योग्य कदम है कि विश्व का सबसे विकसित देश अमेरिका फिर से पेरिस समझौते में लौट आया है। इस समझौते के अंतर्गत विश्व की औसत ताप वृद्धि को औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ के समय से अधिकतम 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की सीमा में रखना है। नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत इस समय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरणीय कार्यक्रमों के अंतर्गत विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों के समक्ष शून्य कार्बन उत्सर्जन अर्थात जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने हेतु आह्वान किया जा रहा है। इस दिशा में यह एकदम उचित है कि भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर परिसंघ अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने सभी प्रकार की ऊर्जा के मूल में स्थित सौर ऊर्जा प्रक्रम को विकसित करने का अभियान चलाया जा रहा है। यह आशा की जानी चाहिए कि आगामी दशकों में कोयला, डीजल, पेट्रोल, गैस पर आधारित ऊर्जा व्यवस्था धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चली जाएगी। नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा के प्रक्रम उनकी जगह लेंगे। अब तो वन नेशन वन ग्रिड की तर्ज पर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की परिकल्पना रूप लेने वाली है। विश्व के 140 देशों में यह सहमति बनी है। सदी की महामारी कोविड-19 का वर्तमान प्रकोप भी कहीं न कहीं वन्य जीवों के पर्यावास के क्षरण अर्थात हैबिटेट लॉस से जुड़ा हुआ है। मनुष्य की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि ने पूरे विश्व में बंदर, पेंगोलिन, चमगादड़, खटाउंस जिसे सीवेट कैट कहा जाता है जैसे वन्य जीवों जो कभी सुदूर जंगलों के भीतर रहते थे को मनुष्यों के वास स्थलों के नज़दीक ला दिया है। आज लोग इन रोगवाहकों अर्थात वेक्टर्स के निकट संपर्क में आकर सार्स, मर्स सदृश रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी को लेकर देश की एक बड़ी जनसंख्या भारी संकट में फंसी। लाखों लोगों को इस कारण पूरे देश में प्राण गंवाने पड़े। कोरोना ने लोगों को इस तथ्य का एहसास कराया है कि वृक्षों द्वारा प्राकृतिक रूप से निःसृत प्राणवायु ऑक्सीजन हमें जीवन देते हैं। इसलिए एक बार फिर लोगों में पेड़ों को लगाने की चेतना बढ़ी है। पीपल, बरगद, पाकर, गूलर, नीम सदृश देशी वृक्ष हमें भरपूर ऑक्सीजन देने के साथ प्रदूषकों का भी अवशोषण करते हैं। पीपल कुल मोरेसी के वृक्ष अपने असंख्य छोटे बीजों से अनेक पक्षी और अन्य जानवरों का संपोषण करते हैं। इसी कारण पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी की भाषा में इन्हें की स्टोन स्पीसीज कहा जाता है। इस भयानक बीमारी का एकमात्र संदेश है कि हम एक बार फिर प्रकृति की ओर लौटें एवं इस बात को मानें कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को यहाँ रहने का उतना ही अधिकार है जितना मनुष्यों का। विगत 21 मई 2021 को विश्वभर में पर्यावरण आंदोलन के सबसे बड़े पुरोधा सुंदरलाल बहुगुणा का 94 वर्ष की आयु में तिरोधान हुआ। यह उनके नेतृत्व में चले चिपको आंदोलन का ही परिणाम है कि हिमालय में ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत होने वाली वनों की कटाई पर रोक लगी। हिमालय की रक्षा वस्तुतः पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण की रक्षा है। लोगों में हिमालय के पर्यावरण को बचाने के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने कश्मीर से कोहिमा तक की पदयात्रा की। उन्होंने बड़े बांधों का कड़ा विरोध किया। लाखों लोगों विशेषकर युवाओं में पर्यावरण रक्षा के लिए उन्होंने हुंकार भरी। पूरे विश्व के पर्यावरण प्रेमियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। यह उचित ही है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने अपने इस अप्रतिम पर्यावरण योद्धा की मृत्यु पर आधिकारिक शोक सभा कर उनके योगदानों को श्रद्धापूर्वक याद किया। हिमालय में बहने वाली गंगा की सहायक नदियों पर बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं का भी उन्होंने विरोध किया था। भूकंप प्रवण क्षेत्र में

होने वाली दुर्घटनाएं उनके इस वैज्ञानिक सोच को आज सही साबित कर रही हैं। हिमालय के साथ ही भारतीय संस्कृति को संबल प्रदान करने वाली गंगा की दशा आज शोचनीय है। भारतीय जनमानस में यह आशंका बलवती हो चुकी है कि आने वाले वर्षों में यह अन्य नदियों की भांति मात्र एक बरसाती नदी बनकर न रह जाए। आज तो साल के खास भाग में अपने विस्तृत पाट में गंगा की एक धारा एक कोने में सिमटी दिखती है। आज यह समय की मांग है कि हम व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कर हरित पट्टी को बढ़ाएं। झारखंड अलग होने के बाद शेष बिहार में प्राकृतिक जंगल मात्र 7% के आसपास बच गया था। बाग बगीचों को भी शामिल करने पर राज्य में कुल हरित पट्टी 10% के आसपास बची थी। ज्ञातव्य है कि स्वस्थ पर्यावरण हेतु किसी भी भूभाग के कम से कम एक तिहाई क्षेत्र में जंगल होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 21.67% पर पहुंचा है। अपने राज्य बिहार की बात करें तो वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की पहल के बाद वनरोपण की गति बढ़ाकर अभी यह सीमा 15% से ऊपर तक पहुंच गई है, जिसे और भी आगे बढ़ाए जाने के प्रयास हो रहे हैं। सरकारी एवं सार्वजनिक परिसरों में एक अभियान के तहत वृक्ष लगाए गए हैं। वन विभाग ने निजी जमीन पर भी पेड़ लगाए हैं जो एक निश्चित समय सीमा के बाद भूधारियों के स्वामित्व में होंगे। उचित रखरखाव के कारण राज्य के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान के अंतर्गत बाघों की संख्या 40 से ऊपर पहुंच चुकी है, जो एक स्वागत योग्य स्थिति है। वन व्याघ्र न्याय नामक लौकिक न्याय का प्राचीन सूत्र हमें बताता है कि वन वही है जहां बाघ निशंक विचरण करते हों। तात्पर्य यह है कि बाघ वहीं होंगे जहां चारों ओर घने वन हों और पारिस्थितिकी की भाषा में उनकी पूरी आहार श्रृंखला अर्थात फूड वेब वहां मौजूद हो। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में छोटी चिड़िया गोरैया, जिसे अपने यहां बगड़ा कहा जाता है, को राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। राज्य का पहला पक्षी उत्सव कलरब अभी हाल में जमुई जिला के नागीनकटी पक्षी अभयारण्य अर्थात बर्ड सेंचुरी में मनाया गया। पर्यावरण रक्षा हेतु किए जा रहे उपायों में प्लास्टिक का विकल्प खोजा जाना प्रमुख है। आज क्या जमीन या क्या समुद्र, क्या हवा या क्या जीवों के शरीर, सभी जगहों पर मैक्रो या फिर माइक्रो प्लास्टिक किसी न किसी रूप में मौजूद है। माइक्रो प्लास्टिक 20वीं सदी की इस पृथ्वी की ऐसी देन है जो न निगलते बनती है और न उगलते। जैव अनपघटनीय अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण यह लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है। बड़े साइज के प्लास्टिक के सामानों का तो पुनर्चक्रण होता है, कूड़ा बीनने वाले इसे चुनकर इस कार्य में लगाते हैं, परंतु सूक्ष्म आकृति अर्थात 50 माइक्रोन से कम आकृति के प्लास्टिक का पुनर्चक्रण संभव नहीं होता। अभी अभी आए समुद्री तूफान के दौरान समुद्री लहर के साथ पॉलीथीन को तट पर वापस फेंकते देखना एक विस्मयकारी दृश्य था, जिसे टेलीविजन के पर्दे पर देखा गया। सिंगल यूज पॉलीथीन पर यूं तो रोक लगी हुई है, लेकिन व्यवहार में उसे लाने के प्रति उतनी गंभीरता नहीं है। यह अकारण नहीं कि भूगर्भ शास्त्रियों ने पृथ्वी पर प्लास्टिक के बढ़ते जमाव के कारण 1950 ईस्वी से एंथ्रोपोसीन ईपोक की शुरुआत माने जाने का प्रस्ताव दिया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि अब फैक्ट्रियों में रासायनिक क्रिया से संश्लेषित प्लास्टिक के स्थान पर व्यापक रूप से जैव प्लास्टिक अर्थात जिसे बायोप्लास्टिक कहते हैं का उत्पादन हो, जो जूट के बोरे की तरह प्राकृतिक वातावरण में सर गलकर नष्ट हो जाए। ऐसा होना प्रारंभ भी हो गया है और यह आशा की जानी चाहिए कि आगामी वर्षों में जैव प्लास्टिक रोजमर्रा के उपयोग में आ जाए। पर्यावरण संरक्षण का एक प्रमुख अवयव है अवशिष्टों का ससमय निपटान, चाहे वह कृषि अवशिष्ट हो या फिर औद्योगिक अवशिष्ट। अभी जो बिहार राज्य में पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में चयनित किया गया है, उसके अंतर्गत इन शहरों में सभी प्रकार के अवशिष्टों के समुचित निष्पादन की व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिसमें आमजन की भागीदारी अपेक्षित है। दरभंगा जैसे शहर में मेडिकल अवशिष्टों की वेस्ट टू एनर्जी पद्धति से निष्पादन की व्यवस्था करना आवश्यक है। इसी तरह कृषि अवशिष्टों के समुचित निष्पादन की जब हम चर्चा करते हैं तो पराली जलाने की समस्या सबसे पहले सामने आती है। मूलतः कृषि क्रांति वाले राज्यों की यह समस्या अब बिहार सदृश प्रांतों में भी पैर पसार रही है। फसल कटने के बाद खेत में बची पराली, जिसे इस इलाके में नार कहा जाता है, से बाद में जैव ईंट अर्थात बायोमास ब्रिक के रूप में प्रयोग में लाने की तरकीब विकसित करने में वैज्ञानिक लगे हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जैविकीय विधि विकसित की है, जिससे इसका त्वरित विखंडन भी संभव हुआ है खेत में ही। इसी कड़ी में आता है मशरूम उत्पादन, जिसमें इस तरह के कृषि अवशिष्टों का मुख्यतः प्रयोग होता है। प्रोटीन से भरे मशरूम का उत्पादन का प्रशिक्षण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वैज्ञानिकों द्वारा बहुत ही उत्साहपूर्वक दिया जा रहा है। बिहार ने तो

0: देश में इसके उत्पादन में ओडिशा और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि राज्य ने जैविक कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, जिसमें संश्लेषित कृषि रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। गंगा नदी के किनारे प्रचलित इस पद्धति से नदी में भी रासायनिक प्रदूषण की समस्या कम होगी। पर्यावरण संरक्षण का एक प्रमुख आयाम है स्थानीय जीव विविधता का संरक्षण एवं उसके संधारणीय उपयोग की समुचित व्यवस्था करना। जहां तक उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र की जैव विविधता का सवाल है, यह क्षेत्र अपने जलीय उत्पाद मखाना हेतु विशेष रूप में जाना जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने में इसकी गुणवत्ता को देखते हुए इसका उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय स्तर के मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत पूर्णिया स्थित भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय में शोध कार्य किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता भी मखाना हेतु अधिक अनुकूल है। 2019 ईस्वी के अभूतपूर्व सूखे के दौरान खेत में खड़ी मखाने की फसल जल गई, परंतु 2020 में बड़ी बाढ़ में खड़ी फसल भी बह गई। पर्यावरण की इस अनिश्चितता के साथ हमें इसके उत्पादन को बढ़ाने के रास्ते ढूंढने होंगे। 2021 ईस्वी में यास तूफान के कारण मई के अंतिम हफ्ते में मानसून पूर्व की वर्षा ने समय पर पानी उपलब्ध कराकर इस फसल को इस वर्ष संजीवनी दी है। देश के अन्य जलाक्रांत क्षेत्रों में भी मखाना की खेती के प्रसार हेतु अभियान चलाए जा रहे हैं। मखाना के साथ ही इस इलाके में होने वाली अन्य जलीय फसलों यथा सिंघाड़ा, खुबही, केसौर, शाहरुख, कर्मी साग के साथ छोटी बड़ी मछलियों एवं घोंघा, डोका आदि के खाद्योषधीय गुणों की खोज कर उन्हें व्यवहार में लाना होगा। जल क्षेत्र का विस्तार होने एवं समय पर अपेक्षित अनुपात में भूगर्भीय जल उपलब्ध होने से खुद बिहार में भी मखाना का उत्पादन बढ़ पाएगा। अनावृष्टि के कारण अकाल पहले भी पड़ते थे, लेकिन पहले देश में अनाज कम उपजने के कारण कम जनसंख्या रहने के बावजूद लोगों को भूखे मरने की नौबत आ जाती थी, परंतु आज यह स्थिति नहीं है। 140 करोड़ की जनसंख्या का पेट भरने लायक भरपूर अनाज देश के पास है। ऐसी स्थिति में हमें मिथिला के ओइनवाड़ वंशीय राजा शिव सिंह की याद आती है, जिनके विषय में एक पोखड़ रजोखड़ और सब पोखड़ा, राजा शिव सिंह और सब छोकड़ा जैसी कहावत याद आती है। आज भी जनता उस प्रजावत्सल राजा को याद करती है जिसने अकाल जैसी विपरीत परिस्थिति में रोजगार के रूप में जनता से पोखड़े खुदवाए, जो आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद सिंचाई और मत्स्य पालन के जरूरतों की पूर्ति करते हैं। आज कोविड के समय इसी पैटर्न पर मनरेगा के अंतर्गत शहरों से वापस लौटे लोगों को रोजगार देने के लिए अतिरिक्त श्रम दिवसों का सृजन किया जा रहा है। पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार एवं नए जलाशयों का निर्माण इस कार्यक्रम में प्रमुखता से शामिल है, परंतु सैकड़ों वर्ष पूर्व अनावृष्टि काल में सतही जल अर्थात सरफेस वाटर का भले अभाव हो, भूमिगत जल अर्थात ग्राउंड वाटर की कमी नहीं होती थी। आज तो सतही जल के साथ भूगर्भीय जल का भी संकट हो गया है। आज पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कृषि रसायनों के बढ़ते उपयोग से भूमिगत जल भी प्रदूषित हो गया है और कैंसर सदृश रोगों में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था वर्तमान पर्यावरणीय परिदृश्य। वार्ताकार थे विद्यानाथ झा। इसी के साथ हमारा पर्यावरण कार्यक्रम के इस अंक के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के साथ मुझे यानी कयाम नेर को दीजिए आज्ञा। फिर मिलेंगे अगले अंक के साथ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन की रक्षा की जा सकती है, बल्कि रक्तदाता को भी इससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान विषय से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9430029353, और हमारा बेस फोन नंबर है

0672-222-4-8-1। हेलो जिंदगी, हमारे इस कार्यक्रम का प्रसारण समय याद रखें, कल ही यानी रविवार 14 जून सन 2026 दिन में 11 बजे से। कार्यक्रम संबंधी ये सूचना समाप्त हुई।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 8:45 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की

0: रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: राम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। ये 32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत

0: सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने

0: Pakistan have set a target of 195 runs for India in the rain-affected first one-day international ODI of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match has been reduced to 25 overs per side after relentless rains delayed the start. In reply, India were 91 for 1 in 10.3 overs when reports last came in. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. Five Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. Five-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dheeraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of three-match series in Dharamshala. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आसाम के जोरहाट में एक AN-32 तैयारे के गिरकर तबाह होने से भारतीय फजाइया के अमले के 5 अफराद जा बहक हो गए हैं। 5 रोजा ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस इंदौर आलामी को इत्तफाक राय से मंजूरी देने के साथ खत्म हो गई, जिसमें गजाई तहफ़ और खेती बाड़ी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अलावामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक जमहूरिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को यूरोप के साथ भारत की शराकत दारी में एक अहम तरीन लम्हा समझा जा रहा है। 2014 के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस का 7वां दौरा है। इस साल जनवरी में कलीदी भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती माहदे के बाद से इस बरेआजम का यह उनका पहला दौरा भी है। फ्रांस भारत के साथ मशरकी दुनिया में कदीम तरीन और इंतहाई भरोसेमंद जामिया शराकतदारी रखने वालों में से एक मुल्क है जो इस दौरे का मरकजी मकाम रखेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस को भारत के जामे विजन में खसूसी मकाम हासिल है। इस साल के अवैल में सदर मैक्रों के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात के खसूसी आलमी जामे शराकतदारी का दर्जा दिया था, जो कि आलमी हल को एक नई शक्ल देने के लिए उनके मुश्तरक मकसद की अक्कासी करता है। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी नीस पहुँचेंगे, जहाँ आला सतही मसरूफियात के एक सिलसिले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसका मकसद इख्तिरा टेक्नोलॉजी जामे शुबों में ताउन को गहरा करना है। कल दोपहर 2:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर मैक्रों मुश्तरक तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे, जो यूरोप में भारत की अहम दीप टेक नुमाइश है। आलमी सरमाकारों, CEOs और टेक्नोलॉजी लीडरों के साथ साथ 120 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप्स इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जो भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के दौरान मनक़द की जा रही है। वजीर आजम मोदी सदर मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। तवक्को तबादला ख्याल में दिफा, मसनू जानत, खला, तजारत, तालीम और दीगर आलमी चैलेंजों का अहाता किया जाएगा। यहाँ नीस में इस बात के कवी इम्कान हैं कि यह दौरा भारत के इंतहाई भरोसेमंद जामे शराकतदारों में से एक में नई तहरीक पैदा करेगा, यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात को मजीद मुस्तकम करेगा। फ्रांस से नीस से आकाशवाणी न्यूज़ के लिए शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: ब्रिटिस्लावा में भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया के पहले दौरे के लिए उनके मखसूस और मुनफरिद खैर मकदम की खातिर तैयारी कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अब जब स्लोवाकिया पहली मर्तबा किसी भारतीय वजीर आजम की मेजबानी के लिए तैयारियों में मसरूफ है, भारतीय बिरादरी के अफराद उनका शानदार

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है, तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहां रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे

0: तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है, एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है। और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुँचता है, उस परम तत्व तक पहुँचता है। उस 8 अंगों की ये यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं थी, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी, इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञानपरक बनाते हुए, खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन और ई मायने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की। और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले से वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
2: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
3: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
2: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय

0: स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
1: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं। वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
0: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
1: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है और उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेस हैं, ट्रेंड कोचेस हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
0: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पॉन्स मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
1: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म, मजहब, जाति, कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
0: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया। 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी? कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
1: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूँ। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा। तो एक वो संबल था।
0: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं?
1: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है। बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे। और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से। और उन्होंने आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
0: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
1: मैं उनको यही कहना

0: चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा, और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है, तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है, संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूज़ॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूज़िक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं हर साल, कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे, और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फ़ी खा रहा था वहाँ पे, फिर वो बोला कि यार कुल्फ़ी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है,
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है, और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न

0: ट्विंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक फोर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
1: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद

0: अब वो ज़्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूज़िक वेन्यूज़ थोड़े से स्थिर हो गए थे, और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीज़ें। तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
1: और आप बताइए।
2: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट
1: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है।
2: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेड अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे
1: हाँ, वो
2: पाँच सौ
1: लोग
2: रुपये एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
0: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं अब। हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूज़िक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूज़िक। पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं
1: तो अभी आप लोगों ने
0: एक
1: क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं जब कवर्स का जिक्र
0: जी
1: आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं
0: जी हैं
1: रादर देन योर ओन कॉम्पोजिशंस?
0: बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज़ को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हम बोलते भी हैं वीव कुल्फी फाइव डेट।
1: जैसे अभी आपने
0: हाँ
1: एग्जांपल दिया संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे
0: जी
1: आपने एक नया
0: जी
1: टच दिया।
0: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नज़रिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज़ व्हाट वी एज अ बैंड ऑल्सो डू।

0: भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत। और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग, कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शैरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े ही विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमें धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूँ, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे
0: हैं। मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakhas.
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
4: Going and proposing to Rama and Lakshmana from that rakshasi bhavam, the hand goes into a beautiful pallava.
0: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है।

अली अकबर खान ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इंटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. Is set to Aditala.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Thyagaraja, is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी, कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।

0: Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.
1: Saath mein Ratna Pandey. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की

0: News Bulletin.
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम पे 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। इस समय रात के 11:10 हो चुके हैं। इसी के साथ आज की हमारी ये दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। इसी मीटर पर कल सुबह 5:49 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।